0: जाएगी। हम
1: हम वो वाला बेस। वेल गेस, बेबी को बेस पसंद है लेकिन यहाँ पे मेरी ऑडियंस को केतन पसंद है। जी हाँ, मेरा नाम केतन है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। खेड़ा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, कैसा जा रहा है आपका दिन? दिन तो नहीं, एक्चुअली मॉर्निंग आपकी कैसी गई? दिन तो अभी शुरुआत होगा मेरी बातों के साथ, मेरे गानों के साथ, मेरे यू नो तरह तरह के मौकों के साथ जो हाँ आपको मैं देने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। वैसे आपका मॉर्निंग कैसा गया है? मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेट, आई एम प्रीटी श्योर। मेरा भी काफी अच्छा रहा, थोड़ा बिजी रहा एज इन वही उठ के एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट विच इज हैपनिंग ऑन दिस सैटरडे, जहां पे मैं परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। वेल यस, उसको भी मैं करना है, और शाम को एक और जगह एक रेस्टोरेंट पार्नर में, वहां पे भी मेरी परफॉर्मेंस है। सो यस, बैक टू गिग्स आई विल बी डूइंग ऑन दिस सैटरडे इवनिंग। आपके क्या प्लान है सैटरडे के? कुछ नहीं है तो पहुंच जाइए, मैं बताऊंगा कहां पे थोड़ी देर में। मनोरमा नेटबॉल, ये तो आप सोच ही सकते हैं, ये नोट डाउन कर दीजिए। बट यस, आप बने रहिए, अब इसलिए तीन बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले होम सिक रेमेडीज की बात करेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो आप तहे दिल से मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम द सेम कंट्री एज एन यू हैव मूव्ड इन ऑकलैंड टू समवेयर लाइक फ्रॉम समवेयर एल्स, या फिर किसी और देश से भी अगर आप आए हैं तो आप बताइए मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 5599 इज द नंबर, 5599 इज द नंबर। आप मुझे एक्चुअली कॉल भी करेंगे इन दो गानों के बाद, दो गाने होंगे उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा 0800-4866 पे, जहाँ पे आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जी हाँ,
2: बचाओ क्या,

0: Box with Ketan.
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, चलिए होम सिक रेमेडीज में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए मुझे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं बैक फ्रॉम योर सिटी और योर टाउन, स्टेट और योर कंट्री। वेल यस, अभी जब तक कॉल नहीं आते हैं 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए, तब तक मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैसेज पढ़ने का भी अलग ही मजा है, बट यस कॉल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लाइव बात करने का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सो यस, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑन एयर। चांदनी, उनका मैसेज आया है कराका से, आई मिस द स्मेल ऑफ फ्रेश रेन ऑन हॉट रोड्स बैक इन इंडिया। ऑकलैंड रेन इज सो कोल्ड, इंडिया रेन हैड इमोशन। राइट, दैट इज प्रस्पेक्टिव। यस यस डेफिनेटली, बिकॉज आई वुड से दैट वहाँ पे सीजन होता था, उस वजह से भी काफ़ी यू नो यू फील लाइक एक्साइटिंग। और यहाँ पे तो 12 महीने होती रहती है बारिश, तो या दैट इज ट्रू। विनेश कहते हैं ओटारा से, इन फीजी इफ वन पर्सन कुक्स टू मच फूड द होल स्ट्रीट गॉट फेड, हियर एवरीबडी मीट प्रिपेयर इन कंटेनर्स। वेल यस, I won't be able to do any counter over here, but thank you for message, Vinesh. Thank you for letting us know. But yes, the phone lines are still on. Aap mujhe call kariye, and I would love to hear from you guys. I would love to hear. Ji haan, to aap mujhe call kariye aur baat karte hain phone pe bhi. Maya kehti hai Glenarden se, I miss my cousin randomly showing up at home and stealing food from the fridge like they owned the place. ये तो होता ही है, तो सिबलिंग की खास बात है। इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज टू डू लाइक यू नो व्हेन आई यूज टू गो टू नानीज प्लेस, वहाँ पे तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में फ्रिज को ओपन करता, जैसे कि फ्रिज इज लाइक यू नो जिन है और एकदम से कुछ ना कुछ खाना प्रकट हो जाएगा। सुरेश कहते हैं, आई मिस इंडियन वेडिंग्स वेयर इवन पीपल यू डोंट नो स्टार्ट डांसिंग नेक्स्ट टू यू लाइक फैमिली। दैट इज ट्रू। ये तो मेरी शादी में भी हुआ था। मेरी शादी में दो लड़कियां आ गई थी, पता नहीं कहाँ थी कौन थी, और नॉर्मल कपड़े पहन के, घर के कपड़े पहन के आ गई थी, और वो बात लाइक डांस करने लगी। चलिए फोन आया, फोन पे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाय, क्या हाल है, क्या किससे बात हो रही है
2: आपकी, कैसे बात हो रही है
1: मेरी, किससे हो रही है?
2: जैज।
1: अच्छा, आपकी जैज, ओहो क्या बात है। हाय जैज, हाउ आर यू? Good afternoon.
2: I'm good. How are you?
1: Great, great. बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप? वैसे आप हैं कहाँ से?
2: मैं हूँ तो वैसे जमशेदपुर कोलकाता से, इंडिया।
1: Right.
2: आज मैंने आपका FM सुना और आपने एकदम वही बात कर दी जो literally I was thinking about it.
1: Okay. Would love to hear. What
2: you think that I missed in like? कि हम जो इंडिया में जैसे रहते थे, सारे नेबर्स क्लोज, हम कभी फील नहीं करते थे अलोन।
1: राइट,
2: बट यहाँ पे आप अगर देखो तो वी डोंट नो नेबर्स मेनी ऑफ देम।
1: आप वैसे
2: पार्ट,
1: या कंटिन्यू, सॉरी,
2: कैन यू हियर मी?
1: या फॉर श्योर।
2: तो मैं मिस करती हूँ कि इंडिया में हम जैसे अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स से क्लोज थे, वैसे यहाँ नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दी वर्क लाइफ एंड हाउ वी आर बिजी। So that is what I miss, कि हम वहाँ पे जैसे रहते थे क्लोज, यहाँ वो नहीं हो पाता है।
1: राइट, ये चीज़ तो हम भी मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे लिसनर है वो भी मिस करते होंगे। मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ न्यूजीलैंड का नहीं है ये, अगर आप इंडिया में भी जाओ, जैसे कि आपने बोला कि यू आर फ्रॉम कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल, राइट, व्हाट यू सेड, सॉरी आई फॉरगॉट,
2: वेस्ट बंगाल यू कैन से।
1: तो वहाँ पे भी अगर मेजर सिटी में जाओगे, कोलकाता हो गया, यहाँ पे आई हैव नेवर बीन देयर, बट आई मे बी राइट कि वहाँ का जो यू नो काम करने का तरीका, लोगों को, दे आर सो बिजी इन टू डूइंग देयर ओन थिंग एंड देयर ओन फैमिली, सो पड़ोस में कौन रह रहा है वो भी नहीं पता होता है काफ़ी टाइम तक। तो या बट आई वुड रिकमेंड यू, लाइक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड में?
2: हो गए 12 से 15 साल हो गए।
1: अरे तो मैं आपको क्या ज्ञान दूं। आप तो मेरे से पहले आए हो, आपने खुद ने अपनी लाइफ
2: देखी। Everything is going good, but lately I was missing my family and everyone from India.
1: Right.
2: And then
1: right.
2: I just heard your FM and I was like, yeah, that's the right time I can at least call.
1: Yeah, well actually thank you so much यार, right time पे आपने कॉल भी किया। And many people can relate with this. This is kind of thing.
2: Yeah, sometimes we come across this feeling.
1: Yes, yes. यहाँ पे तो होता है कि दोस्तों से भी you need to ask them, can we come over, which is not the same thing in India.
2: That's one of the thing. Yes.
1: हाँ, India में तो घर के नीचे खड़े होते थे कि भाई नीचे आजा.
2: वहाँ पूछना नहीं पड़ता था कि अरे यार मैं आऊँ.
1: Exactly, exactly. But thank you so much आपके कॉल के लिए. You have a wonderful day. You have a wonderful day. Bye bye.
2: You too. Thank you. Bye. Lunchbox with Ketan. मुझे पसंद है लड़का. Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
1: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 Degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
2: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
3: Thanks, driver.
2: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
4: Thank you, driver.
2: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
3: Thank you, driver.
2: And 50% off for community service card holders.
4: Thanks, driver.
2: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fare Discounts.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
8: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
7: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
8: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
7: Elite Bathroomware.
8: A reflection of you.
9: Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
10: Hum. Office shout out.
12: ऑफिस शाउटआउट में आपका स्वागत है. वेल यस, आप मुझे कॉल करिए फिर से एंड देन डू लेट मी नो आप अभी हाल फिलहाल वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, वेदर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस और इन द गार्डन और द सिनेमा हॉल और समवेयर एल्स. जहां से भी आप सुन रहे हैं मुझे कॉल करिए और बताइए कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हाट आर यू हैविंग राइट नाउ. हम यहाँ पे शाउट आउट देने के लिए बैठे हैं. सो यस, इफ यू वांट टू गिव शाउट आउट टू एनीवन, यू वांट टू डेडिकेट समथिंग, फील फ्री टू कॉल मी एंड डू द थिंग. कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे, उन्हें मैं पढ़ लेता हूं. मीनवाइल वी गेट द कॉल. यस, निकोल पार्नेल से मुझे मैसेज किया है. उन्होंने कहा है कि माय होल लंच टुडे इज लेफ्ट ओवर बर्थडे केक. वाओ, फ्रॉम द ऑफिस फ्रिज. मतलब आपका लंच जो है वो सिर्फ केक है. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे. लाइक दे मस्ट बी थिंकिंग, ओ वाओ, अगर ऐसा हमें मौका मिल जाए तो वाई नॉट. बट क्या करें, हेल्थ इज ऑल्सो द फर्स्ट थिंग. बट कभी कभी चीट डे चलता है, राइट? अब नाउ अदर साइड ये है कि भाई इतना बड़ा चीट डे नहीं हो सकता भाई. एक ही दिन में बचा हुआ केक, होपफुली अगर लंच की बात करें तो इट मस्ट बी अ बिग साइज, राइट? बाकी तो पेट नहीं भरने वाला. बताएं क्यों निकोल. यश कहते हैं, भाई आई ओपन माई टिफिन एंड रियलाइज मम पैक्ड एक्स्ट्रा गुलाब जामुन ऑल्सो. ऊ यम यम यम यम, बेस्ट सरप्राइज एवर. सेम फॉर मी, इफ यू सेंड मी सम हियर, यू नो द एड्रेस वेयर यू नीड टू कम. आई वुड लव टू हैव सम. बट थैंक यू यश फॉर योर मैसेज. एमा कहती है, डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड माई डॉग कीप स्टेरिंग एट माई सैंडविच लाइक ही ऑल्सो पेज रेंट हियर. दैट इज सो कूल. मतलब मेरे को मजा आता है ये मैसेजेस पढ़ के, बिकॉज हाउ क्रिएटिव अवर ऑकलैंडर्स आर. लाइक दे आर सो सो सो क्रिएटिव. द वे हाउ दे नरेट द मैसेज इज लाइक अमेजिंग. सॉरी, ये मेरी क्रिएटिविटी थी बीच में बातें करते हुए खास ना। एक मैसेज आया है सेमी का, वो कहते हैं बुला वी आर हैविंग बारबेक्यू लंच एट द वर्क साइट टुडे बिकॉज वन गाय बिकेम अ डैड दिस मॉर्निंग। वाओ दैट इज सो ग्रेट यार, ऐसी सरप्राइजेस मिलते रहते हैं यार। मुझे भी पता है जब मैं बना था तब रेडियोथॉन चल रहा था एंड देन आई केम हियर एंड देन इट वॉज अ बिट ऑफ यहाँ पे ना किसी ने कुछ तो वो सर्व कर रहे थे एंड दे जस्ट सर्व दैट टू एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ मी फॉर फ्री। सो या दैट इज ग्रेट फीलिंग यार, ग्रेट फीलिंग, थोड़ा स्पेशल भी फील होता है। आखिरी मैसेज पढ़ते हैं किरण का, वो कहती है न्यू मार्केट से आई ट्राइड ईटिंग हेल्दी टुडे बट देन समवन ब्रॉट हॉट जलेबीज इन टू द ऑफिस, इम्पॉसिबल सिचुएशन। या दैट इज सो ट्रू, हमारे लिए भी होती है अगर यहाँ पे कोई लेके आता है। वैसे आजकल हमारे यहाँ पे कोई लाता नहीं है ले दे के, शायद वो मुझे बोलेंगे क्योंकि मैं ही उस जगह रहता हूँ जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर समोसेज या फिर जलेबीज मिलती है। आप मुझे बताइए सबसे बेस्ट जलेबी या फिर समोसे आपने कौन से सबब में खाए हैं यहाँ पे ऑकलैंड में। यू डोंट नीड टू मेंशन द बिजनेस नेम ओवर हियर बट आप मुझे बता सकते हैं कौन से सबब के समोसेज आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। मुझे पापा टोटो के लगे हैं अभी तक, जी हाँ। आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट आई एंजॉयड, सब पापा टोटो में बहुत ही बेस्ट मुझे जलेबी और समोसे खाने को मिले। आप ही मुझे बताइए इसका जवाब 5599 पे।
9: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक। आपको पहला नहीं एक्चुअली अगला गाना मैं चलाऊं उससे पहले आपको बता देता हूं दैट देयर इज एन इवेंट हैपनिंग दिस वीकेंड। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे दो गिग्स हैं, उसमें से पहला गिग भी यही है जो होने जा रहा है 23rd May नेटबॉल मनरेवा वाइब मिक्स इवेंट प्रेजेंट्स आप सभी के लिए द ग्रैंड मस्ती नाइट वेल फीचरिंग रिनोन आरजेस फ्रॉम फिजी SN जय भैया जी रॉडी नमन एंड द डांसिंग लेजेंड चाफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 इयर्स 5 से 6 मसाला मिक्स किट्स भी होंगे स्टेज पे एंड ऑफ कोर्स ड्यूल सिंगर भी होने वाले ड्यूल वॉइस सिंगर एक्चुअली सिंगर एक ही है बट वो दो आवाज़ें में गा सकता है मेल भी और फीमेल भी जिनका नाम है मनी डिसूजा एंड अमेजिंग मॉन्टो मोनिका भी है युवा डांस ग्रुप न्यूजीलैंड टॉप डीजेस होने वाले हैं और मेरी भी परफॉर्मेंस है वहाँ पे स्टेज पे। जी हाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ मैं खुद भी। काफ़ी गिव वेज भी दिए जाएंगे उस दिन, सो यस टिकट ले लीजिए। बहुत ही कम बचे हुए हैं, हंटर्स फूड टाउन पापाटोटो गेट फ्रेश सुपरमार्केट मैंगरी ये दो जगह से आप टिकट ले सकते हैं। फ्री पार्किंग है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी वहां पे। सो यस नेटबॉल मनरेवा में ये इवेंट होने जा रहा है ऑन 23rd of May। टिकट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड सो गो एंड ग्रैब इट टुडे।

0: Production.
1: Lovable investments are subject to market risk. Read all skin-related documents carefully.
2: Welcome back. आपका स्वागत है लंचबॉक्स शो में. वेल चलिए आपको बता देता हूँ, रोआ ऐप इज द ऐप जहाँ से आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ इन्जॉय भी कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स पॉडकास्ट हो गए, प्लेलिस्ट हो गई गानों की, आपके बड़े बड़े सितारों के गाने, कुछ फीजी भजन, फीजी कीर्तन, एंड देन ऑफ कोर्स 60s 70s 90s के भी गाने, आप 60s 70s 80s के गाने भी आप इन्जॉय कर सकते हैं. और एक गेम है चडल, जिसे खेल सकते हैं आप और जीत सकते हैं $100 अ डे. जी हाँ, हर दिन आप खेलिए. जैसे कि आज अगर आप खेलेंगे तो आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक पता पड़ जाएगा विनर कौन है, एंड देन रीसेट हो जाएगा अगले दिन फिर से. जी हाँ, $7,000 गिव वे हम दे रहे हैं और इसमें आप बेसिकली फिल आउट करेंगे कुछ फ्रेजेस, कीवी वर्ड्स सेइंग इन द लिमिटेड बॉक्सेस, और आपके जितने कम गलतियों से जवाब सही होंगे आप ड्रॉ में शामिल होंगे और जीत सकते हैं $100 अ डे. सो यस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट प्लेइंग इट नाउ. क्या पता लक आपका आज हो और आपका दिन बहुत ही बढ़िया हो जाए बैठे बैठे $100 जीतने का मौका.
3: लंच बॉक्स विद केतन.
4: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
3: इसके पीछे
5: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
9: MediaWorks Compliance. How can I help?
10: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
9: You.
10: It's all I can think about.
9: What does it sound like?
10: Yeah, I'd rather not.
9: Go on, why don't you have a crack?
10: Okay, got a plumbing problem.
9: Oh, I need a bit more than that.
10: They've got your back.
9: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
10: Oh, okay.
11: There's no better plumber to give it a crack.
9: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
10: No. I want a plumber.
12: Advertise with
13: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
14: The Beds R Us King's birthday sale is on now, with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
3: Lunchbox with Ketan.
15: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz goonjegi.
2: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है. मैं हूं केतन और आप सुन रहे हैं मुझे लंच बॉक्स शो में. हम रेडियो इट इज 104.2 एफएम या फिर रुआ के जरिए आप सुन सकते हैं. वेल ये सभी की जो चटनी शॉट्स यानी कि बैक टू बैक न्यूज है वो ये है कि तोरंगा के फेल्ड पार्किंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट में दो इंजीनियर पर एक्शन लिया गया है, एक को फाइन और दूसरे को लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया. वेलिंगटन के मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर प्लांट को लेकर ऑफिशियल्स ने कहा है कि पूरी तरह रिपेयर के बाद अब नेक्स्ट ईयर तक ही कंप्लीट हो पाएगा. गुड न्यूज ट्रैवलर्स के लिए, एयर न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च से 3 नए इंटरनेशनल रूट्स अनाउंस किए हैं, जिससे ओवरसीज ट्रैवल और कन्वीनियंट हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब देश के यंगेस्ट मर्डरर को एक फोन ब्रेक की वजह से दोबारा अरेस्ट कर लिया गया. इंटरनेशनल न्यूज में न्यूयॉर्क में एक वुमेन की डेथ हो गई है और आफ्टर शी एक्सीडेंटली फेल इनटू एन अनकवर्ड मेंटेनेंस होल. वहीं यूएस पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप पर फॉल्स क्लेम करने की एलिगेशंस लगे हैं रिगार्डिंग इलीगल मेल इन वेल आउट. स्पोर्ट्स अपडेट. स्टेट ऑफ ओरिजिन डेब्यूट से पहले राइजिंग स्टार निकोरा ने कहा है कि ये मोमेंट उनके लिए बहुत ही क्लोज है. फुटबॉल में बड़ा रिजल्ट आया है जहां अर्सेनल एफसी ने 22 ईयर्स लेटर प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है. मैनचेस्टर सिटी एफसी प्लेड अ ड्रॉ. रग्बी से फॉर्मर ऑल ब्लैक्स ब्रेट थॉर्न ने कहा है कि रग्बी वर्ल्ड कप एक कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट होता है. और एंटरटेनमेंट में वर्ल्ड में लेजेंडरी फिल्म मेकर पीटर जैक्सन को कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ऑनरी पाल्मे दे ओरा से ऑनर किया गया है. जी हाँ, ये थी आज की चटनी शॉट्स. मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ सवाल जवाब के साथ.

0: beat of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback.
2: Well, काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए लेके आया हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी का जवाब नहीं आया. थोड़ी देर नहीं पहले पूछा था, किसी का मैसेज नहीं आया, बट आई एम गोना ट्राई इट अगेन. मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज योर मोस्ट यूजलेस टैलेंट? आपके लाइफ में आपके पास कौन सा ऐसा यूजलेस टैलेंट है जो साइलेंटली यू फील प्राउड बट किसी को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते कि ये मेरे में शक्तियां हैं? आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं. आई नो यू मे फील एम्बैरस्ड, बट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एक्चुअली 0800 4866 पे भी बता सकते हैं, बट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, उसके ऊपर हमारी बात होगी. पहला मैसेज आ गया है, मैसेज पढ़ लेते हैं जल्दी से फटाफट. और भी भेजिए. एक्चुअली मैं काम करता हूँ, मैं एक ही पढ़ता हूँ यहाँ पे, जस्ट टू गिव यू हिंट कि किस तरह के मैसेज आप भेज सकते हैं ताकि आप मुझे और टेक्स्ट मैसेज भेज सकें. तो पहला मैसेज आया है निशा का. निशा कहती है पापाकुरा से, माय मोस्ट यूजलेस टैलेंट इज रिमेंबरिंग सॉन्ग लिरिक्स फ्रॉम 2008 बट फॉरगेटिंग व्हाट आई वॉक्ड इनटू द किचन. इट्स ट्रू यार, पता लिरिक्स का मेरा भी है, लगे मैं सिंगर हूँ प्रोफेशनली, बाय प्रोफेशनल मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि भाई तू यार न्यूजीलैंड में है, इंग्लिश गाने भी तैयार कर, ये सब कर. मैं कहाँ भाई, मेरे को हिंदी गाने याद नहीं हो रहे. मैं इंग्लिश कहाँ से याद रखूँगा. बट यस, इस तरह के मैसेजेस आप मुझे भेजिए 5599 पे ताकि वी विल बी रीडिंग इट आउट, जस्ट टू मेक यू फील बेटर, फील फनी, राइट? काफी सीरियस सवाल जवाब तो हो चुके, तो यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वाला पूछते हैं. तो यस, कौन सा ऐसा आपका यूजलेस टैलेंट है जो यू फील प्राउड बट यस कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नाराज होते हैं. अरे फोन आ गया है, चलिए फटाफट उनसे भी बात हो जाती है. हेलो.
3: हेलो,
2: हाँ जी, किससे बात हो रही है?
3: मैं शिवराज बोल रहा हूँ.
2: हाय शिवराज, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया, आप सुनाओ.
2: एकदम बढ़िया. बताइए कौन सा ऐसा यूजलेस टैलेंट है जो छुपे छुपे आप बहुत ही प्राउड फील करते हैं?
3: यूजलेस टैलेंट तो नहीं कह सकते उसको, मैं थोड़ा स्लो हूँ हर काम करने में.
2: अच्छा.
3: मगर टैलेंट मतलब टैलेंट ऐसा है कि कर सब कुछ लेता हूँ.
2: अच्छा.
3: मतलब थोड़ा बहुत जैसे घर का प्लम्बिंग का काम होता है वो भी कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी कर लेता हूँ.
2: अरे वाह.
3: कुछ चीज ठीक करनी होती है वो भी कर लेता हूँ, मगर बहुत स्टेबल होके, बहुत उसको ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ. मतलब कुछ भी करता हूँ
2: तो ये आपका प्रोफेशन
3: तो इसलिए लोग मुझे नहीं लोग मुझे इसलिए स्लो कहते हैं. वैसे मेरा ड्राइविंग है प्रोफेशन. ड्राइविंग में दो मोड में करता हूँ.
2: अच्छा.
3: मतलब स्लो भी करता हूँ और अगर फास्ट करनी होती है तो फास्ट भी कर लेता हूँ.
2: अरे वाह, ये सही है. बट एक्चुअली जो ये प्लम्बिंग और ये आपने बताया ना, मेरे को लगता है कि अच्छा हुआ प्रोफेशन नहीं, नहीं तो आप तो अच्छा खासा छाप के बैठ जाते ना बिल बताए भाई मेरे को 10 घंटे.
3: नहीं नहीं, नहीं मैं सब मतलब मेरे अंदर ये कुछ भी टैलेंट मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब जो चीज मैं खोलूंगा ना, जैसे ट्रांजिस्टर है रेडियो जिसे कहते हैं ट्रांजिस्टर, अगर उसमें कुछ खोल के देखना है, कुछ चीज ठीक करनी है उसमें, right. उसको खोल के मैं उसको ऐसे कैसे ही बंद कर दूंगा, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं होती मेरे को.
2: ओह वाओ. बट
3: ऐसे मैंने बहुत चीजें ठीक करी हैं.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Hum. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, वीरी। कॉल 24/7 on 09278800.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का अपडेट 20 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस दिखा रहा है हाल फिलहाल बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:20 PM पे।

0: गया। नमस्ते, सतसकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो 104.2 एफएम के जरिए। जी हाँ, वैसे इस आर में एक बज चुके हैं और इस आर में बहुत सारी बातें करनी है। लंच टाइम रेंट लाइन की बातें होगी, बॉलीवुड की बातें होगी, लेटेस्ट खबर की भी अपडेट में आपको देने वाला हूँ और साथ में कौन से लेजेंडरी सिंगर आ रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में भी बात होगी। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो का ये आर। स्पेशली मैं हूँ यहाँ पे 3 बजे तक अमेजिंग शो के साथ।
1: बचाओ क्या,

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में इन्होंने आवाज दी अपने इस गाने के लिए, दिल दीवाना ढूंढता है। वैसे इनका एरा था उस टाइम सचमुच, एक से बढ़कर एक गाने, बैक टू बैक सॉन्ग्स। और आज जिस तरह से अरिजीत सिंह गा रहे हैं उस हिसाब से ये गाना गाया करते थे तब। पर यस, हम थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सचमुच आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो यस, उसके बारे में आप मुझे भेज सकते हैं। बट यस, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था आपको कि व्हाट इज दैट यूजलेस टैलेंट यू हैव विच यू वॉन्ट टू, आई मीन लाइक यू फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ बट यू कैन नॉट से इट इन पब्लिक। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे, आपको कॉल भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे अभी, ताकि हम जानेंगे कि आपके पास वो कौन सा टैलेंट है। वेल यस, राकेश कहते हैं, आई कैन परफेक्टली प्रिडिक्ट व्हेन द माइक्रोवेव हैज 1 second लेफ्ट विदाउट लुकिंग, एब्सोल्युटली जीरो यूज इन लाइफ। वो तो है, बट गजब का टैलेंट है यार, मतलब बिना बताए आप बता देते हो कि भाई हो गया, क्या बात है। मतलब ये एक्चुअली यूजेबल होता है, हो सकता है जहाँ पे जिस माइक्रोवेव में आवाज़ नहीं आती है या फिर आवाज़ म्यूट हो चुकी है, ख़राब हो चुका है। प्रिया कहती हैं, आई कैन आइडेंटिफाई हुज मॉम मेड द करी जस्ट बाय स्मेलिंग इट एट अ पॉटलक। ये तो गजब का टैलेंट है, मतलब पब्लिक प्लेस में पॉटलक में अगर हो तो सब पता पड़ जाएगा किसने क्या बनाया है विदाउट लुकिंग इन टू इट। नाइस। अमन कहते हैं, I can peel an orange in one spiral. Nobody has ever needed this skill. ये भी सही है। शिवानी कहते हैं हेंडरसन से, I remember every embarrassing things from year 8 in HD quality. ये actually, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही भी है, that you feel, of course थोड़े embarrassed feel होते हैं, but एक अच्छा भी लगता है कि पुरानी ख्याल, अरे यार मैं कितनी मस्ती करता था, मैं कितनी मस्ती, यू नो आई हैव चेंज्ड अ लॉट और आई हैव ग्रोन अप अ लॉट। तो ये सारी चीज़ें याद करके बहुत ही बढ़िया लगता है। बट इनफैक्ट एक आखिरी मैसेज है वो पढ़ लेते हैं। देव कहते हैं, आई कैन बैलेंस अ स्पून ऑन माई नोज फॉर वियर्डली लॉन्ग। दैट इज़ सो कूल। ये एक्चुअली कुछ कॉम्पिटिशन होता ना नोज वाला, कुछ तो होता है ये शायद, बट आई रिमेंबर दैट वन गेम विच आप मुंह में चम्मच डालते हैं, फिर उसके ऊपर नींबू डालते हैं और फिर देन आप कंपटीशन कर रनिंग करते हो, मेकिंग श्योर दैट वो नींबू नीचे नहीं गिर जाए चम्मच से। दैट इज़ अमेजिंग। वैसे आप बताइए कितने लोगों ने वो गेम खेला है जो मैंने अभी जस्ट बताया, स्पून रनिंग, स्पून लेमन रनिंग, बताइए मुझे।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.
5: When it comes to rewarding your team, Prezi makes it easy. Bulk orders, exclusive corporate discounts, and a gift everyone actually wants. Perfect for staff rewards, incentives, and saying thanks. Shop now at prezicard.co.nz.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
9: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
10: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
11: A love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
12: Pyar mein thoda pagal to hona hi padta hai.
13: Hamari love story to legendary ban gayi.
11: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, releasing in cinemas on 22nd May.
14: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
11: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
15: Lunchbox with Ketan.
16: मुझे पसंद है लड़का।
15: हम। Lunchtime Rant Line.
17: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम इट इज, हम रेडियो इट इज। मेरा नाम केतन है और आप सुन रहे हैं मुझे लंच बॉक्स शो में। वेल यस, सबसे पहला मैसेज है अलीशा का बॉटनी से। वो कहती हैं, व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स से वी आर नॉट फोर्सिंग यू राइट बिफोर फोर्सिंग यू। देखो, मैं उस स्टेज पे तो आया नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता, बट सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सवाल काफ़ी यू नो रिलेटेबल भी है। बट यस, अगर इस पे कोई जवाब देना चाहता है, फील फ्री टू रिस्पॉन्ड। और कोई काउंटर अगर देना चाहता है तो 5599 से नंबर जहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद मनोज कहते हैं, ऑकलैंड बसेस ईदर कम टुगेदर लाइक फैमिली पैक और डिसअपियर कम्प्लीटली। दैट इज ट्रू। उसके बाद रेशमा कहती है, मैंग्रे से बुला केतन, फीजी इंडियन मॉम्स डोंट आस्क इफ यू आर हंग्री, दे डिसाइड यू आर। ये भी सही है, हमारे यहाँ पे भी होता है, वी डोंट आस्क कुछ खाना है या कुछ नहीं खाना है, वी जस्ट सर्व इट। कबीर कहते हैं, केतन ब्रो, एवरी ऑफिस हैज दैट वन पर्सन हु हीट्स फ्रेश इन माइक्रोवेव एंड डिस्ट्रॉय एवरीवन्स लंच ब्रेक। ये तो हाँ, क्वाइट कॉमन नाउ डेज, राइट? लाइक मतलब हाँ, ये मतलब काफ़ी बार हमें मैसेज आए इसके बारे में अलग अलग जगह से। नीला कहती हैं, हे केतन, व्हाई डू रिलेटिव्स आस्क व्हेन यू आर बाइंग हाउस, व्हेन आर यू बाइंग हाउस ड्यूरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, लाइक इट्स कैजुअल हॉबी। यहाँ ये भी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमसे ज़्यादा उनको पढ़िए कि भाई कहाँ रहना है, क्यों रहना है, घर कब खरीदोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमर कहते हैं, किरण भाई, इंडियन डैड्स ट्रस्ट रैंडम मैकेनिक अंकल मोर देन एक्चुअल डीलरशिप। ये मेरे पापा भी हैं, मेरे पापा भी लिटरली डीलरशिप में ऐसा बोलते हैं कि वो चुरा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इनफैक्ट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारी डीलरशिप में ज़्यादा स्ट्रांग रही है कार कंपेयर टू किसी प्राइवेट उसमें। मतलब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम रहते हैं, नॉट एवरी जगह, बट हमारे यहाँ की, हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो यस, अगर आप भी कुछ बताना चाहेंगे काउंटर इस पे तो डू लेट मी नो 5599 पे।
15: लंच के मंच पे।
18: हाय हाय हाय हाय।
7: top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। चलिए अभी की बात कर लेते हैं फटाफट से लेटेस्ट खबर की। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल ब्रांडिंग में एक नोटिसेबल चेंज अनाउंस किया है। वैसे अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी के लोगोज में इंग्लिश वर्डिंग को टेरियो माउरी के ऊपर ज्यादा प्रोमिनेंट दी जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को नया लोगो फॉर्मेट भेजा है जहां न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बोल्ड इंग्लिश टेक्स्ट में सबसे ऊपर होगा और इसके नीचे टे कावानांग टांगा ओ ऑटियोरा लिखा जाएगा। एजेंसीज को जून के एंड तक अपनी वेबसाइट्स अपडेट करने को कहा गया है। पब्लिक सर्विस मिनिस्टर पॉल गॉडस्मिथ ने कहा है कि ये कोअलिशन गवर्नमेंट का पहले से प्रॉमिस पॉलिसी चेंज था। गवर्नमेंट का कहना है कि दोनों लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी लेकिन कम्युनिकेशन में इंग्लिश को प्राइमरी प्रोमिनेंस दी जाएगी। इस डिसीजन को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी स्ट्रांग रहे हैं। सपोर्टर्स का मानना है कि इंग्लिश न्यूजीलैंड की मोस्ट यूज लैंग्वेज है और ब्रांडिंग को सिंपल और क्लियर बनाना जरूरी है। वहां क्रिटिक्स और माओरी एडवोकेट्स का कहना है कि मूव टे रियो माओरी की विजिबिलिटी और कल्चरल इंपॉर्टेंस को सिंबॉलिकली वीकन कर सकता है और ये चेंज वाइडर इंग्लिश फर्स्ट पॉलिसी के पार्ट में माना जा रहा है जो कोअलिशन एग्रीमेंट में इंक्लूड था। सो यस, न्यूजीलैंड में लैंग्वेज और आइडेंटिटी को लेकर डिबेट एक बार फिर नेशनल टॉपिक बन चुका है। क्या लगता है आपको, इज इट गुड डिसीजन और इज इट नॉट अ गुड डिसीजन? 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे भेजिए।

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
10: Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
0: हम
10: लंच के मंच पे।
2: क्यों ना नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। चलिए बॉलीवुड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। वेल इस बॉलीवुड की खबर ये है कि मराठी सिनेमास का सफर जो है अब सिर्फ रीजनल इंडस्ट्री तक ही लिमिट नहीं रहा है। एक टाइम था जब वी शांतारामन की क्लासिक फिल्म पिंजरा को मराठी सिनेमा के जाइंट माइलस्टोन माना जाता था, और फिर ऐसे ही बनवा बनवी जैसे कल्ट कॉमेडीज ने ऑडियंस का दिल जीता। लेकिन अब मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जिस तरह से पंजाबी मूवीज़ करती है, साउथ इंडियन करती है, उसी तरह से मराठी फिल्में जो है वो भी कर रही है। वेल 2016 में सैराट ने हिस्ट्री क्रिएट की थी जब वो पहली मराठी फिल्म बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब क्रॉस किया था। फिल्म का म्यूजिक, लव स्टोरी और रॉ इमोशनल स्टोरी टेलिंग पूरे इंडिया में क्रेज बन चुका था। और अब रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल एपिक राजा शिवाजी ने मराठी सिनेमा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 114 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्शन करके मराठी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मराठी सिनेमा अब सिर्फ कंटेंट ड्रिवन नहीं बल्कि लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी डिलीवर कर रही है। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के साथ बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल का कॉम्बिनेशन भी ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मराठी सिनेमा की ग्लोबल रिकग्निशन भी बढ़ती नजर आ रही है। कैंस फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मराठी आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स की प्रेजेंस कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो यस, मराठी सिनेमा अब रीजनल लेवल से बाहर निकलकर इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट सक्सेस की होड़ में आ चुकी है। सच अ ग्रेट थिंग, राइट? आपकी रीजनल, वैसे मैं बस ये कि ऑफकोर्स काफ़ी फिल्में हैं, हर एक रीजन की बढ़ती जा रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, राजस्थानी फिल्में भी बनती हैं अभी आजकल या नहीं? मेरे ख्याल से प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस तो नहीं है राजस्थानी फिल्मों का, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई बना रहा हो तो देर इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कलेक्शन की बात कर लेते हैं, पति पत्नी और वो 18.55 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। आखिरी सवाल 1.7 करोड़, आई आई जी 0.03 करोड़, उसके बाद डुग डुग 0.003 करोड़, देन दादी की शादी इज 4.7 करोड़, और साथ में और भी फिल्में हैं जिन्होंने कलेक्शन किया है. राजा शिवाजी का भी 114 करोड़ का कलेक्शन हो चुका, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले. जी हाँ, बट यस, लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन सी फिल्में हैं जो रिलीज़ होने वाली है, जिसे आप देख सकते हैं. नॉट श्योर कौन सी फिल्में यहाँ रिलीज़ हो रही है, बट ये सारी जो फिल्में हैं वो रिलीज़ होने वाली है. जैसे कि सबसे पहले चांद मेरा दिल 22 मई को रिलीज़ होने वाला है. हमारे रेडियो पे भी इसका प्रोमो चला है, तो आप उसे नोटिस करना, वो रिलीज़ होने वाली है. उसके बाद है जवानी तो इश्क होना है, ये 5 जून को रिलीज़ होगी. अरे जून आ गया यार, फिर जुलाई आ जाएगा, मतलब आधा साल ये भी निकल गया. कितना तेज़ी से जा रहा है ना समय, और वी आर गेटिंग सो सो बिजी. वैसे है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन के साथ साथ और भी कास्ट हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो सबसे लीड में है वो है पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर, ये भी लीड रोल में दिखते नजर आएंगे. उसके बाद ऑफ कोर्स गवर्नर 12 जून को रिलीज़ हो रही है, और कॉकटेल 2 19 जून को रिलीज़ होने वाली, जो शायद देखने वाली हो सकती है, जिसमें शाहिद कपूर भी हैं और साथ में उनके कृति सैनन भी है और रश्मिका मंदाना, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. वैसे आप कहीं मत जाइए, मैं लेके आने वाला थोड़ी देर में कौन से लेजेंडरी सिंगर आ रहे हैं ऑकलैंड, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी. बट तब तक के लिए एंजॉय करें बहुत ही खूबसूरत गाना, पैरों में बंधन है. पैरों में बंधन है.

वेलकम बैक आप सुन रहे हैं मेरी आवाज रेडियो के जरिए हम 104.2 एफएम। जी हाँ, वैसे यस, एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। हमारे बीच आ रहे हैं, पहले वो गाना चलाते हैं यार। ये गाना क्या बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। एक बार ये गाना चलाते हैं, उसके बाद आपके उससे बात करते हैं। उप्स, पहले ये तो बंद करूं। Nice. ये गाना बढ़िया है। well, आपको पता ही है कि गाना किसका है। ये है राहत फतेह अली खान, द लेजेंडरी सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, हु हैव सर्व्ड बॉलीवुड एज वेल फॉर मेनी मेनी इयर्स। और उनके एक से बढ़कर एक गाने, इज अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट। वेल यस, इनकी बात ये कर रहा हूं बिकॉज ये होने जा रहा है शो इनका यहाँ पे बहुत ही जल्द, उस पर बात होगी। बट यस, उससे पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैसे आ रहे हैं 25th ऑफ जुलाई को लाइव एट द ट्रस्ट अरीना, जेके स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं इन्हें। dryticketss.com पर जाके आप इनके टिकट ले सकते हैं। बट यस, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमने इमोजीज करके एक पोस्ट डाला है फेसबुक पेज पे, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि वो गाना कौन सा है बाय लुकिंग एट इमोजीज। और जैसे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जो आपको मौका देगा दो जनों को डबल पास जीतने का। बट यस, इनकी लेगेसी जो है ना वो काफ़ी पुरानी है, लाइक यू नो आई वुड से लाइक 600 ईयर्स पुरानी है। जी हाँ, खानदानी विरासत राहत फतेह अली खान जी है उस घराने से हैं जहाँ संगीत रग रग में बहता है। उनके पापा फारूक फतेह अली खान एक काफ़ी बेहतरीन हारमोनियम प्लेयर थे और उनके जो संगीत खुद जो दे नहीं है, उनके चाचा या फिर अंकल, आई थिंक चाचा या बड़े पापा है, थे नुसरत फतेह अली खान जी। जी हाँ, उनसे आई है। सो जिनसे उन्होंने म्यूज़िक भी सीखा है। और बॉलीवुड में अगर बात करें तो पहला जो सुपरहिट जो ब्रेक मिला है वो था 2003 में मन की लगन। उन्होंने बॉलीवुड से कदम रखा, बॉलीवुड में कदम रखा और रोमांस और सूफी के किंग माने जाते हैं, जिसमें से ओरे पिया, तेरी और जग घूमया काफ़ी पॉपुलर रहे। और अवार्ड्स की अगर बात करें तो अपने दिलों को जोड़ने वाले म्यूज़िक के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं। वेल यस, इनकी शादी जो है नीदा से हुई है और उनके तीन बच्चे हैं, एक बेटा शाजिल और दो बेटियां हैं। शाजिल खुद यहाँ पे आ रहे हैं उनके पापा के साथ, यानी कि राहत फतेह अली खान जी के साथ यहाँ पे परफॉर्म करने। यू मस्ट हैव सीन हिम इन द लास्ट विजिट एज वेल, और इस बार फिर से आ रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जाइए ड्राई टिकट में, टिकट ले लीजिए बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट। 25th ऑफ जुलाई, द ट्रस्ट एरिना, राहत फतेह अली खान।

0: मुस्कुरा जाएंगे।
1: क्या ना नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं इस आर के स्पेशल सेगमेंट में जो मेरा फेवरेट है। काफी कुछ बातें करनी है इस आर में, एंड ऑफ कोर्स हमारे आज के लोकल आर्टिस्ट का भी इस आर में गाना चलने वाला है थोड़ी देर में। डू यू नो हु इट इज, डू यू नो, वन ऑफ माय फ्रेंड मनु सिंह, जी हाँ, उनका गाना चलेगा अभी थोड़ी देर में। बट यस, आप एंजॉय करिए, बाद में हम आईपीएल के भी अपडेट लेके आएंगे आज, और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छी चीज चलाएंगे। बट यस, मनु भाई के लिए बात करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले एंजॉय करिए कुड़ी नू नचने दे। जी हाँ,
2: बचाओ क्या

0: Welcome back. Here you are. ये गाना था बनू सिंह का, बहुत ही प्यारा गाना लगा. मैं तो सच में वाइब पे था, बट बहुत ही क्लासिक गाना है ये. 2 साल पुराना बनाया था. आज वैसे काफी गाने इनके आ चुके हैं. एंड इन फैक्ट इफ यू डोंट नो, जो पापा टोटे वाला सॉन्ग जो है, पापा टोटे आपने सुना ही होगा. देखता हूँ अगर इस बीच अगर मुझे मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू प्ले. बट यस, पापा टोटे का जो सॉन्ग है वो इन्होंने ही बनाया है. जी हाँ, गाना आता नहीं यार, एक तो टाइम पे इतना स्लो हो जाता है पीसी. हाँ, अभी मैंने सर्च तो किया है, बट यस, ये जो गाना है ये भी इन्होंने, एक्चुअली चला ही लेता हूँ, होपफुली आवाज आ जाए यहाँ पे.
1: Monday CRM is.
0: Oops, no, not that. That's the ad. Ad नहीं आनी चाहिए बीच में. But क्या करें? YouTube की कमाई कहाँ से होगी फिर?

0: वेलकम बैक। मैं यहाँ पे बोलता ही रहा और इतना एक्साइटेड था ये न्यूज़ बताने के लिए। एक्साइटेड तो क्या है, जस्ट अपडेट के लिए कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गया। पर यस, मैं बात कर रहा था डनेडिन में एक पिज्जा शॉप बर्गलरी काफ़ी अनयूजुअल तरीके से फेल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्गलर्स कैश बॉक्स लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेटवे के दौरान कैश बॉक्स रोड पर ही गिर गया और बाद में पुलिस को मिल गया। पुलिस कहती है कि इंसिडेंट ओवरनाइट हुआ और ऑफेंडर्स एलिजली पिज्जा शॉप में ब्रेक इन करके कैश बॉक्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा उनका एस्केप प्लान, क्योंकि स्टोलन कैश बॉक्स एक डनेडिन रोड पर अबेंडेंट कंडीशन में मिला। पर हर कोई थोड़ी ना एस्केप प्लान सक्सेसफुल बना सकता। कौन सी मूवी है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, जो काफ़ी सीरीज आ चुकी है 7 या 8, नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ये तो बहुत ही गंदी बात है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो क्या था मूवी का नाम, भूल गया, जो नेटफ्लिक्स पे भी है शायद, या बट अथॉरिटीज़ अब सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंक्वायरीज के थ्रू सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने पब्लिक से भी अपील की कि अगर किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। लोकल बिजनेस ओनर्स का कहना है कि ब्रेक इन्स और प्रिटी क्राइम्स की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ता रहा और कई शॉप्स एक्स्ट्रा कैमराज और अलार्म इंस्टॉल कर रहे हैं। सो यस, कभी कभी क्राइम मूवीज जैसा परफेक्ट एस्केप रियल लाइफ में उतना स्मूथ नहीं होता, वैसे होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट पुलिस को और या फिर जो हमारी गवर्नमेंट, उनको कुछ प्लान करना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं रिपीट ना हो। दिस इज जस्ट गोइंग ओवर एवरीवन्स हेड।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Kaytan.
1: Welcome back. Well, मैं बात कर रहा हूँ हम रेडियो से. जी हाँ, आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स. गेम मोड इज ऑन. माय गॉड, मैं जस्ट आईपीएल का स्कोर देख रहा था ना, आई वाज लाइक भाई यार, मतलब ये 20-20 ओवर में भी आज 200 प्लस बनाना इज नॉट वेरी हार्ड टास्क नाउ, स्पेशली इन इंडिया में. और अभी तो देखो कल का मैच, राजस्थान रॉयल वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट. यू नेवर नो, लखनऊ क्या सरप्राइज दे हमेशा. लेकिन कल राजस्थान ने काफी अच्छा खेला है. इनफैक्ट राजस्थान में एक चहकता रखता छोटा पटाखा, छोटा तो आप नहीं कह सकते उसे, क्योंकि हर बड़ा सितारा उसे फॉलो कर रहा है, हर बड़ा सितारा उसे देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि भाई क्या है ये बंदा, क्या खा के पैदा हुआ है यार. भाई एलएसजी पहले खेलते हुए 220 रन बनाता है 5 विकेट खोकर, और जवाब में आरआर की तरफ से सबसे तूफानी पारी खेली है वैभव सूर्यवंशी. आई थिंक लगा देना चाहिए दैट वन एंड ओनली वैभव सूर्यवंशी. 10 छक्के मारे हैं सिर्फ और सिर्फ 38 बॉलों में, 93 रन बनाए हैं. माय गुडनेस, क्या बोले यार, मतलब जितना बोले उतना कम है इनके लिए. बट यस, लेट्स गो एंड सी की पॉइंट टेबल्स में क्या इजाफा हुआ है, बिकॉज ये डू और डाई वाला सिचुएशन थी फॉर राजस्थान रॉयल. बट अभी भी पंजाब के पास टाइम है. सो यस, ऑब्वियसली राजस्थान ऊपर आ चुके हैं, बट पंजाब के पास अभी भी टाइम है. तो अगर वो अच्छा खेलती है तो डेफिनेटली दे माइट हैव अ चांस टू गो एंड प्ले द प्ले ऑफ फॉर दिस सीजन.

0: वेलकम बैक। सुनिए, आप लंच बॉक्स शो, मेरा नाम केतन है, मैं 3 बजे तक यहाँ पे हूँ। वैसे यस, अभी थोड़ी देर में टेक टॉक की भी बातें होगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अमेजिंग से वीडियोस आप ऑब्वियसली देख रहे होगे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे जो AI से क्रिएटेड है, बट ऑफकोर्स काफ़ी वायरल भी हो रहे। आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे पेज पे, जिसपे एक सेलिब्रिटी बाहर निकलता है एयरपोर्ट से, एंड देन पब्लिक लाइक डाइंग एंड लाइक चिल्ला रही है और फोटो खींच रही है, एंड देन यू नो सेल्फी ले रही है, एंड यू नो वेल वो कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। बट वीडियो जो है अभी तक तो पॉसिबल नहीं, हम लगे हुए हैं उसी पे कि ऐसा कुछ हो जाए सचमुच, ताकि ऐसा मोमेंट आए हमारे लिए भी, बट हाल फिलहाल वो मोमेंट नहीं आया है। बट यस, आप उसी तरह का वीडियो बना सकते, वो बेसिकली AI से बना हुआ है। नाउ इमेजिन यार, कितना रियल लग रहा है ना वीडियो वो। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। बेसिकली मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे इसी तरह का वीडियो जो है, या फिर और भी तरीके जो वायरल वीडियोस आ रहे हैं, वो कैसे बना सकते हैं अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए या एनीथिंग। सो यस, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
3: You get money, get back.
4: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
5: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
7: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
8: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
7: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
8: Mashallah, bahut acha, very nice.
1: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
9: हम
1: TikTok.
0: Welcome back. Well, yes, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कैसे मैंने वो AI वीडियो बनाया जहाँ पे मैं खुद एक एज अ सेलिब्रिटी लग रहा हूँ और पब्लिक लाइक यू नो दे आर लाइक स्क्रीमिंग एंड लाइक शाउटिंग एंड टेकिंग फोटोज एंड स्क्रीमिंग माई नेम एट्सेट्रा। आज ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इनफैक्ट थोड़ा स्कैरी भी है कि हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी वीडियो रियल है, कौन सी वीडियो नहीं है। वेल, आई थिंक काफ़ी लोगों को पेटिशन भी डालना चाहिए रिगार्डिंग, ऑन अ सीरियस नोट ऑफ कोर्स, पेटिशन डालना चाहिए दैट ये रूल बन जाना चाहिए दैट कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, या तो आप सोशल मीडिया को कम्प्लीटली इग्नोर करो एज इन टू बिलीव ऑन, बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी वीडियो या फोटो आ रहा है, वेदर यू वॉन्ट टू बिलीव और नॉट दैट्स अप टू यू, बट ऑफकोर्स कुछ सच हो नहीं हो ये नहीं हो सकता। सो यस, कुछ पेटिशंस ऐसे होने चाहिए दैट पब्लिक गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि कुछ भी AI आप वीडियो बना रहे हो उसके नीचे कुछ एक नोट डाल दो दैट दिस वीडियो हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड जनरेटेड बाय AI, सो दैट पीपल विल नो कि ये रियल है या नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी मिसलीड भी कर सकता है वीडियो। इनफैक्ट वो मैंने तो जोक के हिसाब से बनाता है, एंड दैट्स नथिंग ऑन अफेक्ट टू anyone, ये सिर्फ एक मैंने एक आइडिया दिया था। बट यस, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ पॉइंट, कि वो वीडियो मैंने कैसे बनाया था। बेसिकली मेरे पास हिक्सफील्ड का अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन है, बट आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फ्री जनरेशन भी होती है, आप लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो हिक्सफील्ड करके एक वेबसाइट है, तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने अपना फ़ोटो उस पर अपलोड किया था और वीडियो सेक्शन में जाके मैंने सारा प्रॉम्प्ट लिख दिया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रॉम्प्ट यू राइट डाउन। इनफैक्ट अगर आप आजकल मैं वीडियो देख रहा हूँ कि एक फनी वीडियो है जिसमें जितनी बार भी यू नो द सलमान खान ने इतनी बार वीडियो में अपनी मूवीज में अपना शर्ट उतारते हैं एंड देन ही जस्ट गिव अ सरप्राइज टू एवरीवन शो हिज बॉडी उनके जो यू नो बाइसेप्स हैं एंड देन गुड लुक्स हैं वो सब दिखा देते हैं तो एक वीडियो फनी मैंने देखा उसमें इतना सही प्रॉम्प्ट यूज़ किया है कि कोई इंसान आ रहा है और हर एक सीन में वो सलमान खान को शर्ट पहना रहा है तो काफ़ी फनी लगा वो बट यस इस तरह के वीडियो आप भी बना सकते हैं हिक्सफील्ड पे जाके हिक्सफील्ड एक्चुअली इज़ नॉट द ओनली वेबसाइट जहाँ से आप बना सकते हैं और भी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप तरह तरह के प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं एन्जॉय कर सकते हैं सीख सकते हैं तभी मैं कहता हूँ कि हर दिन जाके वेन एवर यू गेट टाइम यू ट्राई टू लर्न अब तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन इनफैक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स पर भी छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो आने लग गई है उसे भी आप सीख सकते हैं सो यस ट्राई दैट एट योर होम वेन एवर यू आर फ्री एंड प्ले इट अराउंड As long as you are not misusing it, वो जरूर ध्यान में रखना बट चलिए that's all for Tech Talk. अभी वैसे जुड़े रहिए because थोड़ी देर में आके और भी बातें होने वाली हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली, हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने backyard beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
3: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the Savey Pack and Save message coming in 3, 2, 1.
0: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. 9 corrections staff have been arrested at Auckland's Mount Eden Prison. Information is limited due to an ongoing investigation and court proceedings, but it is confirmed they include senior officers. The agency says criminal activity will not be tolerated and staff involved will be held to account. The government's move to overhaul the public service continues to be thrashed out in Parliament. Labour's Chris Hipkins is questioning how cutting nearly 9,000 roles will help those struggling with the cost of living. Acting Prime Minister David Seymour is defending it.
5: When the government employs someone in the public sector, that has a cost, and that money can't be spent by the taxpayers. They can't go and spend it at a shop, and those businesses can't employ as many people.
4: A second young person has been arrested over an aggravated robbery in Hamilton. 2 people were seriously injured when 4 males entered a commercial property in Dinsdale earlier this month. A new timeline has been released over the restoration of Wellington's Moore Point wastewater plant. Wellington Water's Charles Barker confirms the facility will start treating sewage in November.
6: The roadmap identifies key milestones that we'll report back on regularly so the community can hold us to account and keep track of our progress.
4: To rugby with Shift 4 this weekend. Super Rugby Pacific teams are out in an hour. On Friday night, the Crusaders hosting the Chiefs. We do know the Chiefs will not have Damien McKenzie, who was concussed last weekend. Lock Josh Lord is available as he returns from his concussion stand down. And to basketball, Game 1 in the best of 7 NBA Eastern Conference final. The Knicks chasing down the Cavaliers in the final quarter. It's gone to overtime.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: Weather ka hal kafi kamal, feels like 18 degrees, 18.2 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 12 degrees. 5:20 pe aaj hoga sunset and mast mahol hai aaj. Thodi bahut cloud cover thoda idhar udhar.
0: The beat of Bollywood.
8: World's best hamari koi branch nahi hai.
9: Coffee break with Sandy.
10: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. मेरे साथ यहाँ पे ऑफ कोर्स रुजबे है एंड केतन इज स्टिल इन द स्टूडियो. केतन
11: मेरे को जाने नहीं दे रहे हो आप.
10: रुजबे को बातें करनी है ना.
11: वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा इधर दिया है तो थोड़ा इधर भी दे.
7: थोड़ा मतलब यू नो यू शुड ऑलवेज
10: या
7: बीइंग ऑन एयर इज लाइक कर्मा.
10: Yeah.
11: अच्छा,
7: it should come back. अभी जैसे सैंडी ने अभी तुम्हारे शो में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें की ना, अब तुम्हारा टर्न है कि तुम सैंडी के शो में कुछ ऐसी बातें करो जहाँ पे सैंडी को ऑकवर्ड कर दो.
11: मेरे को ना ऐसे सरप्राइज देने से पहले बोला करो कि भाई ये टॉपिक वो होने वाला, तुम ऐसी जगह में वो खड़ा कर देते हो. हाँ भाई कितन शुरू हो जा. मैं कहा कैसे हो भाई.
7: बट वही तो है बीइंग अ रेडियो अनाउंसर ना. कितने साल हुए अभी रेडियो अनाउंसिंग करते हुए.
11: मेरे को gonna be 2 years. Yeah,
10: two Almost years two
11: amazing
10: years,
11: amazing
10: yeah.
7: How's the experience been?
11: Amazing yeah. Like maine kabhi socha nahi tha that I'll be behind the mic. Like I always thought that I will be but in front of people. Like people will be listening to me, watching me.
10: But
11: as well
10: as a singing tumne hamesha socha tha ki as a mic hoga, lekin as a singing
11: band kamre mein, but I'm actually getting more audience than एक नॉर्मल स्टेज परफॉर्मेंस में, विच इज ग्रेट, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट एक्सपीरियंस एंड
7: ग्रेट यार, एंड पीपल आर लविंग यू आल्सो.
11: थैंक यू ब्रो. तेरे दिल से आ रहा है या
7: नहीं? मेरे दिल से नहीं, लोगों के दिल से आ रहा है. मेरे दिल से क्यों?
10: ऐसा डाउट नहीं रखते हैं कि तो डाउट क्यों है?
7: नहीं, लोग सच्ची में काफी पसंद करते हैं. कभी कभार वो इरिटेट भी होते तेरे गानों को लेकर.
11: हाँ होता.
7: नहीं, तेरे गानों को लेकर नहीं, मेरे चॉइस को लेकर.
10: केतन के गाए हुए गाने अच्छे हैं.
7: वो अच्छे. या But what's happening with your singing journey now? I see you doing a lot of things. तू तो perform भी कर रहा है ना अभी शायद कुछ कुछ जगहों पे.
11: हाँ, एक मेरा इसी weekend actually ये पहली बार हो रहा है जब मैं दो gig एक ही दिन कर रहा हूँ.
10: अरे वाह.
11: After back to back. So one is which is happening in netball. मनरेवा में. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू पानेर.
10: ग्रैंड मस्ती नाइट.
11: यस.
7: वाइब मिक्स प्रेजेंट्स.
11: हाँ जी. वहाँ हम जा रहे हैं. आई विल बी परफॉर्मिंग देयर. और उसके बाद मैं पानेर में एक रेस्टोरेंट में भी हूँ, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ.
7: इनवॉइस भेजे क्या इसको?
11: नहीं, मैंने
10: कितना बोलेगा ये.
11: आई डिडंट मेंशन. राइट.
7: नहीं नहीं, सही है. अच्छा किया. वेल डन.
11: थैंक यू. इतना सीख गया.
10: तो
7: ये रेस्टोरेंट में कितने बजे से कितने बजे तक होता है?
11: यूजुअली 9:30 से है, बट मैं बिकॉज उस इवेंट में होऊंगा तो मैंने कहा कि आई विल बी लिटिल लेट. तो मेरी जगह एक और सिंगर है ना, अंकित. वो कवर करेगा. कवर नहीं, ही इज आल्सो ग्रेट टच ऑफ पंजाबी. उसका रैप पार्ट बहुत अच्छा है. सो ही विल बी कवरिंग दोस थिंग. और फिर मैं आऊंगा थोड़ा बॉलीवुड सॉफ्ट रोमांटिक. देन थोड़ा हाइप बढ़ाएंगे. यू आर ऑल्सो वेलकम यार.
7: आई वुड लव टू बी देयर यार. कभी हो रहा है
11: ये? सैटरडे
7: को.
10: चलो ठीक है. तो यार ढूंढना पैनल में
11: नेक्स्ट वीकेंड. नहीं ढूंढना नहीं, आपका आवाज आ जाएगी.
7: हाँ,
11: बाकी सारे बिजनेस बंद होंगे ना तब. तो एक ही एक. और उसके नेक्स्ट वीकेंड में मिशन में आ सकते हो. वहाँ पे भी ऑलमोस्ट देयर.
7: क्या बात है.
10: नाइस केतन, दैट्स रियली गुड यार. और ये तुमने पहले नहीं कर रहे थे ना? और यू रीस्टार्टेड और यू लाइक स्टार्टेड?
11: नहीं, पहली बार. ये दो बार ही किया मैंने अभी तक.
10: ओके.
11: इससे पहला वाला एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज इन इंडिया. सो आई वाज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स. तो थोड़ा लग रहा था कि व्हाइट कॉलर लोगों के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इट गोना बी ग्रेट. हमने सारे गाने किए, प्रैक्टिस करी, सब किया. लिटरली मैंने सिर्फ दूसरा गाना गाया है एंड एक बंदा स्टेज से आके मेरे कान पे बोलता है, होल्डिंग द जो भी उसके हाथ में ग्लास थी एल्कोहल वाली, बोलता भाई ये बंद करो, मुन्नी बदनाम हो, ये गाना शुरू करो.
10: ओह माय
7: गॉड.
11: सो वो मेरा लास्ट टाइम था जब मैंने किसी ऐसी जगह परफॉर्म किया. तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा इंसल्टेड लगा क्योंकि ऑब्वियसली सिंगिंग म्यूजिक इज लाइक
10: वो परसेप्शन बन जाता है.
11: हाँ, तब से
7: मैंने सुना है कि जो डॉक्टर्स की पार्टीज होती है वो बहुत वाइल्ड होती है.
11: बहुत ज्यादा
7: डॉक्टर्स सबसे ज्यादा दे नो हाउ टू एंजॉय देयर पार्टीज एंड ऑल. लाइक हमको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा
11: बोरिंग होते हैं.
7: हाँ, बट नहीं, वो सबसे ज्यादा
10: हैपनिंग बहुत करते हैं ना. तो उसके बाद एंजॉय करने का अलग ही मजा है.
11: एक ही दिन मिलता है वो जब फुल टू बजाते हैं वो एक दूसरे की, लाइक फुल ऑन रोस्ट करते हैं स्टेज पे आके. सो दैट इज लाइक अमेजिंग.
7: या एंड बाकी बिजनेस कैसा चल रहा है यार केतन?
11: बिजनेस स्लो है.
10: उसमें होता क्या है?
11: सो बेसिकली कोई एजेंट होता है, उसको घर बेचना होता है. सो दे कम टू अस. सो वी ट्राई टू मेक, वी डोंट ट्राई, वी मेक श्योर दैट द गर्ल लुक्स neat, sharp and very nice looking for marketing purpose. उस पे वीडियो बनाते हैं हम, फोटोज खींचते हैं.
10: तो बेसिकली जब किसी को घर खरीदना है वो जो फोटोज और वीडियोस देख रहे होते हैं वो वाला जो है पूरा
7: ये बेसिकली रियल एस्टेट के डेटिंग एप्स हैं. जैसे डेटिंग ऐप पे हम फिल्टर विल्टर लगा के लोगों के फोटो देखते हैं.
11: थोड़ा बहुत सुधार तो होता है, डी क्लटरिंग तो होती है, बट इतना नहीं कि भाई ये तो ऐसी दिख रही थी.
10: घर थोड़ा चेंज कर दोगे.
7: बट उसमें तुम थोड़ा ओवरव्यू भी देते हो ना कि ये तुम्हारा लोकेलिटी है, यहाँ से इतना दूर तुम्हारे शॉप्स है, ये है, वो सारी चीजें.
11: एग्जैक्टली.
7: ड्रोन वोन भी उड़ाते हो मतलब. तुम्हारे पास तो वो भी है ना, वो ऐसा
11: वीआर.
10: अरे वाओ.
11: एफपीवी. That's called FPV actually. Yeah.
7: तो वो ऐसा पहन के उसने दिवाली में भी उड़ाया था वो. बहुत crazy लगता है वो देखने को भी. ऐसा लगता है कि तुम literally उड़ रहे हो.
11: Superman जैसा फील. अब तो खैर ये ऐसे create कर सकते हो.
7: अच्छा.
11: खुद उड़ रहे हो ऐसे. Like you can generate that.
7: No, but the experience of watching it from the top, like bird eye view, that is
11: more
7: different.
11: More fun is controlling it as well.
7: I
11: at
7: know,
11: the same
7: wo,
11: time.
7: Diya nahi na tune karne ke liye.
11: Wo us time thoda crowd sahenda, but I can definitely give you once it is empty. Because kisi ke sar pe phod diya. Mera drone to jayega. License bhi jayega.
10: Wahi na.
7: That's right.
10: But now you know, agar aapko you know, aapka koi aisa business hai jahan pe aapko help ki zarurat hai, Ketan Kumawat ko aap contact kar sakte hain lunch box ke time ke beech mein rahe.
11: Nahi, uske baad bhi kar sakte hain. Drop the number.
10: Haan, haan, number de sakte ho tum.
11: Haan, haan, of course, why not?
10: Haan, do number fir hame kya hai?
11: मतलब तो बिजनेस में तो देने ही पड़ेगा
7: exactly. नंबर कौन याद रखने वाला है ऐसा केतन कुमावत को ढूंढ लेंगे भाई अभी इतना बड़ा नाम है इंस्पायर मीडिया वर्क्स ना
11: इंस्पायर मीडिया वर्क्स
7: देख हम मीडिया वर्क्स में
10: स्पेस वर्क्स
11: ये सब लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है कि इंस्पायर मीडिया वर्क्स का बंदा मीडिया वर्क्स में भी
7: काम करेगा
10: क्या
7: बात है अरे यार क्या बात है वेरी नाइस
10: थैंक यू केतन
11: थैंक यू कहिए

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
3: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery until Monday. On now. Only at Freedom.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800-564-424.
8: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना.
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
11: कहानी of Indelible Homes.

0: क्या माल कमाल है. आप सुन रहे थे ये गाना ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स.
1: यस,
0: कॉफी ब्रेक जा रही है आपके लिए अभी.
1: या कॉफी ब्रेक में वैसे आपको बताते हैं कि और आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या आपके आसपास हो रहा है रुजबे, ये भी इन्फॉर्मेशन वैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं. रिसेंटली वैसे न्यूज आ रही है कि माउंट एडन के करेक्शंस फैसिलिटी में 9 स्टाफ इज अरेस्टेड. सो 9 स्टाफ हैव बीन अरेस्टेड माउंट एडन करेक्शंस फैसिलिटी में. सो एक पुलिस ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे. डिप्टी कमिश्नर फॉर मेन्स प्रिजन जो हैं डेव पैटिनसन, इनका कहना है कि करेक्शन ऑफिसर्स एंड सीनियर करेक्शन ऑफिसर्स हैड बीन अरेस्टेड. क्रिमिनल एक्टिविटी इन प्रिजन वुड नॉट बी टॉलरेटेड.
0: क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे.
1: यस. सो ये इम्प्लॉय करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 11,000 स्टाफ एंड मेजोरिटी एक्ट करती है विद इंटीग्रिटी प्रोफेशनलिज्म एंड ऑनेस्टी के साथ. लेकिन कुछ मैटर था जो कि जिसके ऊपर एक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी. सो जिसके कारण कुछ लोगों को 9 लोगों को टोटल एक्चुअली में अरेस्ट किया गया है. 9 स्टाफ को एक्चुअली में वहाँ पे अरेस्ट किया गया है.
0: पता चलना चाहिए ना कि क्या हुआ एक्चुअली में. तो लेट्स सी, कोशिश करेंगे. अगर आप जानते हो किसी को जो प्रिजन में काम करते हैं और जो हमसे बात कर सके तो यहाँ पे ज़रूर बताइए हमें क्या हो रहा, क्या है यार ये, व्हाट इज हैपनिंग.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz or sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6077.

18 मिनट बाकी है 4 बजने में. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड 4 बजे यहाँ पे ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो जाएगा. राहत फतेह अली खान बहुत ही जल्दी आपके सुपर सिटी में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. इनकी शो की टिकट वैसे dryticket.co.nz पे जाके एक्चुअली में dryticket.com पे चेक के आप एक्चुअली में चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको टिकट यहाँ पे जीतनी है, अगर आपको डबल पास जीतना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है. इसके लिए बस आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना है. हम 104.2 FM ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, वहाँ पे जाइएगा एंड वहाँ पे जाके आप फीचर फोल्डर में पिन पोस्ट आपको नज़र आएगी जिसका नाम है राहत फतेह अली खान. सो वहाँ पे एक इमोजी बनाया गया है. आपको गेस करना है कि ये जो इमोजीज हैं ये कौन सा गाना है, किस गाने को रिप्रेजेंट करते हैं. इतना सा गेस करने में आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पे एक डबल पास आपके नाम हो सकता है. गेस कहाँ पे करना है, वहीं पे आपको गेस करना है. यहाँ पे जो हमने इमोजीज बना के रखे हैं उसी के आपको कमेंट सेक्शन में जाके गेस करना है कि इस गाने का नाम क्या है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे, थोड़ा आफ्टरनून में क्लाउड कवर हो सकता है, ईस्टर्लीज का साथ रहेगा, 5:20 पे आज होगा सनसेट एंड ओवरनाइट टेम्परेचर्स गोना बी एज लो एज 12 डिग्रीज टुनाइट।
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
3: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:03, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rizvi. Hi Sandy, good afternoon.
5: Good afternoon Rizvi, कैसे हो तुम?
1: मैं बढ़िया हूँ Sandy, आप कैसे हो?
5: बढ़िया, ड्राइव शो शुरू हो चुका है और आज हमारे शो में क्या क्या होने वाला है थोड़ा बता देते हैं। पहले एक छोटा सा वो कहते हैं ना टीजर दे देते हैं।
1: हाँ, इंट्रो। आजकल वैसे भी पॉडकास्ट जब शुरू होते हैं तो पहले पूरा पॉडकास्ट में क्या होने वाला है उसका पूरा एक इंट्रो जाता है ना।
5: तो आज हम आपको इंट्रो देने वाले हैं कि शो में क्या क्या होने वाला है। या ये तो रहेगा ही,
1: वो ऐसा स्निपेट होना चाहिए ना सब।
5: या ये तो हो गई, ले ये भी होगा। और आज हम, अगर आप घर खरीदने वाले हैं एंड फाइनेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर यू नो घर बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं इसी आवर में।
1: जी, लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला के साथ बात होगी और 5 के बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं एक अलग सा गेम आज जो होने वाला है ये
0: सिचुएशनशिप।
1: डोंट गेट एक्साइटेड, इट इज अबाउट सिंपल है, हम आपको एक सिचुएशन देंगे और उसमें आप उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे वो आपने यहाँ पे बस शेयर करना है
5: या कॉल करके उस समय पर। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने हम रखते हैं। तो ये सब बातें भी एंड और भी बहुत कुछ, ट्रेंड मेकर्स में भी आज कुछ होने वाला है डिफरेंट। आज की थीम क्या है रुजबे?
1: आज
5: आज की थीम है गाइस, आज
1: की थीम
5: आज, प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: लिविंग इन द प्रेजेंट इज सो इंपॉर्टेंट। आज क्या क्या मतलब यू नो काफी बार हम सोचते हैं कि यार ये तो कल कर लेंगे, लेकिन एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
5: या
1: चलो अब गाना बजाते हैं अब,
5: तो आज इज द थीम।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Amit Trivedi ki awaaz aur aap sun rahe the bahut hi badhiya sa gana English Winglish from Shridevi's movie.
1: या बहुत अच्छी मूवी थी यार ये, वैसे लाइक क्लास मूवी थी. अगर आपने कभी नहीं देखी है एंड श्रीदेवी की ये मूवी मस्ट वॉच मूवी ज़रूर है. वैसे कुछ न्यूज़ आपके साथ भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं. गवर्नमेंट का ये आ रहा है न्यूज़, द गवर्नमेंट इज़ कटिंग सम व्हीकल रेगुलेशंस विच इट सेज कि विल मेक इट ईजियर फॉर द कंट्री टू कॉप विद द ग्लोबल फ्यूल शॉक्स. वेल, इसके बारे में एक न्यूज़ आई है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे
0: जी. और आपको पता ही है न्यू वर्ल्ड जो हमारे यहाँ पे, आई थिंक ये वही न्यू वर्ल्ड है
1: जो जल गया था,
0: जो जल गया था न्यू वर्ल्ड. तो आई थिंक उसके एक स्टाफ जो है डायन हॉडसन, उनके एशेज है और 30 ईयर सर्विस बैच, इसको जो नया फाउंडेशन जो ले हो रहा है वहाँ पे उसको रखा है as part of momento, not more like it's part of some recognition.
1: So I didn't get it, someone was injured over there ya kya?
0: So South Island ka ye supermarket hai, South Island supermarket ne apne jo ek long serving staff member hai unki ashes ko foundation mein store kiya hai.
1: Wow.
0: Unke naye store wale. So it's not this one, it's a South Island ka ek store hai.
1: 30
0: years inhone wahan pe kaam kiya tha as its freezer manager. Aur ye heart of the team the aur unhone kafi lasting impression choda tha staff aur customer pe. And jo ek small portion of her ashes hai along with her 30 year service badge, ये इसको प्लेस कर दिया गया था जहाँ पे स्टोर का नया फ्रीजर सेक्शन खड़ा रहेगा वहाँ पे.
1: ओके,
0: दैट्स सो कूल ना यार, इतना रिकॉग्निशन देना.
1: 100% इट इज.
0: आई डोंट नो व्हेन लाइक व्हिच कंपनी डज दैट, लाइक इट्स ग्रेट दैट न्यू वर्ल्ड हैज डन दैट.
1: या मैंने ये पहली बार ही सुना है ऐसा कि कोई कंपनी यहाँ पे ऐसा कर रही है, ऐसा सुना नहीं था. But yeah, Ruzbe, when talking about the vehicle regulations, New Zealand government jo hai, they are moving ahead with plans jahan pe सिंप्लीफाई करेंगे सेवरल व्हीकल रिलेटेड रेगुलेशंस. कुछ जो की चेंजेस होने वाले हैं इसमें हैं एक्सटेंडिंग वॉफ इंटरवल्स फॉर मैनी व्हीकल्स, अलाउंग सर्टन हैवी व्हीकल्स टू कैरी स्लाइटली मोर वेट टू इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स, एंड ईजिंग सम रिस्ट्रिक्शंस अराउंड ओवर डायमेंशन व्हीकल्स एज वेल, एंड दे ऑल्सो रिव्यूइंग रूल्स अफेक्टिंग जीरो एमिशन व्हीकल्स एंड फ्रेट ऑपरेटर्स. Under confirmed NZTA changes, they're coming into effect from November 2026. इसी साल नवंबर से. So new cars will get their second WOF after 4 years instead of 3.
0: Oh wow, तो एक और साल बढ़ा दिया उन्होंने.
1: एक और साल बढ़ा दिया. And many vehicles aged 4 to 14 years will move from annual WOF to WOF every 2 years.
0: 4 to 14 years.
1: 4 to 14 years. अभी क्या है कि
0: मुझे calculate करना पड़ेगा एक मिनट.
1: Annual की जगह every 2 years actually में आपकी vehicle का WOF होगा.
0: यार ये तो बढ़िया हो गया यार.
1: बहुत बढ़िया हो गया. एक साल increase हो गया है. Older vehicles इससे भी ज़्यादा currently needing 6 monthly checks will shift to annual. So, जिनका 6 महीने का है उनका 1 साल हो जाएगा. जिनका 1 साल है वो 2 साल हो जाएगा. जिनका 4 साल का था उनका, जिनका 3 साल का था 4 साल का हो जाएगा.
0: तो आपका अभी 4 साल हो जाएगा फिर अभी मतलब.
1: Yes.
0: Oh wow.
1: Yeah.
0: नहीं लेकिन आपका तो ऑलरेडी वॉफ लग गया है ना स्टिकर.
1: हाँ, लग गया है.
0: तो आपका नहीं, जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका तो लग गया है मतलब.
1: I think this is for the upcoming.
0: For upcoming, but what will happen to you after 3 years? Because आपका तो 3 साल का स्टिकर है ना वॉफ का. तो 4 to 14 के लिए बोला है ना आपने नेक्स्ट वाला सेगमेंट.
1: या
0: तो आप कौन से ब्रैकेट में आओगे?
1: 4 to 14, हाँ कम में ही आऊंगी ना मैं.
0: तो 3 साल के बाद कहाँ पे जाएगा वॉफ के लिए?
1: एक और साल मेरे को ऐसा बोनस में मिल जाएगा.
0: हाँ, फ्री में एक और साल मिलना चाहिए.
1: फ्री में एक और साल मिलना चाहिए. पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, अगर आप भी ऑन द सेम बोट है.
0: मतलब इसके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी आई थिंक ड्यूरिंग द कमिंग टाइम्स.
1: या Daily dose of wisdom, wit, and wild conversations. The Drive Show with Sandy and Rizvi. आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
3: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
4: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
8: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: A love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
13: प्यार में थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है।
14: हमारी love story तो legendary बन गई।
12: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, releasing in cinemas on 22nd May.
15: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
12: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
16: The Drive Show with Sandy and Rusby.
17: Hamesha saath dene wale dost.
18: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
16: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए। थोड़े टाइम में यहाँ पे हम गुरु गंडोला से बात करेंगे फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस, जो हमें अपडेट देंगे अबाउट द मॉर्गेज सेक्टर, क्या चल रहा है मॉर्गेज की दुनिया में।
1: सो अगर आप घर खरीदने वाले हैं या फिर घर बेचने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी में या फिर ट्रक, अगर ट्रक के ऊपर आपको लोन चाहिए, एनीथिंग,
0: कोई सवाल अगर है आपके पास, आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको चाहिए, यू नो यू वांट इट आंसर्ड, सेंड इट ऑफ टू अस 5599 पे आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे गुरु से वो सवाल पूछे एंड आपके लिए वो जवाब ले आए, तो आप भेज सकते हो सवाल
1: 5599। यू कैन सेंड द क्वेश्चन नाउ,
0: अभी क्या, अभी भेज दीजिए, थोड़ी देर में बात करेंगे उनके साथ। और आज का दिन खास है अगर आपके लिए, तो आपको ढेर सारी बधाइयां। आज के दिन क्या क्या स्पेशल हुआ है इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे आज हम।
16: Bollywood's most wanted.
19: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
20: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: हमारे जो एक्सपर्ट है गुरु कंडोला, उनको हम यहाँ पे लेकर आते हैं आपके इम्पोर्टेंट सवाल के लिए. आज हमने पूछा था हमारे लिसनर्स को, आपको ही पूछा था कि कोई ऐसा कोई सवाल है गुरु के लिए तो यहाँ पे भेजिए. तो एक मैसेज आया हमें यहाँ पे, और वो मैसेज है अराउंड द करंट टाइम्स, जहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज हो गई. हमने रिसेंटली सुना भी सैंडी कि कुछ गवर्नमेंट में भी जॉब कट्स होने वाले
2: हैं. यस, एक्चुअली मैं कल ही न्यूज़ आई थी अबाउट 8700 जॉब कट्स.
1: काफ़ी जगहों पे काफ़ी रिस्ट्रक्चर्स भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग रिडंडेंट मनाए जा रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में गुरु वेलकम टू द शो. उससे पहले तो आपके ऊपर हम इतने बड़े क्वेश्चन पूछे, उससे पहले आपको वेलकम कर देते. कैसे हो आप, क्या हालचाल आपके?
3: बढ़िया बढ़िया रिजवे, थैंक यू. सैंडी जी बढ़िया, आप बताओ सब कैसे हो, ठीक हो?
2: एकदम फर्स्ट क्लास.
1: हाँ अभी तक तो फर्स्ट क्लास है अभी. लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़ा बहुत ही पेचीदा सा सवाल है. एक हमारे लिस्टर है, उन्होंने उनके सर्कमस्टेंस काफ़ी चेंज हो गए हैं. जब उन्होंने घर लिया था तभी एवरीथिंग वॉज रोजी एंड एवरीथिंग वॉज नाइस, बट ड्यू टू दिस मार्केट अब उनकी जॉब स्टेबिलिटी का भी थोड़ा अफेक्ट हो गया है. एंड उनका प्लान है टू गेट आउट, बट मार्केट बहुत ही लो है तो अब घर का वो वैल्यू नहीं मिल रहा. तो ऐसे चीज में कोई है कुछ सॉल्यूशन जो आप लगा सकते हो इनके लिए?
3: रुज़बे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बात बोली है इट इज ट्रू कि मार्केट का जो इनटेक है वो डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जॉब कट्स आ रहे हैं इकोनॉमी में, यू नो अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से जो जो एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी है वो कई लोगों के लिए बढ़ रही है, कईयों के लिए नहीं बढ़ रही है. बट लेकिन जिनके लिए बढ़ रही है वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे उनको पॉसिबिलिटी है अपना घर बेचना पड़ेगा, और घर बेचने के लिए लेकिन जितने में उन्होंने लोन लिया था या वो जो कर रहे मतलब जितना उनको पैसा कवर करना था वो उतना वो बेचने के बाद वो कवर नहीं हो रहा. तो दे आर नाउ स्टक इन द सिचुएशन कि क्या करें, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी इशू आ रही है और बेच भी नहीं सकते हैं, अगर बेचेंगे तो काफी लॉस आएगा. नाउ इन सेइंग दैट, सॉल्यूशन तो देखो हर चीज का होता है, राइट? ये एक चीज जो मैंने सीखी है कि डेफिनेटली आपको हार नहीं माननी है, एंड देन यू नो इफ यू फाइंड ट्राई टू फाइंड अ वे यू विल फाइंड अ वे. तो उस केस में अब समथिंग सिमिलर हैपेंस टू मी, जहाँ पे क्लाइंट मेरे पास आए और बेसिकली अनफॉर्चुनेटली उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, एंड देन यू नो दे जस्ट वांटेड टू गेट दिस प्रॉपर्टी आउट एज वेल, बट मार्केट ऐसा था कि वो उसको भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे. एंड समहाउ दे वन ऑफ देम केम टू यू नो टॉक टू मी, बट मैंने कहा कि मैं एक से नहीं बात कर सकता, मुझे दोनों से ही करनी पड़ेगी. बट दोनों को मैंने आमने सामने टेबल पर बिठाया, वी जस्ट डिस्कस इट. यू वुडंट बिलीव कि वहां से ऐसी सिचुएशन से उनको वहां से मैंने निकाला कि बेसिकली दे एंडेड अप सेविंग दे ओन प्रॉपर्टी, जो थी वो प्रॉपर्टी भी उनके पास सेव हुई, एंड वी गॉट सम मनी इन टू द पॉकेट. लाइक उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, वी फाउंड अ सॉल्यूशन इन अ वे दैट जे दे कुडंट रिजिस्ट की यार ये कैसे हुआ. बट अगेन यस, दे आर थिंग्स विच आई नीड टू सेट टॉक एंड एक्सप्लेन टू देम. और लेकिन वो उनको उनका उनकी जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, एंड दे एबल टू सेव देमसेल्फ. जो जो आउटकम वो लेना चाहते थे उनसे उसको उनके उनसे बेटर ही आउटकम मिला. नाउ आई वुडंट एबल टू गो इनटू टू मच डिटेल्स अबाउट इट, बट लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई है, एंड वी कुडंट फाइंड दैट सोल्यूशन कि इसको बेचना ही पड़ेगा घर को, और वो भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली आई वुड से गिव मी अ कॉल, विल डिस्कस एंड विल try to find a solution for you. Or see, selling is not only the only option. There are other options out there as well. Sirf bechna hi ek wo option nahi hai. And then wahan pe jab wo baat karenge and aapko jab wo samajh aayegi, you will see ki basically maybe table will turn completely in a different way.
1: I think it
3: so, aapka
1: does make sense.
3: Jo aapka matlab jo question tha wo question ka answer ye hai ki basically yes, wahi same cheez. हार नहीं माननी है, यू नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन. मैं सॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली है.
1: मैं अगर इसको ब्रीफ में मतलब मैं जो समझा हुआ अगर आपको मैं बताऊं, और मेरे को लग रहा है लिसनर्स भी इससे अग्री करेंगे, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि डेड एंड है सामने, और हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन व्हेन वी गो टू एन एक्सपर्ट, व्हेन वी कम टू यू, हमें आप शायद ऐसा कोई रास्ता दिखा दो जो हमें नहीं दिख रहा है एट द पोजीशन दैट वी आर एट, वी आर इन, लेकिन आपको आपके साइड से वो दिख रहा है. सो या आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग इन टच विद यू.
3: 100% Rizbe, 100% and yeah, I would love to hear from our listeners or from our potential clients, and then yeah, we'll be able to help and bring them back into the radio just to see ki kaise situation mein first ke baar nikle hain.
1: Absolutely, thank you so much Guru for being here with us, and aap bhi contact kijiye Guru Kandola ko, aap Google pe jaake unko search kar sakte hain ya fir wo kafi jagah pe aap unko wahan pe jaake bhi check out kar sakte hain.
3: बिल्कुल 0800 लॉजिक जी इज द नंबर, सो 0800-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
1: थैंक यू गुरु, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे.
3: थैंक यू रिज़बे, थैंक यू, चीज़ बाय.

0: कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टिंसल टाउन में। बॉलीवुड की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं।
1: वैसे बॉलीवुड में कल दो ट्रेलर लॉन्च हुए, एक तो आई डोंट नो ये मूवी पैडी है, रामचरण की मूवी है पैडी, सो इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ एंड मैं वापस आऊंगा। इसका
0: ट्रेलर आऊंगा, कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा लगा
0: यार। अच्छा है, सेफ टू वॉच?
1: हां हां, सेफ टू
0: प्ले, नहीं हम देख सकते यार।
1: क्यों?
0: थोड़ा सा सुनाता हूं मैं, क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास उतना।
1: ओके,
2: अडॉल्फ हिटलर नु जानते
3: हो? अडॉल्फ हिटलर? हां जी,
2: वो भी मार्स का है, मार्शल।
4: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
5: मॉडर्न के उस साइड।

0: Zia.
1: Oh.
2: शायर की जुबानी अच्छी लगती है।
1: शहर है। नसीरुद्दीन शाह की है ये, मतलब
3: बचपन की कहानी।
4: काम है। जा यहाँ से।
0: मैं नहीं जा रहा। कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता?
3: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
5: लगता है कुछ पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
6: समझ में कैसे आएंगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
1: My God, that is so beautiful, यार ये बहुत ही emotional movie होने वाली है।
2: Yeah, this is like total इम्तियाज अली project. So इम्तियाज अली का project होता है कि एक present होता है और एक past होता है, यार एक parallel story होती है. So उसी वे से exactly इम्तियाज अली ने इस movie को बनाया है.
1: Yeah, what a beautiful concept as well, यार. And actually मैं हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन partition की बात करते हैं हम, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, बट एक्चुअली में पंजाब तो स्प्लिट हो गया था ना आधे आधे में.
2: हाँ, आधा आधा हो गया
1: और
2: था.
1: मैं जब भी एक ट्रिप पे भी गया था ना, तो तभी भी ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पे एक गांव है वो अचानक से ओवरनाइट बीच में से स्प्लिट हो गया था. तो आधी फैमिली उस पर तरफ रह गई, आधी फैमिली इस तरफ. सो वो लोग एक दूसरे की तरफ वेव करके बात करते हैं, मतलब उस टाइम पे तो फोन.
2: इसीलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज में ट्रॉमा भी कैरी हुआ है, बिकॉज यू नो जो इधर से उधर गए हैं, दे कैरी द ट्रॉमा एज वेल जो उन्होंने रस्ते में देखा है. सो वो आगे जनरेशंस में कई बार ट्रॉमा कैरी होता है, इम्पैक्ट छोड़ जाता है.
1: एंड ये हिस्ट्री के बारे में ना एक्चुअली में अंग्रेजों को ज्यादा पता नहीं है, मतलब अंग्रेजों ने किया है लेकिन उनको जो अभी के अंग्रेज हैं उनको पता नहीं है,
2: आज के टाइम के. हाँ, उनको पता नहीं है कि ये भी एक कंसेप्ट हुआ था.
1: उनको पता नहीं है कि जब पार्टीशन हुआ था तभी ट्रेन भर भर के सिर्फ लाशें गई थी एक जगह से दूसरी जगह.
2: एक ट्रेन स्टेशन पे तो सिर्फ लाशें ही थी.
1: उस मूवी में हमको दिखाया था, गदर मूवी में जो दिखाया था ना, आई थिंक दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग.
2: It was reality,
1: मतलब जो हुआ था उस टाइम पे.
2: या और भी बहुत कुछ, लेकिन ये मूवी जो है इट्स काइंड ऑफ लिखा है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. सो बेसिकली कहानी बताती है किसी की जो कि अपनी पुरानी मेमोरी में अभी स्टक है.
1: जी थोड़ा सुन लेते हैं ना. और
7: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है.

0: यार, गाने अच्छी होने वाली है। ए आर रहमान का म्यूजिक है।
1: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।

0: दिस इज अ मूवी जो 12 जून को रिलीज होने वाली है और ये ऐसी मूवी है दैट इज लाइक अ थिएटर वॉच.
1: इट इज अ थिएटर वॉच. या 100%. सो 12 जून को ट्रीट मिलने वाली है इम्तियाज अली की मूवी. यू नो अक्सर हम यहाँ पे बातें करते हैं इम्तियाज अली के बारे में, तमाशा के बारे में, रॉक स्टार के बारे में, और कई लोग बोलते हैं कि यार ये मूवी हमने सिनेमा में क्यों नहीं देखी थी. अभी आपके पास चांस रहेगा एक उनकी मूवी सिनेमा में जाके देखने के लिए.
0: मैं वापस आऊंगा.
2: सुपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
3: Hum, accurate traffic.
4: Brought to you by Public Trust.
5: And be fine for the evening, down to a low of 14 degrees tonight. On the southernmost way out of town, we did have a crash just before the Papakura off-ramp. It's been clear, but there's still delays pretty much all the way out there from the city. An hour and a quarter to get to Drury from town. On the southwestern, it's heavy south from Walmsley Road, 35 minutes to the airport. And on the northwestern, plenty of traffic between St Luke's and Arterton.
4: Create your will online with Public Trust from $69. Includes annual free update.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy, like giving new customers $30 credit on all four weekly plans $27 and above. Visit skinny.co.nz/plans now. New customers only. Ends 2 August. T's and C's apply.
7: Get the skinny.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी ओटिगे द ओकलैंड.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली.

0: झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहाँ दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा ट्विटर, जहाँ था वहाँ अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Good evening, 5:03. You are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe. Hi Sandy, good evening.
1: A very very good evening to you. Aaj 20 tarikh hai, agar aaj aapka birthday hai, a very very happy birthday to you. वैसे आज आपके लिए हम सिचुएशनशिप लेके आएंगे, जहाँ पे एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप सिचुएशन में क्या करते, आप इस चीज़ को कैसे डील करते. तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर अपनी सिचुएशन आप यहाँ पे बताना चाहते हैं और किसी से सलाह लेना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते, वो भी आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं 5599 पर.
0: जी, वी वुड वांट टू नो योर सिचुएशन. अगर आप यहाँ पे सिचुएशन नहीं लेकर आते हो तो हम भी आपके लिए एक सिचुएशन लेकर आएंगे.
1: yeah.
0: क्योंकि हमारे जिंदगी में तो इर्द गिर्द हमारे इसे सिचुएशन पे सिचुएशन
1: हर जगह पे होती
0: है, हमको दिखते रहते हैं.
1: या लेकिन आपके पास कोई है सिचुएशन तो आप भी यहाँ पे जरूर भेज सकते हैं 5599 पर.
0: तो शुरू करें अभी शो.
1: हाँ
0: चलो ठीक है, पहला गाना जो है आपको सुनाते हैं अभी. दिस इज अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग. लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज ट्रेंड मेकर्स में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं टॉपिक विच एक टॉपिक के अराउंड सॉन्ग्स,
1: एक टॉपिक के अराउंड. सो आज शेयर करेंगे टुडे इन हिस्ट्री, क्या हुआ आज के दिन में, क्या क्या हुआ था. तो इसलिए आज के ही गाने लेके आएंगे. अब आज के थीम के गाने क्या है ये जब आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा. लेकिन एक बंदा है ऑकलैंड में, रुजबे, जो समझ में तो इसको कुछ नहीं आया, ये स्टन हो गया. बिकॉज दिस ऑकलैंड मैन वॉज लेफ्ट स्टन, बिकॉज एक पार्किंग मशीन जो थी ऑकलैंड एयरपोर्ट में, इससे इसको चार्ज किए मोर देन $4,000.
0: पार्किंग मशीन ने,
1: पार्किंग मशीन है, फॉर जस्ट 15 मिनट्स.
0: क्यों ऐसा $4,000? गलती हो गई थी,
1: गलती थी. या साउथ ऑकलैंड का है. एंड
0: साउथ ऑकलैंड में लोग पार्किंग भर रहे हैं.
1: This was at Auckland Airport.
0: हाँ, airport.
1: The man is from South Auckland.
0: अच्छा.
1: So yeah, लेकिन वो भी यहाँ south में है.
0: क्योंकि मुझे लगा सिर्फ city में ही parking का पैसा भरते हैं लोग usually.
1: Yeah.
0: City और city के around थोड़ा बहुत.
1: But Auckland Airport में होती है.
0: हाँ, airport तो महंगा ही है भाई.
1: So कुशमा नैयर इनका नाम है वैसे. He tried to pay for a short term car park at the international terminal. The machine repeatedly उसे चार्ज करा था $4,059. So yeah, thank God उसने पे नहीं किया, नहीं तो बहुत ही लाइक सीरियस प्रॉब्लम उसके लिए हो जाती है रिफंड लेने के लिए.
0: $4,000 पार्किंग टिकट में, $4,000 का पार्किंग टिकट मेरे को नहीं लगता कोई भी भरेगा.
1: स्टक ही हो जाएगा वो वहाँ पे, हम एयरपोर्ट पे सो जाएंगे.
0: मेरी गाड़ी ले जा,
1: भरेंगे नहीं.
0: मेरी गाड़ी ले जा, मैं नहीं भर रहा पार्किंग टिकट.
1: आपने मैक्सिमम पार्किंग टिकट कितनी भरी है, मतलब वैलिड
0: मैक्सिमम पार्किंग टिकट?
1: या कितनी भरी है तुमने आज तक?
0: $85.
1: $85
0: पार्किंग टिकट.
1: वाओ.
0: वो भी मेरी गलती नहीं थी. हमें बोला गया था कि यहाँ पे पार्क कर सकते हो, वहाँ पे पार्क करो, तो हमने पार्क की वहाँ पे. बट चंदन लगा $85.
1: अच्छा, वो तुम्हें इन्फ्रिंजमेंट आया?
0: हाँ, इन्फ्रिंजमेंट ना, पार्किंग. हाँ, इन्फ्रिंजमेंट नोटिस.
1: लेकिन पार्किंग टिकट जैसे तुमने कहीं पे गाड़ी खड़ी की, उसके बाद जब पार्क करना
0: होती है, वो भी उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नोटिस ही बोलते हैं.
1: ओके.
0: हाँ, मेरे को बहुत लगती है. मेरे को अभी रिसेंटली मेरे पास एक है आउटस्टैंडिंग. आपको पे करनी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं. आपको मैक्सिमम पार्किंग टिकट आपने कितनी भरी है आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं 5599 पर.

0: champion. Well, तू है champion. वैसे अभी time आ गया है, हम हमारे जो local champions हैं इनको shout out दे. Backyard beats में हमारे local artists को हम यहाँ पे shout out देते हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं.
1: और आज के जो local artist है ना, ये रुजबे के favorite है.
0: मेरे favorite है ये local artist, 100%. या इनका एक creation मेरा favorite है. पहले ये सुनते हैं.
2: Celebrating local artists. Backyard beats.
0: Backyard Beats में आज हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है वो है नन अदर देन द क्रिएटर ऑफ दिस मास्टरपीस.
1: मुझे लगता है कि हमारे टॉप 100 में ये गाना भी ये 40 सेकंड्स का ट्रेंड करने वाला है.
0: ये आना चाहिए, मुझे लग रहा है. अगर मैं करूंगा ना टॉप 100 काउंटडाउन, तो मैं तो डेफिनेटली इस गाने को हर लिंक पे बजाऊंगा.
1: नंबर वन कर देगा ये गाने को.
0: बट एनीवे, मन्नू सिंह आज हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जिन्होंने काफी गाने बनाए. काफी लिखना पसंद है इनको. इनको राइटिंग, मेनली सॉन्ग राइटिंग इनका शौक है.
1: तो सॉन्ग राइटिंग ये काफी अच्छी करते हैं.
0: शेर शायरी भी करते हैं.
1: यहाँ शेर शायरी काफी करते हैं. सो मन्नू सिंह का ये जो क्रिएशन है पापा टोए टोए, ये तो आपने बहुत बार देखा भी है रील्स में, यहाँ पे भी बहुत बार सुना है. बट आज एक डिफरेंट गाना भी इनका सुनने वाले हैं
0: जी. आज हम जो सुन रहे हैं ये स्पेशली मेरे लिए, मुझे लग रहा है ये गाना, क्योंकि यहाँ गाने का नाम है Here's You Are.
1: Let's see.
0: देखते हैं कि क्या है इस गाने में. सुनते साथ में.
1: बोल दिए तुम्हारे लिए.
0: हाँ ना यार, अभी मैं
1: और इसे सुना भी नहीं है कि कैसा है गाना.
0: मैं सुना नहीं है गाना. बट एनीवे, आप बताइएगा जरूर हमें 5599 पर मैसेज करके कि आपको ये गाना कैसा लगा.
2: Here's you are.

0: मनु सिंह ऑन. हम आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा क्रिएशन फ्रॉम आर लोकल आर्टिस्ट मनु सिंह. देखो मैंने बोला ना हियर्स यू आर, देखा क्या बढ़िया गाना लिखा मेरे लिए,
1: रुजबे के लिए लिखा है ये
0: तो फिर.
1: हाँ 100% वैसे उसने लिखा है ड्राइव शो के लिए भी लिखा है, याद है हमने प्ले किया था.
0: यस
1: लास्ट ईयर आई थिंक हमने प्ले किया था वो
0: जी. वैसे आज हम आपके साथ यहाँ पे खेलने वाले हैं ये.
2: अरे
0: फिर से सुना तो मिस हो गया ना. सिचुएशनशिप में हम आपके लिए सिचुएशन लेकर आएंगे और आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे. तो थोड़े मल्टीपल सिचुएशंस आए हमारे पास यहाँ पे आज, सो वी विल ट्राई एंड सी व्हाट द जनरल कंसेंसस ऑन, मतलब किस सिचुएशन पे ज्यादा हमें रिस्पांस आता है.
1: तो एक सिचुएशन बताते हैं,
0: एक सिचुएशन अभी बताओ अभी के लिए.
1: सो अभी के लिए एक ही सिचुएशन है. इस सिचुएशन में ये है कि आप ना एक ग्रुप चैट में हैं एंड काफ़ी लोग आजकल ग्रुप चैट में होते हैं एंड ग्रुप चैट में एवरीवन इज प्लानिंग अ कैचअप विच यू डोंट वांट टू अटेंड. सो हाउ डू यू एस्केप फ्रॉम इट. आप क्या करते हैं वहाँ पे कि हर कोई, मतलब कि 99% वहाँ पे जो है
0: सब एक्साइटेड है वो चैट,
1: सब एक्साइटेड है
0: मीटअप के लिए, वो कैचअप के लिए.
1: या बट आपको नहीं करना है वो कैचअप
0: जी.
1: तो क्या करोगे,
0: क्या करते हो आप सैंडी, आपका क्या स्ट्रेटजी है इसमें.
1: मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं, मैं सीधा बोल देती हूँ नॉट अवेलेबल. मतलब अगर नहीं कर सकती, मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट अवेलेबल. तुम बताओ. मेरे ग्रुप चैट्स बहुत कम है बाय द वे.
0: अच्छा,
1: जो मेरे है ना ग्रुप चैट वो यहाँ पे नहीं है.
0: ओ, सब बाहर के
1: ओवरसीज है. एग्जैक्टली
0: राइट, क्योंकि यहाँ से ग्रुप चैट्स में से तो आपको निकाला जाता है ना.
1: या वो फ्रेंड ग्रुप चैट नहीं था बाय द वे. या
0: ओके, मेरा यार बहुत रिस्की बात है ये, क्योंकि ये ऐसा है कि जो होता है ना मेरे साथ काफी बार और अभी रिसेंटली हुआ है. पिछले वीकेंड पे मेरे दोस्तों का प्लान हुआ था मिलने का, बट मैं जेन्युइनली अवेलेबल नहीं था. तो मैंने मेरे एक दोस्त को पहले ही बोल दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस वीकेंड, मैं अगले वीकेंड अवेलेबल रहूंगा. बट पीपल आर वेरी एक्साइटेड, तो इसी वीकेंड का प्लान बन गया. तो मैंने रिप्लाई नहीं किया ग्रुप पे फिर.
1: ओ
0: तो अभी क्या रिप्लाई करूँ ना.
1: तुम साइलेंट हो जाते हो.
0: साइलेंट हो जाता हूँ मैं.
1: You just go invisible कि मैं हुई नहीं.
0: हाँ मैं हुई
1: नहीं. तुम करो.
0: या तुम करो. और फिर अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे जब भी फोन आता है तो फोन भी मेरे से आंसर नहीं होता है, क्योंकि okay. मेरा फोन मेरे हाथ में नहीं होता है ना, मैं बिजी होता हूँ ना.
1: इसे आंसर नहीं किया.
0: हाय
3: हाय, कैसे हो.
0: बस बहुत बढ़िया भाई, बताओ.
3: मैं ऐसे टाइम पे बस वही बोलता हूँ सीधा कि मैं बिजी हूँ, मेरा कुछ और प्लान है.
0: मैं बिजी हूँ, मेरा कुछ और प्लान है.
3: या तो मैं बिजी हूँ वो दिन पे, या तो मैं मेरा कोई और प्लान है. तो सॉरी आई वोंट बी पार्ट ऑफ इट. तो भी देता सीधा.
0: अच्छा, एफएस कभी बीवी के नाम पे बिल फाड़ा है क्या.
3: हाँ बहुत बार
0: ना. हाँ मेरे को वही लगा, मैं अकेला नहीं हूँ मतलब.
3: नहीं वो अपन शायद मोस्ट ऑफ ऐसे ही होंगे.
0: हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है लड़कों के बीच में ये बहुत कॉमन है. अगर उनको कहीं पे जाने का मन नहीं ना, वो बहुत कन्वीनियंटली बीवी के नाम पे ढकल देते हैं.
1: क्या उसको विलेन बना दो.
0: हाँ उसको बना दो विलेन. मैंने तो बहुत बनाया.
3: और एक बार तो लिटरली मेरे वाइफ ने सुन भी लिया था कि मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूँ.
0: हाँ
3: जा पड़ी थी ना, तो वो अभी तक भूला नहीं. मैं दो चार बार इधर उधर देख के बोलना पड़ता है. आतंक बाबू भाई का आतंक.
0: बाबू भाई का आतंक. यस यस
1: नाइस.
0: Thanks man for sharing.
3: Okay guys.
1: Thank you. So अभी बताइएगा कि आप ऐसी जगह पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, या फिर इवेंचुअली यू लाइक पिघल जाते हो, आप भी उसमें हिस्सा बन जाते हो. आप भी eventually,
0: आप भी चले जाते हो उसके,
1: आप भी चले जाते हो कि भाई एक अकेले आप ऐसा करोगे तो सही नहीं है, तो आप भी इसका हिस्सा बन जाओगे.
0: Right. Do you get like succumb to peer pressure? तो आप यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं. वैसे थोड़ी देर में कुछ मैसेजेस सुनने के बाद हमारे पास आज कपल ऑफ सिचुएशंस आए यहाँ पे, तो हम और भी सिचुएशंस आपके साथ शेयर करेंगे एंड होप करेंगे.
1: एक और सिचुएशन है या स्टे ट्यून्ड.
0: बट थोड़ी देर में या
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़्बी.
5: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
2: हम
5: accurate traffic.
6: Checked your KiwiSaver fees lately?
7: And be fine for the evening, down to a low of 14 degrees tonight. On the southernmost way out of town, we did have a crash just before the Papakura off-ramp. It's been clear, but there's still delays pretty much all the way out there from the city. An hour and a quarter to get to Drury from town. On the southwestern, it's heavy south from Walmsley Road, 35 minutes to the airport. And on the northwestern, plenty of traffic between St. Luke's and Arthur.
6: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
8: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
9: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
10: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वेसिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट vecityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
4: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: Hamesha saath dene wale dost. Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: ड्राइव शो जारी है पावर ड्राइव एट फाइव और सिचुएशनशिप ये आपके लिए हम लेकर आते हैं
4: सिचुएशनशिप
0: जहाँ पे हम आपके लिए एक सिचुएशन लेकर आते हैं और आपको बताना है इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं तो सैंडी और एक कौन सा सिचुएशन है हमारे पास
1: एक और मैसेज आया है कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रहे हैं फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आप मूवी देख रहे हैं एंड दे कीप टॉकिंग थ्रू इट डू यू स्पीक अप और यू स्टे क्वाइट
0: मैं तो मूवी पॉज कर देता हूँ मैं रोक देता हूँ मूवी मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को दो दो जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है या तो तुम बात कर लो नहीं तो मूवी चलने दो
1: या मुझे भी रिवाइंड करनी पड़ती है
0: तो मैं तो लेकिन आप बहुत बात करते हो मूवी चल रही है तो वो टाइम पे
1: मैं इतनी बात नहीं करती हूँ
0: बहुत बात करते हो आप सैंडी
1: बहुत कम बात करती हूँ
0: नहीं नहीं आई हैव और मैं आई एम द वन हूँ मैं पॉज कर लेता हूँ और लोगों को लगता है कि ये क्या इंसल्टिंग बात है मतलब हम क्या बात करना बंद कर दे क्या अरे नहीं तुम बात मत करना
1: इट इज ओके इंसल्टिंग नहीं मुझे तो नहीं लगता है लाइक अगर मैं किसी के साथ मूवी देख रही हूँ दे पॉज वेर वी कन्वर्स इट इज नॉट इंसल्टिंग
0: इट्स नॉट इंसल्टिंग इट्स ओके
1: इट इज कन्वर्सेशन इट इज अ कन्वर्सेशन यू कन्वर्स एंड देन यू अगेन वॉच अ मूवी
0: लेकिन डू यू लाइक टू टॉक ना ड्यूरिंग मूवीज
1: नो नॉट कमेंट्री एज अ टॉक कि अब इसके साथ ये होगा या कुछ ऐसे I think I talk when someone जैसे तुमने मूवी देखी है you have already seen a movie और अगर मैं वो मूवी देख रही हूँ तो मैं शायद वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा बोलूंगी
0: अच्छा
1: ज्यादा नहीं
0: क्योंकि मुझे याद है हम लोग धुरंधर देख रहे थे ना
1: हाँ तो तुमने देखी थी ना मूवी वो
0: और मैं पॉज कर रहा था बार बार क्योंकि मैंने भले देखी है लेकिन फिर भी मेरे को नहीं चाहिए कि कोई बात करे बीच में
1: या एनीवे गाइस सो आप बताइएगा कि आप क्या करेंगे अगर आप मूवी देख रहे हैं फ्रेंड्स के साथ एंड समवन इज टॉकिंग थ्रू इट इज लाइक ही नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी टॉकिंग रैंडम थिंग्स
0: क्या रे उसका शर्ट देखा उसका शर्ट कौन सा कलर का है
1: नो नो नो नॉट दैट नॉट इवन दैट टॉकिंग समथिंग लाइक कि अरे मेरे साथ ना आज ये हो गया, मेरे साथ आज ये हुआ था, तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में आज ये हुआ था. रैंडम टॉपिक आई एम सेइंग, नॉट अबाउट द मूवी.
0: अच्छा.
1: और ऐसा होता है, और ऐसा मैंने कई बार शोज में भी एक्सपीरियंस किया है, और मुझे बहुत इरिटेशन होती है शोज में. अगर मैं कोई लाइव शो देखने गई हूँ एंड पर्सन आई एम वॉचिंग अ शो एंड देर वॉज वन पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब टेम्पररी वो पर्सन आके वहाँ पे बैठा था, बैठी थी.
0: ऑब्वियसली टेम्पररी ना, क्योंकि आप उठ के चले गए बाद में.
1: ऑब्वियसली. एंड दे वर टॉकिंग रैंडम स्टफ, और लाइफ कैसे चल रही है, मतलब ऐसी रैंडम स्टफ. और मैं शो, आई वॉन्ट टू इन्जॉय द शो. तो मेरे को वो चीज नहीं पसंद होती है कि भाई शो देख रहे ना अभी. बट वहां पे आई डिडंट स्पीक अप, आई जस्ट स्टेड क्वाइट एंड इग्नोर्ड इट.
0: ओह अच्छा.
1: या दैट्स व्हाट आई डिड.
0: इग्नोर कर लिया आपने.
1: इग्नोर कर लिया, तो उसमें पता चल गया पर्सन को कि
0: नहीं. फिर उसके बाद उसने हर जगह फिर बोलना चालू कर दिया कि अरे सैंडी ना उसमें बहुत एटीट्यूड है, वो बात नहीं करती.
1: ऐसा सुना है मैंने मार्केट में.
0: मार्केट सुना है ना.
1: बहुत सुना है.
0: आप यहाँ पे कॉल करके शेयर कर सकते हो कि आपने सैंडी के बारे में क्या सुना है. 0800-004-866.
1: फिलहाल तो सिचुएशन के बारे में बताएगा कि इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी विद फ्रेंड्स एंड दे कीप टॉकिंग थ्रू इट, डू यू स्पीक अप और स्टे क्वाइट, व्हाट डू यू डू?
0: बताइए आप भी. मैं तो मूवी पॉज कर लेता हूँ या मूवी बंद ही कर देता हूँ, मैं देखना ही नहीं है.
1: शो से उठ के कहाँ जाओगे अगर शो देख रहे हो तो? वही रहना पड़ेगा.
0: शो के टाइम पे मैं बोलता हूँ कि अरे दो मिनट ना जरा ये देखते हैं. मैं किया है ऐसा. और मैं वो लगता है मैं हूँ भी ऐसा ना कि मैं बोल देता हूँ चीजें. Yeah, I think it is good to just speak out.
1: और गाइस आपने कितने शोज अटेंड किए यहाँ पे, कितने बॉलीवुड आर्टिस्ट आते हैं शो आप अटेंड करने जाते हैं, लाइव शो अटेंड करने के लिए जाते हैं. तो हुआ होगा ना कभी कुछ ऐसा, तो बताइए उसके बारे में.
0: कुछ शोज ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें बात करने पे मजबूर हो जाते हो तुम, क्योंकि तुम्हें बात करनी पड़ती है. क्योंकि कुछ शोज नहीं है ध्यान देने लायक, तो उसमें बात करना इज मोर प्रेफर्ड. बढ़िया. ऑब्वियसली आर्टिस्ट के सामने बैठ के तुम नहीं बात कर सकते हो ना.
1: ट्रू ट्रू.
0: एंड वर्सेस जब स्टैंड अप कॉमेडी शो हो रहा है, उस मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है जब स्टैंड अप कॉमेडी शो को लोग रिकॉर्ड करते हैं.
1: वो तो कभी नहीं करना चाहिए.
0: मैं देख ही नहीं पाता हूँ वो चीज, मेरे को ना इरिटेट होता है. मैं लिटरली एक बार गया था एक शो में और सामने वो छुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे. मेरे को इतना इरिटेट हुआ यार, मेरे को लगा कि मैं बोलू कि नहीं बोलू. क्योंकि सिक्योरिटी वाला वहां पर खड़ा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है. वो मेरे को बोलेगा तेरा क्या जा रहा है भाई, तू बैठ का देखना. बट बढ़िया.
1: हीरो क्यों बन रहा है?
0: हीरो क्यों बन रहा है? या हाय, आपका स्वागत है.
5: रुज भाई कैसे हो? सैंडी हाय.
1: बढ़िया, आप कैसे?
0: बहुत ही बढ़िया.
5: आई एम वेरी गुड थैंक यू. इट्स अ वेरी एक्चुअली आई एम कोला फ्रेंड्स के साथ, बट आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट एट द सिनेमा हाउस वेयर यू आर वाचिंग एंड देयर वुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल talking on top of their voice, but sometimes you feel ki isko kaise bolu. But no, I mean it is a place, a shared place where everybody should be respecting each other. Aur agar cinema mein ja rahe ho to agar acha movie ke bare mein baat karke hans rahe hain, that's okay. But if you're talking about what's outside of the movie, then probably cinema is not the place for you to come and sit and talk about.
1: 100% you're right.
0: That is so irritating actually.
1: Yeah, because like public place है वो.
0: और worst तो वो होता है जब लोग अपने फोन पे भी देखते हैं, फोन स्क्रीन पे, क्योंकि वो लाइट अंधेरे में और ज्यादा अपने को दिखता है.
1: स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं.
0: हाँ, स्क्रॉलिंग कर रहे, वो तो बहुत इरिटेट होता है यार.
5: उसके साथ वो तो बोलने में भी इजी है कि आपने बोल दिया या पोज कर दिया आपने बोला, बट a public place I think we all should be mindful about.
0: But yeah. Can we normalize us talking like telling people out like ki matlab agar wo log ye sab kar
5: rahe hain, I think the more we talk about this sort of topic out in on a radio and people listening to this probably be able to recognize ki ha chalo hum bhi aise kar rahe hain, then I should stop.
1: Makes sense actually. Main yahin se to awareness hogi.
0: Yeah, that's right. Kya naam hai aapka?
5: मैं
0: किशोर. किशोर, ठीक है. थैंक यू सो मच
5: फॉर
0: शेयरिंग. थैंक यू. सो इट्स नॉट ओके टू टॉक इन थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस. जब आप प्ले देखने जा रहे हो तो भी वहाँ पे बात करना.
1: थिएटर में भी नहीं अलाउड है.
0: वहाँ पे भी अलाउ, मतलब नहीं बात करनी चाहिए आपने, बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए.
1: एंड सेम गोज इन सिनेमा. कभी कभी होता है कुछ अर्जेंट कॉल आती है तो आप उठ के बाहर जाते हो, इट्स डिफरेंट थिंग. लेकिन देन स्क्रॉलिंग करना बैठ के ऐसे ही, वो थोड़ा लाइक हैबिट है ना
0: भाई. मैं जो भी इंडिया में मेरे यहाँ पे जहाँ पे था तो वहाँ पे लोग फोन आंसर करते थे और हेलो जोर से बात कर कन्वर्सेशन करते थे
1: बात कर
0: फोन
1: रहे हो?
0: पे हेलो oh, हाँ नहीं अभी मूवी में आया हूँ ऐसे चिल्ला के बोल रहे हैं वो लोग मैं बोला यार ये क्या है यार बढ़िया एनीवे
14: Bollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
16: मैं लाऊं अपना ए गेम
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना फिसल जा तू। वेल, आज ट्रेंड मेकर्स 6 से 7 में हम आपके लिए एक थीम लेकर आ रहे हैं और आज का जो थीम है वो है अबाउट आज। आज क्या क्या हुआ है इन हिस्ट्री, और एक्चुअली आज काफी सिग्निफिकेंट चीजें हुई है इन हिस्ट्री।
1: जैसे
0: कि आज के ही दिन इन सम ईयर 1500s में या कभी तो भी मैं बोलता हूँ आपको एग्जैक्टली हाँ सैंडी।
1: एंड बाय द वे आल्सो उस आवर में हम शेयर करेंगे कि ऐसा क्या था दैट यू लर्नड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स कि टुडे वो कहते हैं ना आई एम 1 year old व्हेन आई लर्नड दिस, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप यहाँ पे मैसेजेस भी कर सकते हैं 5599 पर। ऐसा क्या था जो आपको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि ओके ये होता है, इसका मतलब ये होता है।
0: तो आज 1498 में वास्को डे गामा इंडिया पहुंचे थे बाय सी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके बाद से जो ग्लोबल ट्रेड है वो चेंज हुआ फॉर एवर। ऑन द 20th में 1498 और उसके बाद से जो काया पलट हुई है इंडिया की
1: टोटल डिफरेंट।
0: तो अगर ये नहीं पहुंचते तो शायद पता नहीं क्या होता आज।
1: या बाय द वे रुजबे आल्सो 2026 में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा,
0: अभी हो रहा है जून में।
1: या जून में
0: ईरान और न्यूजीलैंड का पहला गेम,
1: या वो पहला गेम होगा। एंड ये जो गेम है और इसका जो स्पोर्टिंग हिस्ट्री का एक्चुअली में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि हम ये एक वर्ल्ड कप होता है। एंड आई यूज टू फॉलो दिस अ लॉट पहले
0: जर्मनी
1: बहुत मेरे को गालियां पड़ती थी क्यों जर्मनी, देयर वाज वंस ब्राजील एंड जर्मनी के बीच में मैच एंड ब्राजील के तो फॉलोअर्स बहुत ही कट्टर होते हैं, तो तब बहुत ऐसा पड़ा था कि क्यों जर्मनी को, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ 1 or 2 प्लेयर्स। एनीवे, तो अगर आप इस वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं तो बता दूं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। क्रिस मार्टिन जो है ये परफॉर्म करेगा, शकीरा विल बी परफॉर्मिंग ओवर देयर, मैडोना विल बी परफॉर्मिंग, BTS
0: ये कोरियन बैंड
1: वो भी वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। सो 3 countries 48 टीम्स एंड नाउ हाफ टाइम शो भी वहाँ पे होगा। सो इट्स गोना बी अमेजिंग दो जिस वे से वर्ल्ड कप का लाइनअप है।
0: कुछ क्रेजी हुआ सैंडी टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, मैंने ये इंस्टाग्राम पे ही देखा थोड़ा बहुत, बट धोनी को फेयरवेल मिला यार IPL में।
1: क्या बात कर रहे हो, कब हुआ
0: ये मैंने कल अभी देखा, मतलब आज सुबह देखा मैंने स्टोरीज में, बट मैं अब तक पूरा फॉलो नहीं कर पाया हूँ। बट आज 6 बजे के बाद इसके बारे में भी बात करेंगे, थाला फॉर अ रीजन, क्या हुआ फेयरवेल और ये सारी डिटेल्स विल शेयर वेरी सून। सुनते रहिए हम
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पे, हमेशा साथ देने वाले दोस्त, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू। Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: A low of 14 tonight, mostly fine around Auckland for the evening. Not so fine on the southern, unfortunately. We had a crash earlier around Papakura, that's been clear, but it's still heavy Newmarket to Drury, 1.25 hours to get there from the city centre. On the northwestern, you've got delays St Luke's to Te Atatū. The northern is heavy out to Esmond Road. And the southwestern slow south of Walmsley Road, 40 minutes to the airport.
3: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
6: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, queen size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
7: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
8: Brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe with sleepyhead queen mattress frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
9: Power Drive at 5.
10: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: थ्रोबैक में आपको एक गाना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सैंडी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। सैंडी, क्या चल रहा है बाकी जिंदगी में?
1: जिंदगी में सही चल रहा है। मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो तुम कभी भी खा सकते हो? खांसते हुए भी खा सकते हो, हंसते हुए भी खा सकते हो,
0: खांसते हुए भी। अच्छा, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो आप कभी भी खा सकते हो?
1: जो कभी भी खा सकते हो।
0: एप्पल।
1: एप्पल इज योर लाइक फेवरेट एवरी टाइम?
0: नहीं।
1: हाँ, तो वो मैं कह रही हूँ कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन की या फिर कंडीशन की, तुम्हें ये फ्रूट खाना पड़ेगा एवरी डे?
0: मुझे ऐसे फ्रूट ऐसा पसंद है ही नहीं एक्चुअली, मैं देखा
1: जाए
0: तो।
1: क्या बात कर रहे हो, तुम्हें फ्रूट्स पसंद नहीं है?
0: मतलब कोई काट के अगर दे तो खा लूंगा मैं, बट ऐसा खुद इनिशिएटिव लेकर तो कुछ भी, कोई भी फ्रूट चल जाएगा।
1: कोई भी फ्रूट जो तुम्हें ना, ये फ्रूट तुम किसी भी दिन खा सकते हो। मेरे माइंड में एक फ्रूट आ रहा है।
0: कौन सा? कौन सा?
1: और ये जो फ्रूट है, मुझे लगता है बहुत लोगों की लिस्ट में होगा कि इसको तुम चाहे एवरी डे खा लो।
0: बताओ।
1: किंग
0: मैंगो। बट मैंगो का प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि आप उसको ज्यादा अगर खाते हो तो हीट हो जाती है बॉडी में।
1: आई नो, वो अलग साइड इफेक्ट्स अलग है, अवेलेबिलिटी अलग बात है।
0: अवेलेबिलिटी भी नहीं होती उसकी,
1: वो भी नहीं होती है उसकी।
0: ऐसा कौन सा फ्रूट है जो
1: 365 days available. तो तुम्हें ग्रीन कीवी फ्रूट मिलेगा ही मार्केट
0: में। बड़ा महंगा भी हो जाता है ना फिर।
1: हाँ, लेकिन कीवी फ्रूट इज लाइक अवेलेबल all the time.
0: अच्छा, all the time होता है?
1: All the time. और एक red भी होता है।
0: Oh.
1: Yeah. So, तीनों के कोई ना कोई form जो है, किसी ना किसी time पे available होती है।
0: अच्छा, ये नहीं पता था मुझे।
1: It's always in the market, I will say.
0: आप बताइए, आपका favorite fruit कौन सा है जो आप कभी भी खा सकते हो, हंसते खेलते गाते रोते जो भी आप?
1: एप्पल भी हमेशा अवेलेबल होता है। और ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हमेशा अवेलेबल होता है मार्केट में रिगार्डलेस ऑफ सीजन? जैसे मैंने कीवी फ्रूट बोला, मतलब उसका वो एक सीजन होता है, बट देन उसके बाद भी अवेलेबल होते हैं वो।
0: मुझे लगता है एप्पल की खास बात क्या है मालूम है क्या? एप्पल एक ऐसा फ्रूट है ना जो जिसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, मतलब वो एक ही टाइप का, मतलब मीठा होगा तो मीठा ही होगा, मतलब
1: वो भी होता है। ग्रीन
0: एप्पल नहीं मिलता है ना,
1: कड़वा नहीं है लेकिन ग्रीन एप्पल हो सकता है थोड़ा।
0: वो ग्रीन एप्पल है ना, वो अलग है। और हाँ, एप्पल भी कभी कभार थोड़ा बहुत होता है, बट इतना नहीं,
1: इतना ज्यादा नहीं।
0: इनसे भी बात कर लेते हैं। हाय, नमस्कार।
2: हेलो, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो?
2: हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। जो सबसे बढ़िया फ्रूट है ना पूरे वर्ल्ड में, जो आपको मिल जाएगा, तीन फ्रूट है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, हर जगह कोने कोने में, आप मना भी नहीं कर सकते। और सबसे हेल्दी भी है, उसके अलावा आपको तीसरा चौथा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बनाना, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, इंपोर्ट भी हो जाता है कहीं ना कहीं से। ऑरेंज और एप्पल।
0: ऑरेंज भी, अच्छा, मैं और एप्पल। यार बनाना से मेरे को एक ही दिक्कत है, बनाना का प्रॉब्लम एक ही है, वो इतने वीडियोस देख लिए ना जहाँ पे वो ग्रीन बनाना होता है, फिर उसमें वो लोग कोई गैस डालते हैं और अगले दिन वो येलो हो जाते हैं।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ,
1: मैंने नहीं देखी ऐसी वीडियो।
0: और अभी यहाँ पे तो अलग ही साइज के बनाना मिलते भाई, इतने बड़े बड़े बनाना तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अबे नेफ्यू पूरा खा लेता है एक,
0: ये इतना बड़ा बनाना।
1: हाँ, 3 साल का।
0: क्या बात है यार।
2: बनाना की वैसे एक बताओ, बनाने की खासियत क्या होती है कि उसको जब वो पेड़ से पिक किया जाता है ना, उसमें थोड़ा अलग अलग रह जाता है, तो एक हफ्ते में अपने आप ही पक जाता है।
0: अच्छा,
2: आपको पता। और बनाना क्या, मैंने और भी सुना, बनाना के साथ अगर आप जैसे कच्चा एवोकाडो रखते हो तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से वो पक जाएगा, मतलब।
1: लेकिन अगर अदर वे राउंड करना है ना, अगर आप नहीं चाहते कि बनाना पक जाए ज्यादा जल्दी, तो वो ऊपर ना उसको उसके जो डंडी होती है उसको फॉइल पेपर के साथ रैप कर दो।
0: अच्छा, ऐसा होता है,
1: तो वो पकता नहीं है जल्दी।
0: ओह, क्या बात है। ये लोग, तुम लोग सब वो उसकी वीडियो देख रहे हो क्या, लंबे बाल वाले की वीडियो?
1: नहीं, उसकी नहीं देखी मैंने।
0: यो, ऐसा करता ना वो भाई, वो उसकी वीडियो मुझे उसकी एक वीडियो समझने के लिए मुझे 5 से 10 बार देखनी पड़ती है।
1: मुझे ऐसा लगता है कि हमसे पहले जनरेशन अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो हम रियल यूनिवर्सिटी बन चुके हैं।
0: हाँ, that's right. 100%.
2: और वेल, ये तीन फ्रूट इतने अच्छे हैं कि विटामिन सी तुम्हें मिल रहा है और ठीक है,
0: पोटेशियम मिल रहा है बनाना में।
1: या
2: और एप्पल तो फिर एप्पल ही है, वो तो कहते हैं ईट एप्पल अ डे, ईट द डॉक्टर अवे, और ये बात बिल्कुल सही है, ब्लड फ्लो बड़ा बढ़िया रखता है और सेट रखता है एकदम,
0: सही है,
2: एप्पल इज एप्पल। और एप्पल की कई वैरायटी है, न्यूजीलैंड तो बहुत ही मतलब वी आर लकी के इतने अच्छे अच्छे एप्पल हमें खाने को मिल जाते
0: हैं एक्चुअली,
1: एक्चुअली में यहां
2: वो लेना दे।
1: इवन मैंड्रिन्स मैंने देखा इज अवेलेबल ऑल द टाइम, टेस्ट का थोड़ा

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
3: Mainly fine tonight, a low of 14 degrees. The northwestern motorway out of town is still quite busy out to Tauhara, 35 minutes to get to Massey from the city. And on the northern, 40 to Constellation, with traffic queuing out to about Esmond Road. The southern is heavy to Hill Road in patches, 50 minutes to Manukau. And on the southwestern, it's busy south from Walmsley Road, 35 to the airport.
2: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, lending criteria and terms apply.
4: It's 10 a.m. And you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: Kiwi kids are active kids. Creative kids. Sporty kids. Are you a wee Bigs kid?
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. More details have emerged about a death being investigated near Blenheim. Police say the body of an infant was discovered on the side of Wairo Bar Road yesterday by a machinery operator. Officers say they're extremely concerned about the welfare of the mother and wider family, and they want to speak with them as soon as possible. A man has been charged after allegedly running two illegal poker venues in central Auckland. The Department of Internal Affairs says the sites were masquerading as legitimate businesses and are believed to have generated more than $1 million in illegal profits. The accused failed to appear in court and a warrant is out for his arrest. A month after Wellington's devastating storm, many residents are still struggling to get back on their feet. More than 100 households were displaced. Wellington City Missioner Murray Edridge says the issues can be overwhelming.
7: Our job is to walk alongside them, to provide the support they need through the Mural Relief Fund where that's appropriate, but also to ensure that someone's helping them to make good decisions.
6: A woman's been rescued after finding herself lost in Piha Bush. Police say she'd been walking for 3 hours and was surrounded by undergrowth up to her neck. The Eagle chopper dropped a tactical flight officer into a less hazardous part and they were able to tramp further in and find her. To sport the second to last regular season round in Super Rugby Pacific, the Crusaders Chiefs on Friday night is sold out. Will Jordan is back for the Crusaders, playing his first game in the new stadium. No Damian McKenzie for the Chiefs, out with concussion. And the Breakers have signed FIBA World Cup winning coach Gordon Herbert as the new head coach. He's inked a 2-year deal. Herbert is coming off a stint with the German national team.
1: Sports News,
0: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. The Drive Show with Sandy and Rusby.
8: Hamesha saath dene wale dost.
9: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
1: Let's go! 3, 2, 1!
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
10: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
11: Trend Makers में आपका स्वागत है. आज हम आपके लिए ड्राइव शो में ट्रेंड मेकर्स में एक थीम लेकर आए हैं और आज का हमारा थीम है आज.
12: और इसमें ऑल्सो हम बातें करेंगे जो आपको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ, जैसे होता है ना टुडे आई लर्नड अबाउट दिस थिंग. सो टुडे तो नहीं, लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड में आई ना रुजबे, तभी मैंने ये चीज़ लर्न की कि न्यूजीलैंड में स्नेक्स नहीं है. उससे पहले मुझे नहीं पता था.
11: अच्छा,
12: कि न्यूजीलैंड कंट्री में स्नेक्स नहीं है.
11: ओ, आपको नहीं पता था ये पहले? मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली. बाद में पता चला.
12: आई एक्चुअली लर्नड अबाउट दिस फैक्ट न्यूजीलैंड में आने के बाद. तो ऐसे फैक्ट आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं जो यहाँ पे या कहीं के, जो कोई भी फैक्ट आपको अपनी लाइफ में ना बहुत देर बाद पता चला कि यार ऐसा था, ये मुझे नहीं पता था.
11: जैसे कि मुझे आज नहीं पता था इससे पहले कि आज ही के दिन 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए थे बाय सी. There's so many such things ना कि जो अपने को पता ही नहीं, अपने को पता ही नहीं कि यार ये सब हुआ कैसे.
12: Yeah, काफी
11: सारी चीजें.
12: So आज आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं and हम भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. In fact, तुम्हें पता है कुछ facts आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, जैसे कि न्यूजीलैंड was the first country to give women the right to vote in 1893.
11: Oh wow, न्यूजीलैंड was the first country.
12: Was the first country ever.
11: Wow, that's so cool यार. आपको पता है आज के दिन, आज की बात कर रहे हैं ना हम लोग 20th में, आज के दिन 1873 में द बर्थ ऑफ ब्लू जीन्स हैड टेकन प्लेस. तो आज ब्लू जीन्स का बर्थडे है डेनिम का, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस जो है ना, ये और जेकब डेविस ने ऑफिशियली पेटेंट रिसीव किया था, यूएस पेटेंट ऑन ब्लू जीन्स, डेनिम जीन्स जो आज हम बहुत कॉमनली पहनते हैं.
12: या मेरे को लगता है कि हर किसी के पास एक डेनिम तो होता ही है.
11: या डेनिम
12: इन एवरीवन्स वार्डरोब देयर इज वन डेनिम, चाहे वो जैकेट है चाहे वो शर्ट्स होती है डेनिम की.
11: तो ब्लू जीन्स को ही डेनिम बोलते हैं क्या? ब्लैक को नहीं बोलते ना?
12: टेक्निकली डेनिम इज ब्लू जीन्स, लेकिन अभी उसके धीरे धीरे जो टर्मिनोलॉजीज है ओवर द टाइम चेंज भी हुई है, लेकिन डेनिम मुझे लगता है कि ब्लू जीन्स को ही कहते हैं.
11: राइट.
12: या
11: आपको बताया आज ही के दिन और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम उससे बारे में बात करेंगे. बट अभी के लिए हम एंजॉय करेंगे आज का, आज के ऊपर बेस्ड ये गाना, बिकॉज टुडे इज प्रेशियस.
12: या
11: सो मेक द मोस्ट ऑफ इट.
12: आज की थीम रहेगी आज, आज वाले गाने.

0: आज की रात इस नाम पे और भी काफी गाने, मतलब एक और पॉपुलर गाना बना है, लेकिन आज और क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और आज का जो थीम है वो आज है। ओह माय गॉड, मैंने कितनी बार आज बोल दिया।
1: और आज आपके साथ हम ये भी शेयर कर रहे हैं जो मैं आज पता चला, जो बहुत देर बाद पता चला, जैसे कि मुझे आज पता चला कि बनाना इज बेरी एंड स्ट्रॉबेरीज इज नॉट बेरी।
0: बनाना इज अ बेरी?
1: या स्ट्रॉबेरी इज अ बेरी, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग बनाना इज अ बेरी।
0: ओह
1: या सो बेरीज अ बिट हार्ड टू डिफाइन कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सो बनाना इज अ बेरी एंड
0: ब्लूबेरी इज व्हाट?
1: नो, नॉट अ बेरी,
0: नॉट अ बेरी, तो नाम ही बेरी दिया है।
1: सो स्ट्रॉबेरी इज इन ट्रू बेरी, नाइदर इज रास्पबेरी और द ब्लैकबेरी।
0: ओह, ये सब बेरी नहीं है?
1: नहीं, ब्लूबेरी का पता नहीं, लेकिन एगप्लांट, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बनाना, ये साइंटिफिकली बेरी के अंडर आते हैं।
0: एंड व्हाट अबाउट बेरी पिया?
1: वो वेरी है, वो
0: वो है बड़ा बेदर्दी। एनीवे, एक और चीज है, आज के दिन जो हुआ था 1983 में डिस्कवरी ऑफ एचआईवी हुआ था। आज टीम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था देयर फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द वायरस दैट कॉज्ड एड्स इन द जर्नल साइंस। तो आज उन्होंने वो पब्लिश किया था।
1: यू नो, मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड में ना 2000s में काफ़ी मूवीज बनी है रिगार्डिंग एचआईवी, लेकिन रिसेंट टाइम में मैंने नहीं देखी है कोई भी मूवी। जैसे 2000s में, 2004 में आई थी
0: सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की वो मूवी
1: फिर मिलेंगे,
0: यस,
1: ठीक है। देन 2005 में आई माय ब्रदर निखिल।
0: ओह या, वो भी वेरी नाइस मूवी, यस।
1: एंड देन 2007 में एक मूवी आई थी 68 पेजेस, इट वाज अ ड्रामा रिवॉल्विंग अराउंड एचआईवी एड्स। देन 2007 में अगेन आई ब्लड ब्रदर्स। एंड देन 2000 में एक निदान मूवी आई थी बाय महेश मांजरेकर, जिसमें संजय दत्त और निशा बैंस थे। निशा बैंस कोई नई एक्ट्रेस थी। 90s में भी एक मूवी थी नया जहर। बट मतलब उसी दौर में ये सारी एच आई वी के ऊपर मूवीज आई थी,
0: क्योंकि कोई भी नया कंसेप्ट जब आता है तो उसके ऊपर और मूवीज बनती है ना। मतलब वो टाइम पे नया कंसेप्ट, मतलब नया कंसेप्ट, नया चीज था, नया रोग आया था।
1: अभी सोशल सब्जेक्ट के ऊपर मूवीज आती है, बट एज इन की किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज के ऊपर नहीं आ रही है मूवी। सोशल एज इन की, जैसे पैडमैन आई मूवी, अक्षय कुमार की कुछ मूवीज है जो सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर बनी है, आमिर खान की कुछ मूवीज है जो कि स्टिग्मास के ऊपर बनी है, या फिर इन सब चीजों के ऊपर।
0: या ऐसी कौन सी चीज रहेगी जिसके ऊपर आप अभी मूवी देखना चाहोगे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आप मूवी देखना चाहोगे, बताइए हमें 5599 पे। नॉट दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट, बट
1: या बात करने में तो क्या ही जाता,
0: पता चलेगा ना कि क्या।
1: यू नो, अक्सर मैं और उसबे यहाँ पे बात करते हैं, 2000s की ना कुछ ऐसी मूवीज है जो कि क्लास मूवीज है, लेकिन वो बॉलीवुड में, मतलब बॉक्स ऑफिस में कभी चली नहीं, लेकिन आज उनको जब हम देखते हैं उनकी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं,
0: बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम मूवी थी ये, शायद ऐसा देख के लगता है।
1: और आज के टाइम पे वैसी मूवीज नहीं बन रही है, मे बी मुझे लगता है ना वो मूवीज आज के टाइम पे बनती ना बड़ी अच्छी जाती, क्योंकि अभी हमें वो समझ में आ रही है।

0: Trend Makers. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैं
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM.
5: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
6: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
5: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
6: Mashallah, bahut acha, very nice.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
13: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
14: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
15: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
16: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Trend Makers. Mein aaj theme hai aaj.
2: आज के बारे में एक्चुअली में हम बातें कर रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ था, एंड ऑल्सो आज आपको किस चीज़ के बारे में पता चला जब बहुत देर बाद आपको पता चला। फैक्ट्स भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इस आवर में आज। सो न्यूजीलैंड का एक माउंटेन है, तुम्हें पता है माउंट तारानाकी, गए होंगे तुम वहाँ पे।
3: हाँ हाँ।
2: इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल पर्सन
3: माउंट तारानाकी।
2: या
3: is recognized as a legal person.
2: As a legal person.
3: Oh wow.
2: Yeah. So उसको out of respect उस mountain को recognize किया गया है as a legal person.
3: मेरे को actually I was today when I got to know about वो आपने मेरे को एक reel भेजी। Wellington में एक tunnel है।
2: Yeah.
3: जहाँ पे
2: Mount Victoria tunnel
3: जहाँ पे हमेशा hoot करते हैं, मतलब horn बजाते हैं।
2: Yeah.
3: जब भी आप tunnel में जाते हो, तो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों होता है। और मैं सोच रहा था कि यार क्या कूल है ना, वेलिंगटन में ऐसा एक कुछ है, ऑकलैंड के भी ये टनल में ऐसा होना चाहिए।
2: बट लेकिन उसकी कहानी है।
3: आज मुझे उसकी कहानी पता चली है कि अपेरेंटली वहां पे एक टनल जब बन रहा था तो एक डेड बॉडी मिली थी एक लड़की की, और फिर काफी लोगों को वहां पे कुछ स्पूकी एक्सपीरियंसेस हुए थे उनके टनल में। रेडियो फ्रीक्वेंसी चला जाता था या विस्पर्स आते सुनाई देते थे। तो इट वॉज बेसिकली टूटिंग टू रिकग्नाइज हर।
2: या कई कईयों को अपने मिरर में दिखाई देती थी
3: वो मिरर में भी ए भाई साहब ऐसा मत बोलो यार ये सब
2: साइड मिरर में या किसी में
3: प्लीज याद रखना अगर आप गाड़ी चला रहे तो हर 10 सेकंड में आपको आपका मिरर देखना जरूरी है बट आप कैसे देखेंगे ना सैंडी
2: अनवांटेड चीजें दिखाई दे सकती है बट इग्नोर
3: मत करो ऐसा यार इसलिए हमारे लिसनर कम हो रहे हैं यार
2: या वो पता चलेगा खैर एनीवे सो ये हुआ था वहां पे इसलिए हर कोई उसको रिस्पेक्ट करने के लिए
3: लेकिन आज के ऊपर गाने बज रहे तो इट्स योर बॉय बादशाह वन ऑफ द वेरी हैपनिंग ट्रैक्स

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits, trendmakers. This show is going to be for you. And today's theme is also today. And today you have a chance to participate. I mean, today you also have a chance to participate for Rahat Fateh Ali Khan competition. Which you will get on our Facebook page.
1: Yes, Facebook page you will get this competition.
0: मिल सकता है फीचर्ड फोल्डर में जहाँ पे आप जाएंगे और एक पोस्टर देखेंगे उस पोस्टर में आप कुछ इमोजीज देखेंगे आपको बस गाना गेस करना है कि ये गाना कौन सा है और 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में होने वाला है राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट उसके डबल पासेस अगर आपको जीतने हैं यू कैन गेट योर नेम इन देयर तो आपको बस सही गाना वहाँ पे गेस करना है एंड फिर आपके किस्मत को आजमाना है
1: तो अभी एक और मौका है आपके पास एक और इवेंट के लिए पास जीतने के लिए आपको करना क्या है ड्राइव स्पेस इस समय पर किस सबर्ब से आप सुन रहे हैं आपको लिख के भेजना है ऑन 5599 सो वाइब मिक्स का जो इवेंट है ग्रैंड मस्ती नाइट 23 मई को होने वाला है नेटबॉल अब मैनोरेवा में जहाँ पे डुअल वॉइस सिंगर मणि डिसूजा पहुँचने वाले हैं कुछ मसाला मिक्स स्किट्स भी रहने वाली है स्टेज पे कॉमेडी डांस ऐसे हमारे केतन कुमावत लाइव परफॉर्म करने वाले हैं हमारे सिंगर केतन कुमावत वहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं सो अगर आप
0: रहने वाले ना वहाँ पे
1: क्रिश भी रहने वाला है सो अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं तो आपको करना क्या है ड्राइव स्पेस के सबर्ब से आप हमें सुन रहे हैं 5599 पर

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: You're listening to Hampling Bollywood's biggest hits. वैसे यहाँ पे मौका है तो मिल रही है आपको जीतने के और रोवा के जरिए आप चडल खेल सकते हैं और चडल खेल के $100 एवरी डे आप जीत सकते हैं एंड प्लस सिर्फ पैसे जीतने की बात नहीं है बट यू विल नो मोर अबाउट द कीवी स्लैंग्स अगर आप ये गेम खेलते हैं
4: तो ये सब आपको पता चलता है जब आप रोवा ऐप के जरिए हमें सुनते हैं सुनते रहेगा बिकॉज आने वाले दिनों में और भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन है जो आप यहाँ पे जीत पाएंगे
3: सैंडी आपको मैं सुन रहा हूँ तो मुझे और खासी फील हो रही है
4: फील हो रहा है ना आई थिंक मैंने पहले भी बात करी थी आई थिंक आई नीड अ वीक लॉन्ग हॉलीडे या टू रिकवर माय वॉइस
3: तो मेरे पास बेस्ट आइडिया है ना जो भी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तभी हम सब साथ में प्लान कर लेते हैं
4: साथ में प्लान कर लेते हैं
3: सब लोग छुट्टी पे चले जाते साथ में लॉन्ग वीकेंड का पूरा लॉन्ग वीक ही कर देते हैं
4: वीक ही
3: मेरे पास भी बहुत सारे लीव्स पड़े हैं काफी लोगों के पास लीव्स होंगे चलो सब छुट्टी ले लेते हैं
4: सब गाइस छुट्टी पे चलते हैं कौन है जो स्पॉन्सर करेगा टिकट
3: अरे है ना कोई स्पॉन्सर तो मिल ही जाएगा एक कोई हॉलीडे वाला या कोई समवन विल बी देयर
4: यार इन समवन हॉलीडे देखो अब आवाज को रिकवर करना है जाना पड़ेगा कहीं पे ऐसा रिलैक्स करना पड़ेगा
3: या और अगर आप साथ में आना चाहते हैं हमारे तो आप भी आ जाइए
4: या
3: एंड वी विल हैव फन रिलैक्सेशन वन वीक
4: या फुल
3: तो चलो
4: इसी रोड पे फिलहाल आपको यहाँ पे टाटा बाबे कहते हैं
3: हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग आज जो हमारा थीम था वो आज वाला थीम था एंड होपफुली आपने ये एंजॉय किया कोशिश करेंगे कि इसको हम ऑन डिमांड आपके लिए अवेलेबल करें बट उसके लिए काफी मेहनत चल रही है बैक एंड में तो हम तो मेहनत करते रहेंगे आप चिल करते रहिए और मिलिए हमें कल 4 से 7 के बीच

Midweek Masala. You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Imran Hashmi ne kaha ki inka nearest MP incident Jannat के बाद हुआ. इन्होंने रिवील किया कि once faced a near stampede at a fan moment. इंसिडेंट हुआ आफ्टर द सक्सेस ऑफ हिज फिल्म जन्नत. और इन्होंने कहा कि फैंस अनकंट्रोलेबली इनके तरफ रश करते हुए आए, फोर्सिंग हिम टू हाइड इन ए बाथरूम. और सिक्योरिटी ने स्ट्रगल करते हुए इस सिचुएशन को मैनेज किया. बहुत ही ओवरवेलमिंग और बड़ा क्राउड था. और इन्होंने कहा कि ही रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ सडन फेम कैन बिकम डेंजरस. और जन्नत के बाद ऐसा हुआ जब एक फैन ने इनके तरफ बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए आया और इनको अपने आप को छुपाना पड़ा इन अ बाथरूम. मैं कृषि आपके साथ दे रहा हूँ. ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके साथ शेयर करूँगा नाइट कैफे मिडवीक मसाला में.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Bollywood के hits के साथ आपके लिए Bollywood खबरें भी लेकर आते हैं. Night Cafe Midweek Masala में ईशान खट्टर को honor किया गया by Indian Armed Corps और इस actor को ये honorary membership मिला from the Indian Armed Corps. इनका recognition हुआ है for his contribution and public image और he called it a lifetime achievement moment for him. और इवेंट ने हाईलाइट किया है बॉलीवुड्स कनेक्शन विद डिफेंस इंस्टीट्यूशंस और फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सोशल मीडिया ने कंग्रेचुलेट किया है ईशान को फॉर दिस वंडरफुल अकम्पलिशमेंट. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें आपके लिए हम कराएंगे, लेकिन गाने तो चलते रहने आपके लिए और बैक टू बैक सॉन्ग आपको सुनाते हैं.

0: You're listening to Night Cafe Midweek Masala. 9 p.m. तक ये चलता रहेगा और 12 तक Night Cafe में मैं क्रिश आपका साथ देता रहूँगा. विकी कौशल ने एक बहुत ही प्यारा heartfelt birthday note लिखा है, expressing gratitude for a peaceful and loving birthday. इन्होंने describe किया है as a filled with सुकून और प्यार. Friends और families ने इनको warm wishes दिए हैं. Katrina Kaif ने also share किया है a glimpse of their celebrations. और इस post से ये बात सामने आता है how grounded और कितना emotional personality Vicky Kaushal है. और he's getting so much love on social media for this. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए. Night Cafe Midweek Masala आपके लिए जारी है.
1: Night Cafe on Hum.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: el vibe, dear.
1: Streaming on Rover.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
9: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी टीज एंड सीज अप्लाई
10: Beating pump prices is easier than ever for seniors, students, kids, community service card holders and others. Auckland Transport has 7 different discounts to make getting around more affordable. See if you can save on travel by searching AT Fare Discounts.
11: Jen didn't think she needed a DVS system.
12: Oh, I've got insulation in that.
11: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
12: Ah, yeah.
11: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: On Hum Midweek Masala Aapka Moment Krish Ka Magic Only on Hum
14: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits Aapke liye jaari hai Night Cafe Midweek Masala aur main Krish aapke saath de raha hu Ranbir Kapoor apne fan theories ko react karte hue kaha ki inhone respond kiya pehle to apne fan made theories about his roles aur inhone kaha hai ki audiences ko hamesha inka jo interpretation hota hai kafi surprising hota hai and they interpret films in most surprising ways inhone appreciate kiya hai jo creative discussions hote hain around his characters aur inhone kaha ki स्क्रिप्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये थियोरीज जो उनके फैंस बनाते हैं ये उनको लगता है तो काफ़ी रामायण के बारे में बातें हो रही है जिसमें रणबीर कपूर काम करेंगे और इश्क लव एंड वो आई बिलीव उसमें भी ये नज़र आने वाले संजय भंसाली की फिल्म जिसमें आलिया भट्ट के साथ ये नज़र आएंगे तो काफ़ी थियोरीज इनके रोल के बारे में लोग बना रहे हैं और इनको लगता है कि दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन अ स्क्रिप्ट मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ऋतिक रोशन फिटनेस रूटीन गोज वायरल अगेन इस पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी आप सुन रहे हैं मिडवीक मसाला विद क्रिश

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai aur midweek masala jaari hai. Kuch hi der tak aur ye chalega. 9 p.m. tak ye chalta rahega. Hrithik Roshan ka workout clips resurface hua hai online aur ye viral ho gaya hai. Fans ne praise kiya inka consistent fitness discipline aur isko often one of the Bollywood's fittest actors bola jata hai. Inka trailing style mixes strength, flexibility aur endurance work to isse काफ़ी जिम गोअर्स प्रभावित भी होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने सुनाते हैं आपको नाइट कैफे मिडवीक मसाला में. आज के लिए बस इतना ही. अगले घंटे पर मुलाकात होती है टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट फॉलोड बाय 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर यू.

0: with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup. The second OFC Pro League semi-final, and for the fourth time in this competition, Auckland FC has beaten South Island United this evening, winning 1-0. Auckland FC will play South Melbourne in Sunday afternoon's grand final.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe on Hum.
2: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
3: बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स यही आपके लिए हम प्ले करते हैं ऑन नंबर वन हम और हिट और हॉट गाने बेस्ट बेहतरीन बेजोड़ गाने आपके लिए होता है. वेलकम बैक एवरीवन. नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूं. न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में अभी टाइम हो चुका है कि 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए पेश करें. इस घंटे पर मैं इंटरेस्टिंग जानकारी और भी शेयर करना चाहूँगा अबाउट ट्यूडल कॉम्पिटिशन बैक योर बैक यार्ड बीट्स एनजेड म्यूजिक मंथ जबकि जारी है और राहत फतेह अली खान के लिए किस तरह से आप डबल पासेस जीत पाएंगे साथ ही में जो ग्रैंड मस्ती नाइट होने जा रहा है ये सभी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से 12 के बीच मैं आपके साथ शेयर करूँगा. इस घंटे पर इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमें सुनते रहे. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक. एंजॉय एवरीवन.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन, नाइट कैफे में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। चेडल कंपटीशन के बारे में बातें हो रही है, क्या आप एक कीवी वर्ड विजर्ड है तो आपको ये कंपटीशन में ज़रूर भाग लेना होगा और कैश जीतना होगा। अपना नॉलेज और अपना जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप पैसे जीत पाएंगे। ईच डे आपको एक कीवी वर्ड सही या फ्रेज दिया जाएगा, क्रैक करना है आपको, ड्रो में शामिल होना है। क्विकर और शार्पर आप होते हैं उतना ही बेटर चांस आपका बनता है टू स्कोर और बेटर चांसेस ऑफ विनिंग भी होता है। $100 अ डे जीतने का मौका, विच इज़ एन अमेजिंग प्राइज। $100 अ डे आप जीत सकते हैं। एवरी डे यू प्ले आप ड्रो में शामिल होकर $100 जीत सकते हैं। वन गेम इक्वल्स वन एंट्री। फास्ट आंसर और हिंट्स को अवॉइड करते अगर आप आंसर देते हैं तो बोनस एंट्री आपको मिल सकता है। $7,000 आर टू बी वन। द मोर डेज यू प्ले द बेटर योर ऑड्स आर। तो आज ही रोवा ऐप डाउनलोड करें अगर नहीं है और इस कॉम्पिटिशन में आप भाग ले। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। सुनते रहो नाइट कैफे टिल मिडनाइट।

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: 80s के रेट्रो गाने.

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: Fellowship Hire Turners.
1: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
2: Carpet Court's massive three-day sale ends today. Save thousands on Rhino carpet from just $49 a square metre. Rhino Evercore and Cortec Naturals are now just $79 a square metre. Bring your floor measurements and save, but only today, so be quick, only at Carpet Court.
3: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
8: Bollywood ka asli blockbuster.
9: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
8: Night Cafe on Hum.
10: You're listening to Night Cafe. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. इंटरेस्टिंग खबरें भी लेकर आऊँगा आपके लिए. कुछ बॉलीवुड न्यूज़ अगर समय रहा तो ज़रूर आपके लिए साथ हम शेयर करेंगे. मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ फाइंडिंग टाइम टू कन्वे टू यू, जो बहुत ही जल्दी होपफुली हमारे पास टाइम होगा. वाइब मिक्स इवेंट्स द्वारा ग्रैंड मस्ती नाइट होने जा रहा है 23 मई को. नेटबॉल मनुरेवा में ये होगा. Featuring renowned radio jockeys from Fiji, Satyanand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman, और dancing legend Charfar यहाँ पर perform करेंगे. 17 years बाद ये New Zealand आ रहे हैं. Skits, comedy, dance रहेगा, musty madness होगा. Dual voice singer Mani D'Souza को आप सुन पाएंगे, amazing Monto Monica को देख पाएंगे dance करते हुए. युवा dance group होंगे, top DJs होगा और lots of giveaways भी जीतने का मौका होगा. केतन भी यहाँ पर perform करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत गाना. तो कुछ गाने इनके रहेंगे, तो आप ज़रूर इनका साथ देने के लिए पर आए. हंटर्स फूड टाउन पापटोए, जेस फ्रेश मार्ट पापटोए, गेट फ्रेश सुपरमार्केट मैंगरी, केस हेयर एंड ब्यूटी सलोन मनुरेवा, विकेट चिकन बॉटनी, जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलोन कैवेंडिश ड्राइव से आप टिकट्स ले सकते हैं. लिमिटेड टिकट्स रह गए तो आप जल्दी से जाकर ये

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा और कुछ interesting science related information भी लेकर आते हैं जो बहुत ही हमें enlighten कर देता है कि क्या कुछ हो रहा है. Science Daily में publish किया गया है research roundup के जरिए 28th February of this year, जहां पर scientists ने map किया है about 7 million cells across 21 human organs. और इस study से ये बात सामने आया है कि किस तरह से aging differ होता है between organs at the cellular level. इससे ये भी सामने रिवील होता है कि सम टिश्यूज एज मच फास्टर देन अदर्स. और इस स्टडी से अब आगे चलकर कुछ ऐसे डिजीजेस को टारगेट किया जा सकता है which are linked to specific organ aging, or it is one of the largest whole body aging data sets ever created. So aap jaakar agar padhna chahe to Science Daily bahut hi wonderful website hai jisme sare science related information publish hota hai alag alag tarah ke, chahe wo health ke liye ho, chahe wo psychology ya cognitive ability ya mind ke liye ho. To aapko kafi enlightenment yahan se mil sakti hai aur kya kuch ho raha hai hamare scientists dwara duniya bhar mein, hamare medical professionals dwara. And you name it, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पब्लिश होता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: हम टाइम चेक, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Police have concerns for the welfare of the mother and wider family after the body of a baby was found at a public reserve near Blenheim. Officers were called to Wairau Bar Road yesterday afternoon. State Highway 5 near Rotorua has been closed following a crash this evening between a bus and a motorbike. Police said the two-vehicle crash was just north of the State Highway 30A intersection. One person was seriously injured. A month after Wellington's devastating storm, many residents are still struggling to get back on their feet. More than 100 households were displaced. Wellington City Missioner Murray Edridge says the issues can be overwhelming. In sport, rugby with Shift 4, the Crusaders Chiefs Super Rugby Pacific game on Friday night. It sold out. Will Jordan back for the Crusaders? No Damian McKenzie for the Chiefs, out with concussion. Josh Lord back from his concussion stand down. Stand by for more fussing over cowbells in the new stadium. And the Breakers have announced FIBA World Cup winning coach Gordon Herbert as their new head coach. Herbert has signed a 2-year deal.
4: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on
7: Hum. Night Cafe आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ इस घंटे पर भी. न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में चलो शुरू करते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप म्यूजिक 30 मिनट्स के लिए, which I'm sure you're going to enjoy, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स मैं आपके लिए शामिल करूँगा. सलमान अली मुस्कान के गाने हैं इसमें, साथ ही में यहाँ पर दिव्या कुमार, एस पी बाला सुब्रमण्यम, सुनिधि चौहान और शेखर जुबिन नौटियाल और साथ में नीरज श्रीधर जैसे सिंगर्स के गाने

मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक के अंदर। आपको बता दूं कि बैक योर बैकयार्ड बीट्स हमारा जो एनजेड म्यूजिक मंथ है लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, इस पर जानकारी, राहत फतेह अली खान के लिए 2 टिकट्स जीतने के लिए मौका है, इस पर भी जानकारी इसी घंटे पर। बट फर्स्ट एंजॉय 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक एवरीवन।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और नाइट कैफे आपके लिए जारी है. NZ म्यूजिक मंथ जारी है और हमारे लोकल टैलेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके काम को सेलिब्रेट करने के लिए, सराहने के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. और अभी जो इस महीने का थीम है, इट इज़ बैक योर बैकयार्ड बीट्स. तो आप जो भी गाना लोकल आर्टिस्ट से गाया हुआ है वो सुन पाएंगे हम पर 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM और 10 PM वीकडेज. जैसे ही आप गाना सुनते हैं, आप वोट प्लीज करें उनके लिए, ताकि आपके वोटिंग के आधार पर वो टॉप 3 में पहुंच सके, ताकि उनका गाना रोवर पर फीचर हो सके. साथ ही में उनको एक हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका भी रहेगा. कीवर्ड MM के साथ उनको, उनका नाम लिखे और 5599 पर आप भेजें. एवरी इंटरेक्शन हेल्प करेगा आपके फेवरेट आर्टिस्ट को. और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाए, आर्टिस्ट के वीडियो दिखाई देंगे, लाइक कमेंट और शेयर करें टू शो योर सपोर्ट. और विनर विल बी डिसाइडेड बाय टोटल एंगेजमेंट, यानी आपके रेडियो वोट्स और सोशल मीडिया लव के द्वारा. आर्टिस्ट डिटेल्स की बात करें तो विजय वर्मा, जसराज बसरा, संजय प्रभाकर, सेंसी प्रभाकर, और साथ में रंजा रंजन, शहोता विजन, और साथ ही में संदीप लुबाना जैसे कलाकारों को आप सुन पा रहे हैं और इनके गानों को आप पसंद कर रहे हैं. शो दे मोर लव, ताकि आप भी उनको अपना वोट्स के जरिए जिता पाए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ मिडनाइट तक रहेगा नाइट कैफे में.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
5: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
6: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
7: Do they have parking?
6: There is some.
8: Are there biscuits?
6: Of course.
9: Can I do it during work hours?
6: Don't know. Talk to your manager. Probably.
10: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: Night Cafe.
13: You are listening to Bollywood's biggest hits only on Hum because we play all hit and hot songs for you. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Night Cafe जारी है, midnight तक चलता रहेगा. Oakland, the wait is over क्योंकि unforgettable evening legendary Rahat Fateh Ali Khan के साथ होने जा रहा है. ये night will be filled with timeless hits, powerful vocals, soul stirring कवाली यहाँ पर आपके लिए पेश किया जाएगा. Live at the Trust Arena ये होने जा रहा है 25th जुलाई को. ग्रेटेस्ट वॉइसेस को लाइव विटनेस करने का मौका, एक रेयर म्यूजिकल एक्सपीरियंस रहेगा. ब्रॉट टू यू बाय जयका स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस. ड्राई टिकट्स drytickets.com से आप टिकट्स ले सकते हैं. नाउ सोशल मीडिया के लिए डबल पास जीतने के लिए हमने कुछ इमोजीज पोस्ट किए हैं ऑन आवर फेसबुक पेज. गेस कि ये राहत फतेह अली खान का कौन सा गाना है, और दो डबल पासेस जीतने का मौका है. अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में आप रखें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और हमारा साथ मिडनाइट तक रहेगा.

You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. आज 20th मई है. अगर आपका जन्मदिन है, a very happy birthday. Team हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. अगर कोई special day आज है तो आपको बहुत सारी बधाइयां हम देना चाहते हैं. साथ ही में हमारे जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं, अगर आपका भी स्पेशल डे है, बहुत सारी मुबारकबादियां. और जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, अगला गाना आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं. नाइट कैफे जारी है और मिडनाइट तक ये चलता रहेगा. और अगले घंटे पर बहुत कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे आपको बताने के लिए. बस आप हमारा साथ देते रहे. डोंट फॉरगेट, टॉप ऑफ द आवर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स रहेंगे और फिर फॉलोड बाय दैट 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूज़िक आपके लिए.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे आपके लिए जा रही है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक फाइनल आवा है. 11 टू 12 में भी आपको हमारा साथ देना है. मिडनाइट तक आपको हमारा साथ देते रहना है. वैसे 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक में इस बार अरमान मलिक को आप सुन पाएंगे बहुत ही लवली ट्रैक के साथ. फिर उदित नारायण, अलका याग्निक, नितिन मुकेश, कमरन अहमद, जुदाई जो है ये गाना बहुत ही प्यारा है. श्रेय घोषाल को सुन पाएंगे साथ में. केशरी लाल और मुस्तफ़ा जैद, ज़रूरत, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो आप सुन पाएंगे. तो या ये सारे गाने आप एंजॉय करें. मिलते हैं इन गानों के बाद और भी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. नाइट कैफे सुनते रहो. जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं बहुत ही जल्दी आपको भी याद करेंगे.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: All right, night shift workers, आपको स्पेशली मैं याद करना चाहता हूँ, बिग शाउट आउट टू यू ऑल, क्योंकि जैसे ही रात और भी गहरी होती जाती है, लोग सोने लगते हैं और आप हमारा साथ देते हैं, क्योंकि आपका काम रात का होता है और आप जाग रहे होते हैं ऑफिस में, शायद होंगे कुछ लोग कर रहे होंगे काम, अगर या फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स जितने भी हैं रास्तों पर, अगर आप हैं, हम जब पूरी ओकलैंड या न्यूजीलैंड से होती है तो आप काम करते हैं और हमारा साथ देते हैं, थैंक यू. अगला गाना आपके लिए, आप एंजॉय करें ये ट्रैक. कुछ ही देर में कुछ और बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ. जैसे दीपिका पादुकोण को एक इंटरनेशनल फैशन इवेंट में देखा गया है, साथ ही में आलिया भट्ट ओपन्स अबाउट मदरहुड एंड वर्क बैलेंस, अगर समय रहा तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे.

0: Night Cafe on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
4: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है।
1: 6 to 10 a.m.
5: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल।

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. दीपिका पादुकोण ने एक ग्लोबल फैशन शो में अपीयरेंस दिया और शी वॉज प्रेस्ड फॉर हर एलिगेंट रेड कार्पेट लुक. फोटोज फ्रॉम द इवेंट वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर और फैंस ने कहा है कि वन ऑफ द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल स्टाइल आइकॉन्स में से ये एक नाम मानी जाती है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे.
2: छोड़ के तख्त हजारा
3: so what?
2: और हीरता फिर दी शॉपिंग कर दी.
3: Big deal, dude.
2: हीरता फिर दी शॉपिंग कर दी. दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा.
4: मैनू नी चाहिदा कोई राजा,
5: चल झूठी
4: ना राजे दी यारी. वीरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा,
5: हाय चुकला रब्बा मैनू.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा आपका साथ। कल मिलते हैं, रिदम एंड रोमांस लेकर आऊंगा मैं फ्रॉम 8 to midnight, प्यारे गाने तो रहेंगे हमारे साथ, आपको बस हमारा साथ देना है। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, गुड नाइट एवरीवन।

Indeed. Banjo!

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
1: A love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
2: Pyar mein thoda pagal to hona hi padta hai.
3: Hamari love story to legendary ban gayi.
1: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, releasing in cinemas on 22nd May.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
1: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast. The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Night Fly.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja, brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins.

अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए यीशु के नाम में।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 12.3 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 19, ओवरनाइट कम से कम 11 degrees रहेगा. जनरली मौसम आज ठीक ठाक रहेगा, जस्ट अ फ्यू पासिंग क्लाउड. सनराइज 7:16 पर, सनसेट आज का 5:19 PM पर होने को है.
0: Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: साढ़े 2 मिनट हो रहे हैं 6:00. नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज थर्सडे है, 21st of May. आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. कल एक वादा किया था, उसे निभाने के लिए वापस आ गए हैं. आज एक बार फिर आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को भी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आज की सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से.
2: तो उम्मीद है वेंसडे का दिन आपका अच्छा रहा होगा और बहुत सारी सफलताएं आपने अपनी जिंदगी में हासिल की होंगी. और अब एक नए दिन, एक नए सुबह की शुरुआत की बारी है.
4: बिल्कुल, और जब भी नई शुरुआत करने का मौका मिलता है तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए. उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कई बार कई लोगों को ये नई शुरुआत करने का मौका भी नहीं मिलता. And we are the lucky ones getting that opportunity. So grab the opportunity and make the most of it.
2: तो आज के दिन आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं खबरों में, और साथ में क्या कुछ हो रहा है हमारे पास, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हम आ गए हैं. आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे, आपको एंटरटेन्ड रखेंगे लाजवाब गानों के साथ और दिलचस्प बातों के साथ. दोनों ओर से कुछ हम और आप मिलकर ये सफ़र तय कर रहे हैं. तो हमारी और आपकी सबकी बातें जो है ये होती रहेंगी इस प्रोग्राम में, और साथ में इनाम जीतने के कई मौके भी आज एक बार फिर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देंगे थोड़ी ही देर में. आज सनी साइड अप में एक और कहानी, और उसके बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे.

0: Inside Up.
1: ये और कहानी का अब समय हो चुका है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आज जो कहानी है आपके लिए हम लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स अबाउट अ सिंगल फादर और ये पिता जो है अभी हाल ही में उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर डाला था अबाउट ट्राइंग टू गेट हिज टीनेज डॉटर रेडी फॉर हर हाई स्कूल प्रोम. क्योंकि रिसेंट पास्ट में बहुत सारी नौकरियां गई उनकी फैक्ट्री में और इनफैक्ट वो पैसे बचा रहे थे अपनी बेटी के हाई स्कूल प्रोम के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए और लेआउट और साथ में नो आवर्स में कमी आमदनी उतनी अच्छी ना होने के कारण सडनली ये ड्रेस जो है उनके रीच से बाहर हो गया, उनके बजट से बाहर चला गया
2: और महंगा हो गया.
1: नहीं, ड्रेस का दाम उतना
2: ही था उनके लिए महंगा हो गया.
1: हाँ, he could not save that much. तो अब ऐसी सिचुएशन में he was just feeling like absolute failure.
2: Helpless.
1: अपने किचन टेबल पर बैठे थे सिर को पकड़े हुए wondering कि कैसे वो अपनी बेटी को बताएंगे कि वो ड्रेस उनके लिए नहीं खरीद सकते. His daughter walked into the room holding her late mother's old faded bridesmaid's dress from the 1990s. She didn't cry or complain. She spent the entire weekend watching tutorials. और उस ड्रेस को उन्होंने अपने हाथों से अल्टर किया. क्या बोलते हैं उसको चेंजेस के ड्रेस में बेसिकली.
2: हाँ,
1: एक बेसिक सुई और धागा लेकर when she put it on उसने अपने डैड से कहा I don't need a $1,000 dress to look beautiful, Dad. I'm wearing mom's love and that makes me the luckiest girl in the room.
2: That is so beautiful. ये समझने में ही कई लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है ना. अगर हम I'm not just talking about kids. कभी कभी कई सिचुएशन में बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं. उनको जो चाहिए तो चाहिए, वो नहीं सोचते हैं कि सिचुएशन क्या है. और कभी कभी कुछ सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, स्पेशली वेन इट कम्स टू योर नीड्स. नॉट योर वांट्स बट योर नीड्स. Needs but your wants. Like wants जो होते हैं उससे आप compromise कर सकते हो. But in certain situations कई लोग समझ नहीं पाते हैं. But here we hear this story of a beautiful young girl जो अपने prom में जा रही है और उनके लिए तो है ये special. But बावजूद अपने dad के पास खड़े होकर जिद करने की कि नहीं मुझे यही वाला dress चाहिए, इतने का ही dress चाहिए, ऐसे ही dress चाहिए, she came up with this very beautiful idea और उस पर थोड़ा काम करते हुए खुद के लिए उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत बना लिया.
1: अपने डेट के लिए भी उन्होंने सिचुएशन जो है काफ़ी इजी कर दिया. क्योंकि एक पिता के लिए बहुत या पेरेंट के लिए कोई भी हो, डेट हो, मॉम हो, कोई भी हो, उनके लिए ऐसा सिचुएशन जो जिसके लिए वो अपने बच्चों के साथ मिलकर लुक फोर्ड कर रहे थे. मे बी शायद कुछ बातें उनके बीच हुई थी कि दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू वेयर. और जब वो नहीं हो पा रहा था तो कैसे बताएं बच्चों को. एज अ पेरेंट कभी कभार ये भी फीलिंग आती है कि आई माइट हैव फेल्ड. Yeah, I have failed my kids. और वो एक बहुत ही devastating thought होता है या फिर एक बहुत ही devastating feeling होती है for a parent to go through. But amazingly इस बच्ची ने अपनी situation को handle किया अपने लिए और अपने पिता के लिए भी.
2: Absolutely. So आज की ये बहुत ही खूबसूरत सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आ रहे थे हमारे आज के सफर में ब्रेकफास्ट कैचअप में. थोड़ी देर बाद चलिए ग्लोबल हेडलाइंस में विल चेक आउट क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में. What are the things that are making it to the news headlines?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो आ गए.
4: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
5: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
6: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
4: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Global headlines.
1: आज सुबह ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले भारत से आ रही खबर में कहा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में कल भयानक हीट वेव का प्रकोप रहा, जहां यूपी का बांदा डिस्ट्रिक्ट 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ पूरे देश में सबसे गर्म जगह थी। दिल्ली में भी गर्मी का बुरा हाल था, और जहां रिज एरिया में 45.8 डिग्रीज के साथ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सफदरजंग में मैक्सिमम टेम्परेचर 44.5 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है कि सूखे मौसम के चलते अगले हफ्ते कई इलाकों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। क्यूबन प्रेसिडेंट मिगुएल डियास कैनेल ने वार्निंग दी है कि क्यूबा पर किसी भी यूएस मिलिट्री अटैक का अंजाम खून खराबा होगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि क्यूबा से किसी देश को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें यूएस की तरफ से मल्टी डायमेंशनल अग्रेशन का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेंडी नंबुका ने कहा है कि वो देश में पावर रेशनिंग से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन इसे लागू करना पड़ेगा। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी फिजी लिमिटेड ने वार्न किया है कि ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस और हेवी ऑपरेशनल लॉसेस के चलते अगर अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो अगले महीने से नेशन वाइड पावर रेशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। आईपीएल का एक मैच जो है ये आज सुबह खेला गया या खेला जा रहा है, और मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पहले बैटिंग की और अपने इनिंग्स में 8 खिलाड़ी खोकर 147 रन्स बनाए। अभी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बैटिंग कर रही है, 14.2 ओवर्स में 3 खिलाड़ी खोकर वो 117 रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। इस मैच को जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 34 बॉल्स में 31 रन्स की जरूरत है। इस मैच पर और भी अपडेट्स बारी बारी से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
4: Hollywood's most wanted.
9: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
10: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: अगर आप पिक्चर नहीं भी देख रहे हो तो ये जब डायलॉग खत्म होता है तो यू नो धर्मेंद्र जी का जो सिग्नेचर मूव है ये आंखों के सामने आ जाता है ना।
2: As soon as you hear his voice, तो ऑटोमेटिक कैसा उनके जैसा डांस करने का दिल करता है।
1: अच्छा ओके, बॉलीवुड के बारे में अब बातें चल ही चुकी हैं तो देयर आर कई सीक्वल्स जो आने वाले हैं जिसको लेकर हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं। एक के बारे में कल आपने बातें की थी, इनफैक्ट इन सभी फिल्मों के बारे में कहीं ना कहीं हमने बातें की थी, लेकिन आज कलेक्टिवली आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फिल्मों की सीक्वल्स जो हैं ये फ्यूचर में आने वाली हैं। फर्स्ट अप वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज, आई डोंट नो इसका टाइटल क्या होगा, थ्री इडियट्स आई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब थ्री इडियट्स को बढ़ाकर फोर इडियट्स किया जाएगा, लेकिन इसका सीक्वल जो है इस पर काम चल रहा है।
2: Okay, quite excited I will be for this one, क्योंकि I loved Three Idiots, और अगर sequel आ रही है तो देखने का मजा तो आएगा।
1: दूसरी फिल्म जिसके बारे में I think कल या परसों आपने बातें की थी, तुम्बा 2।
2: हाँ
1: 2018 में जो मास्टरपीस आई थी उसका सीक्वल, इसको भी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड ऑफिशियली अनाउंस की गई है जो तीसरी फिल्म है इन द लिस्ट इज दृश्यम 3।
2: दृश्यम 3, अच्छा हाँ, ये भी तो आने वाली है ना।
1: और ये फिल्म जो है इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है, बट लेट्स सी, इसका भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। एंड अनदर वन इज वेलकम टू द जंगल।
2: ओके, येप,
1: वेलकम टू द जंगल। एंड जो मेकर्स है दे हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड डून जून 26th। जून 26th ऑफिशियल रिलीज के लिए। एंड द नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट जो पांचवी फिल्म है जिसका सीक्वल आ रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा है, इज गोलमाल 5।
2: ओके, तो काफी अच्छी लिस्ट है ये, काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑफ मूवीज जो है, इनके सीक्वल्स आने वाले हैं। लेट्स वेट एंड वॉच की कब तक ये रिलीज होती है, और वंस इट रिलीजेस लेट्स सी कि क्या ये सीक्वल्स जो पहले मूवीज आई हैं या उनके जो ओरिजिनल्स आए हैं उनके जितना यू नो काम कर पाती है, यानी हिट होती है या नहीं। फिलहाल एक और एक खबर मेरी ओर से, दिस इज इन रिगार्ड्स विद सलमान खान। नाउ आई केम अक्रॉस हिज पोस्ट ऑन इंस्टा लास्ट नाइट, जिसके बाद जाकर मैंने ये पूरी खबर जो है ये पढ़ी, बट अपेरेंटली काफी गुस्से में थे कल ये। कहा गया है कि ही वॉज विजिटिंग समवन एट द हॉस्पिटल, नॉट क्लियर कि ये किनको विजिट करने गए थे हॉस्पिटल, बट ही वॉज ऑब्वियसली नॉट इन अ वेरी हैप्पी मूड, क्योंकि ही जो जिनको भी विजिट करने गए थे शायद उनके यू नो बहुत करीबी हैं और शायद उनकी तबीयत नहीं अच्छी है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो, क्योंकि आफ्टर विजिटिंग जब ये हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे विद अ वेरी बिग नंबर ऑफ सिक्योरिटी अराउंड हिम, तो वहाँ बाहर कुछ पेपराजी जो है ये मौजूद थे, एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम सेइंग कि मातृभूमि मातृभूमि, लाइक उसके लिए वो उनकी फोटोज जो है ये लेना चाहते थे कि एक पोज कर दो, फोटोज ले लेते हैं। बट सलमान खान वॉज विजिबली वेरी वेरी अपसेट विद द पेपराजी विद द फोटोग्राफर्स आउटसाइड द हॉस्पिटल, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस ना, सिचुएशन ही नहीं है वो कि आप हॉस्पिटल के बाहर पोज कर रहे हो, फोटोज खिंचा रहे हो, व्हेन यू आर डेफिनेटली वेरी अपसेट, और आप किसी से मिलकर आए हो जो आपके यू नो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी तबीयत शायद अच्छी नहीं है, यू आर नॉट इन दैट मूड, और ऐसी जगह पर लोग आकर आपसे फोटोज की मांग कर रहे, तो इट्स नॉट रियली फेयर, स्पेशली पीपल जो काम कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वो फैंस है या समथिंग लाइक दैट। तो वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कुछ हैंड जेस्चर्स भी किए टू एक्सप्रेस कि यार आप लोग क्या पागल हो गए हो, मतलब क्या कर क्या रहे हो, ऐसे ऐसे हैंड जेस्चर्स उन्होंने किए, थोड़ा नाराज भी हुए, कुछ बोला भी, बट आई कुडंट क्लियरली हियर व्हाट ही सेड, फिर वो वहाँ से चले गए। एंड लेटर ऑन ही टुक ऑन टू हिज इंस्टाग्राम, जहाँ पर उन्होंने लगभग 3 या 4 पोस्ट किए विद हिज नाइस स्माइलिंग फोटोज, और हर एक फोटो के नीचे जो कैप्शन उन्होंने लिखा था वो थोड़ा डरावना था, आई वुड से, बिकॉज ही लिटरली वाज सो अपसेट कि उन्होंने यही कहा कि यू नो जिस पेपराजी जिस फोटोग्राफर्स का घर चले ये मैं हमेशा आई मेक श्योर, बिकॉज जब भी ये फोटोज के लिए कहते तो मैं मना नहीं करता हूँ, अगर यू गाइस कांट अंडरस्टैंड कि हॉस्पिटल में आई गॉन टू विजिट समवन, यू नो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर मी, और उस दौरान तुम ऐसी हरकतें करोगे तो आई मेक श्योर कि तुम्हें पता चल जाए द राइट यू नो द राइट मी, बिकॉज अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो ये भी हो सकता है आपके साथ ना कि लाइक आई विल नेवर गिव यू फोटोज एंड स्टफ लाइक दैट, तो ये भी हो सकता है ही विल नॉट एंटरटेन देम. क्योंकि वॉज वेरी वेरी एंग्री अबाउट द फैक्ट कि यार अभी उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया विच इज सो ट्रू. उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे. तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो अक्सर शायद सेलिब्रिटीज के मामले में लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या फिर सेलिब्रिटीज के मामले में लोग उनकी बाउंड्री उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. एंड फाइनली ही हैज स्पोकन आउट अबाउट इट बट लेट्स सी इससे किस तरह से लिया जाता है एंड हाउ डू पीपल रिएक्ट टू इट लेटर ऑन.
1: मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखो, कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर आ रहा है या एयरपोर्ट से जा रहा है, कोई सेलिब्रिटी कोई मंदिर जा रहा है, कोई सेलिब्रिटी जिम जा रहा है, ये पेपराजी को पता कैसे चल जाता है?
2: Well, not really sure और I can't give it as 100% accurate information, but बहुत बार बहुत से सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यूज़ में ये बोलते हुए सुना गया है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं कुछ तो खुद बुलाते हैं इन पेपराजीज़ को कि ओके दैट आई एम लीविंग आई बी एट द एयरपोर्ट एट दिस टाइम तो आप आ सकते हो टू कवर, या फिर जिम जा रहा हूँ या फिर यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ आप आकर कवर कर सकते, कुछ खुद करते हैं उनकी PR टीम करती है बेसिकली ताकि उनको यू नो खबरों में रहने का बने रहने का मौका मिले. एंड इन सम सिचुएशंस देयर आर अ लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस और चैनल्स जो ऐसे सेलिब्रिटीज को जब फॉलो करते हैं दे हैव देयर ओन पीपल देयर ओन फोटोग्राफर्स कि एक एक सेलिब्रिटी के पीछे ऐसे लगा देते हैं कि उनको फॉलो करो, उनकी गाड़ी का नंबर तक पता होता है उनको, तो उनको फॉलो करो वो जहाँ जा रहे हैं देन गेट द क्लिक्स डन. ऐसा भी होता है जो बुलाते नहीं उनके साथ ऐसा होता है और जो बुलाते हैं तो वो चले जाते हैं.
1: ओके, फिलहाल 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और कुछ देर बाद कुछ और स्पेशल बातें होंगी.
3: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
5: Accurate traffic.
6: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
7: Fine and cloudy today with a high of 20 degrees. Southern motorway could be an incident at Randwick Park, Manurewa, where slow even heavy papakura to there, then mostly fine into the city. 25 minutes Manukau to town. Northwestern, 25 minutes in from Massey, slow there to Te Aratu and close to the CBD. Northern, 23 minutes in from Constellation, heavy grapple to Sunninook and slow patches to the bridge.
6: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
8: Cooking ka asli फ्लेवर चाहिए? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter any size aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
9: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
10: Thanks, driver.
9: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
11: Thank you, driver.
9: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
10: Thank you, driver.
9: And 50% off for community service card holders.
12: Thanks, driver.
9: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fare Discounts.
13: The Beds R Us King's Birthday Sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's Birthday Sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
14: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same-day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
15: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colours, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम या रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर मटा मटा. सुबह सुबह आपका मैसेज आया 4:30 बजे से पहले ही. राम राम जय साईं राम. हैप्पी थर्सडे एवरीवन. हैव अ गुड डे.
3: आई थिंक ये बहुत जल्द काम शुरू करते हैं ना, इसीलिए इतना जल्द जाग जाते हैं और फिर अपना मैसेज जो है हमेशा हमारे पास भेज देते हैं. सो थैंक यू सो मच मिस्टर मटा मटा. वुड लव टू नो व्हाट टाइम यू स्टार्ट वर्क. इन फैक्ट जस्ट टू नो कि अच्छा आप कितनी सुबह जागते होंगे. ऐसा तो नहीं कि जैसे उठे सुबह सुबह वैसे ही हमें सबसे पहले मैसेज कर दिया. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ गुड डे, ये मैंडी ने भी कहा है. सो थैंक यू सो मच मैंडी आपके भी मैसेज के लिए.
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंजॉय. कोमल थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो हैव अ वंडरफुल डे.
3: और इसके अलावा बॉबी मान जी का मैसेज आया है, जय साई राम. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम डे, साईज ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए.
2: साई राम भाई, विजय एंड पूजा, कीप हमिंग, हैव अ ग्रेट डे. संजेश आपको भी इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं.
3: और गल्फ हाबा फंगपुरोवा से सलू का मैसेज आया है, उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है. थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए, आपके भी मैसेज के लिए.
2: आज 21st ऑफ मई कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुश हैं, इसकी वजह जो है ये आप हमें बताइए कि भाई किसका बर्थडे है, किसका किसकी वेडिंग एनिवर्सरी है. आप 5599 पर हमें मैसेज भेज दो क्योंकि हम आपको विश करेंगे 7:30 बजे के बाद ऑन हम. और अगर आपके मैसेज इस समय पर आ जाते हैं तो हम आपको विश भी करेंगे. उसके साथ आज एक बहुत ही स्पेशल डे जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. टुडे इज इंटरनेशनल टी डे,
3: चाय का दिन.
2: हाँ, आज मस्त चाय पियो एकदम.
3: चाय पियो और इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करो. चाय की भी क्या बात है ना, इतनी कमाल की चीज है ये, क्योंकि एक शब्द लेकिन इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की चाय है, पर इतने अलग अलग टाइप की चाय होती है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी लाइकिंग दैट मसाला चाय, थोड़ा अदरक थोड़ा इलायची के साथ. पर कुछ लोगों को शायद वो ना पसंद हो, प्लेन चाय भी पसंद करते हो. मेरे ख्याल से एक ऐसा चाय, वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश टी, सुना है आपने?
2: हाँ हाँ सुना है.
3: आपने कभी ट्राई किया इंग्लिश टी?
2: हाँ हाँ ट्राई भी किया है.
3: मुझे ज्यादा पसंद नहीं है वो हालांकि, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर टीज इन द वर्ल्ड.
2: जो भी आपको पसंद है आज चाय आप एंजॉय कर सकते हैं. फिलहाल अभी 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में.

0: Up. Throwback.
1: थ्रोबैक का टाइम अब हो चुका है और 12 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में. और गुड मॉर्निंग का एक और मैसेज आया है. निसयांद्र विजय एंड पूजा हैव अ स्टनिंग डे विद ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस. कृष नायडू फ्रॉम स्वानसन.
2: थैंक यू सो मच कृष. इनसे वैसे आई थिंक लास्ट वीक मुलाकात हुई थी ना.
1: हाँ, पिछले फ्राइडे को.
2: यस, सो इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू. बट फिलहाल एक और एक मैसेज आया है. इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है अपना, पर इन्होंने ये जरूर कहा है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, यू शुड ट्राई चाइनीज टी. दे हैव सो मेनी वेराइटीज विद फ्लावर्स, डिफरेंट फ्रूट्स एंड लीव्स. दे हैव अ ह्यूज रेंज एंड एक्चुअली टी स्टार्टेड इन चाइना. हैव अ लवली डे, ये किसी ने कहा है.
1: थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड वन और टू टाइप्स ऑफ चाइनीज टी. या बट आई लव, मैंने तो पहले भी बोल दिया है तो ज्यादा उस पर नहीं बात करूंगा, बट आई लव द टी इन इंडिया. एब्सोल्युटली लव इट.
2: मतलब अभी तक आपको वो भूले से भुलाया नहीं जाता वो वाला.
1: हाँ, मजा नहीं आता ना. यहाँ पर अभी चाय पीना भी बहुत कम कर दिया है.
2: हाँ, दैट्स गुड. बट ये जो चीज़ इन्होंने कही है कि चाय एक्चुअली स्टार्टेड इन चाइना, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आपको पता है चाय के इतिहास?
1: नहीं, मुझे नहीं पता भाई.
2: अच्छा, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे हम, इनफैक्ट 7 बजे वाले खबरों के बाद, कि एक्चुअली में चाय की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई. पर फिलहाल ऐसा करते हैं, आपसे जानते हैं कि आपको किस किस्म की चाय जो ये पसंद है, या फिर चाय पसंद भी है या नहीं पसंद है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल टी डे और इसे हम एक साथ चाय पीकर तो नहीं सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि अभी पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और हम तो यहाँ स्टूडियो में हैं और शायद आप ड्राइव कर रहे हैं फिलहाल हमें सुन रहे हैं, देन देयर इज नो चांस कि राइट नाउ यू कैन हैव टी विद अस टू सेलिब्रेट दिस. सो हाउ अबाउट कि आप हमें ये बता दो कि आपकी सबसे पसंदीदा चाय कौन सी है. लेट्स फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टी है जो आप सबने ट्राई किया एंड यू लाइक इट, और क्या कुछ अलग है आपके चाय पीने के तरीके में ना.
1: तो 5599 पर आप हमें टेक्स्ट करके बताएं. देखेंगे कि हम लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर चाय कौन सी है और कितने लोग ऐसे हैं जो चाय बिल्कुल पीते ही नहीं, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे इस दौरान. अगर आप नहीं पीते हैं चाय एट ऑल तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर टी जो हम पीते हैं.
2: एक एक काम करते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट.
1: ना, मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल है.
2: पर ऐसा कर सकते हैं, अगर आज के हमारे इस मैसेज से हमें किसी एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं.
1: हाँ.
2: या शायद उन्होंने कभी चाय पी भी नहीं है.
1: हाँ.
2: नॉट फॉर हेल्थ रीजंस बट पर्सनल चॉइसेस. अगर किसी को हेल्थ रीजंस की वजह से आप चाय नहीं पी रहे तो वो बात तो अलग है, पर अगर अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आप चाय नहीं पी रहे तो आपको किसी दिन हम हमारे स्टूडियो इनवाइट करेंगे और यहाँ पर खुद चाय बनाकर आपके साथ बैठकर हम चाय एंजॉय करेंगे. आपका पहला चाय.
1: अच्छा,
2: यू नो दैट कुड हैपन, व्हाई नॉट. बट टाइम बिंग के लिए एटलीस्ट आप हमें ये बताइए, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, येस और नो? और अगर पसंद करते हैं तो कौन सी चाय आपकी सबसे फेवरेट है?
1: यहाँ कौन सी, किस तरह की चाय, प्लेन चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, बादाम चाय, जो भी चाय है वो आप 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बताएं. 7 बजे के बाद हम देखेंगे सबसे पॉपुलर टी कौन सी है और कितने लोग हैं जो चाय बिल्कुल नहीं पीते, और उसके बाद साथ ही चाय के इतिहास पर भी नजर डालेंगे. गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, विजय पूजा, ऑल स्टाफ एंड लिसनर्स ऑफ हम हैव अ हैप्पी डे. रवनेश मुदलियार, थैंक यू सो मच रवनेश आपके भी मैसेज के लिए. तो अभी देखेंगे कितने लोग चाय की अपनी पसंद के बारे में हमें बताते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: क्लोज टू 11 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 19, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज रहेगा. मौसम ठीक ठाक रहेगा, कुछ हल्के बादल छाए रहेंगे और सनसेट आज का 5:19 PM पर होगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून.

0: underscore.nz. Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The breakfast show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai. Abhi 3:30 ho rahe hain, 7:00.
1: और मॉर्निंग मैडनेस में चलिए आपके साथ, जबकि सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो पिछले घंटे हमने चाय के बारे में पूछा। सबसे पहले तो हमने यही पूछा आपसे कि अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो वी लव टू हैव समवन विद अस टुडे जिनके बारे में पता चले कि उन्होंने लाइफ में कभी भी चाय नहीं पी। एंड एज वी सेड, नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, बिकॉज आप चाय पसंद नहीं करते या यू नॉट अ फैन, सो यू नेवर ड्रिंक टी, ताकि हम आपको किसी दिन इनवाइट कर सके हमारे स्टूडियोज एंड वी सिट डाउन विद यू एंड हैव अ कप ऑफ चाय। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो आस्क्ड यू कि अगर आप चाय पसंद करते हैं तो आपको कौन सी चाय सबसे ज्यादा पसंद है, वो आप हमें बता सकते हैं।
2: लगता है बहुत कम लोगों को चाय में गया, चाय से चाय के बारे में हाँ इंटरेस्ट है। सबसे पहले जो मैसेज आए हैं, राम राम विजय भाई एंड पूजा जी, आई लव टी एंड माय फेवरेट वन इज वाघ बकरी मेड बाय माय मिसेस, जस्ट लव इट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। रोनल्ड ने भेजा ये मैसेज।
1: ओके, थैंक यू सो मच रोनल्ड आपके मैसेज के लिए। उसके बाद बॉब नायडू जी का मैसेज आया है, इन्होंने कहा आई हैव नेवर ड्रंक टी, आई डोंट इवन नो हाउ इट टेस्ट्स। Because you drink something else that looks like tea, but it doesn't taste like tea. So, अगर आप उससे बाहर आएंगे तो आपको चाय के बारे में पता चलेगा।
2: और अब you have to invite Bob Naidu ना?
1: हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, because अगर इन्होंने कभी चाय नहीं पी है, as we said, तो किसी एक दिन जरूर करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा ना, ये दूसरी चीज पीते हैं जो चाय जैसी दिखती है पर चाय होती नहीं है, वो चाय से थोड़ी गाढ़ी दिखती है इनफैक्ट। इन्होंने लिखा है लव मोका, मोका चाय नहीं होता यार, इट्स कॉफी, बट इन्होंने लिखा है लव मोका, बट आफ्टर फ्यू रिसर्चेस नाउ आई एम टेकिंग लॉन्ग ब्लैक फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, संजेश ने कहा है। संजेश, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग लॉन्ग ब्लैक, बिकॉज दैट्स दैट वन थिंग आई ड्रिंक अ लॉट विदाउट शुगर, पर मेरे को तो कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। आई जस्ट ड्रिंक इट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई लव ब्लैक कॉफी without sugar, मुझे बहुत पसंद है, तो I drink that, but I don't know what are the health benefits.
2: Okay, good morning Vijay and Puzzles. Yeah,
1: mistake में type हो गया होगा।
2: नहीं, मैंने मुझे ऐसा लगा कि शायद you know out of style उन्होंने ऐसे लिखा।
1: नहीं, वो गलती से type हो गया है।
2: Okay, but whatever it is, good morning Puzzles. I like masala milk tea. Masala milk कैसा होता है?
1: मिल्क टी के बारे में बोल रहे हैं ना?
2: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मसाला चाय बेसिकली,
1: मसाला चाय। या
2: विकाश, थैंक यू सो मच विकाश, इनको मसाला चाय पसंद है। और कितने टाइप्स ऑफ टी होते हैं?
1: आपने वो पिंक टी ट्राई किया?
2: हाँ, वो एक बार आई ट्राइड इट, वो ईद डे पर या
1: ईद डे पर ही आई थिंक हमने ट्राई किया था, और इट वाज सो नाइस। उसमें मैंने पहली बार चाय में बादाम का टेस्ट जो ये पाया था, क्योंकि आई थिंक उसमें डलता है या फिर उन्होंने बनाते समय उसमें डाला होगा, बट इट वॉज रियली नाइस, आई ट्राइड दैट पिंक टी। बट और भी किस टाइप की चाय होते हैं यार, हमको ज़्यादा नहीं पता है, हम तो सिर्फ दो ही जानते हैं, एक जो सिर्फ वो क्या बोलते हैं लाल चाय, जो हम बोलते हैं लाल चाय, बट अपेरेंटली लुक्स ब्लैक, इट्स नॉट लाल,
2: नो इट लुक्स रेड,
1: हाँ वही। और दूसरी है जो मिल्क टी, जिसमें इलायची अदरक वगैरह डालकर बनाते,
2: स्टैंडर्ड चाय जो है वो हमें पता है कि ये क्या होता है। और कौन कौन से? अच्छा, किसी ने कहा है आई लाइक अरेबिक कार्डमम टी, इट्स द बेस्ट विदाउट मिल्क, एड्रियन ने ये बताया।
1: एड्रियन, हमने कभी नहीं ट्राई किया ये
2: अरेबिक कार्डमम, इज
1: इलायची,
2: आई लव।

0: of lychee tea.
1: हाँ but Arabic cardamom tea क्या है नहीं no idea I अगर नाम सुनकर बताना हो तो I don't think so I've ever tried this.
0: हाँ मैंने भी नहीं try किया है.
1: Right, तो आप भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चाय है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आज हम देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसी यूनिक चाय जो है वी कम अक्रॉस थ्रू योर मैसेजेस और उसके अलावा वी आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज नेवर एवर ट्राइड टी बिफोर.
0: तो 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमें भेज सकते हैं.

0: best show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: Morning Madness में here are your Rashi Vibes for today. मेष यानी एरीज आज फायदे के अच्छे मौके आपको मिलेंगे और दोस्तों को हेल्प आउट करने का मौका आपको मिलेगा. साथ ही में आज समाज में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है. कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े वरीड या टेंस्ड हो सकते हैं, लेकिन चिंता की इतनी बात नहीं है. आज कम ही कोशिश से आपके सारे काम बनते जाएंगे.
3: ऋषि ने टोरस, आपके लिए कहा गया है रिस्क उठाने के लिए आज आप में हिम्मत जरूर आएगी. बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स That involved a lot of risk, लेकिन शायद आप उसे थोड़ा घबरा रहे थे. फाइनली आप ये जरूर करेंगे. और उसके साथ साथ आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज के काम कल पर बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा.
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, जल्दबाजी में आज कोई भी डील ना करे, लेन देन ना करे, अपने हेल्थ का ख्याल रखे, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी होगी. गैम्बलिंग से दूर रहे, आज ऑफिस में काम भी कुछ ज्यादा होगा आपके पास.
3: कर्क ने कैंसर, किसी अननोन व्यक्ति पर विश्वास ज्यादा ना करें. इनफैक्ट ज्यादा तो छोड़ो, अभी शुरुआती दौर में अगर ये रिश्ता बन रहा है तो विश्वास ही ना करें, आपके लिए अच्छा होगा. समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय की बर्बादी जो है ये आपके लिए काफी नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा. यू विल बी स्टक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज समय है बट यू आर वेस्टिंग इट, इसका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. ऐसा करने से अच्छा है मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज इट वाइजली, और कीमती चीजों को संभाल कर रखें. अदरवाइज अगर गुम हो गए या चोरी हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा.
2: उसके बाद सिंह यानी लियो, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि पैसों का फायदा आपको हो सकता है. दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा, कुछ नया काम शुरू करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं. आज ऑफिस में भी बॉसेस आपके काम से काफी खुश रहेंगे.
3: एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो आज वैसे कन्या यानी वर्गो के लिए बताया गया है कि आज तत्काल यानी कि इंस्टेंटली तो फायदा आपके हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अगर कुछ काम कर रहे, एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट्स, कीप वर्किंग हार्ड, ये चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में और इन चेंजेस से आपको फायदा जरूर होगा. नौकरी में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और पैसे अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे, इट्स अ गुड डे टू गेट दैट डन. यू विल गेट सम रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट टुडे.
2: तुला यानी लिब्रा, आज काफी थकावट आप महसूस करेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और साथ ही में किसी रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फायदे के कुछ अच्छे मौके और पैसे भी आपको मिलेंगे.
3: और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हड़बड़ी ना करें, मतलब रश ना करें, टेक योर टाइम. अगर कोई पर्टिकुलर रिजल्ट की इच्छा है आपको, यू वर्किंग टूवर्ड समथिंग, यू ट्राइंग टू मेक द रिलेशनशिप मोर, यू नो क्या बोलते हैं उसको,
2: पता नहीं भाई,
3: अरे मतलब और गहरा.
2: अच्छा, मजबूत.
3: मजबूत, I just couldn't get through it. तो रिश्ते को अगर और मजबूत बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए और पेशेंटली इसके टूवर्ड्स काम कीजिए. वैसे नेगेटिव सोच आज आपके लिए काफी गलत मौके जो है ये आपको दिलाएगी. बिकॉज यू विल बी थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे, विच मीन्स आप नेगेटिव रास्ते पर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो शायद आपके लिए जरूरी नहीं है. तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. गाड़ी चलाते समय, मशीनरी का इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ा केयरफुल रहना है आज.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, लीगल प्रॉब्लम्स कुछ आ सकते हैं. बेकार में किसी के साथ हंसी मजाक ना करें. फाइनेंशियली भी दिन उतना अच्छा नहीं होगा और दूसरी तरफ बिजनेस वैसे ठीक ठाक ही चलेगा आपका.
3: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज आपके लिए कहा गया है कि सुख के साधन आप जुटा पाएंगे. एज इन यू विल गेट सम हैप्पी रिजल्ट्स आउट ऑफ व्हाटएवर जो भी आप ट्राई कर रहे हैं टू गेट. और उसके साथ साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि सोच समझ कर कोई भी फैसला करें. किसी नई चीज में अगर आप इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं तो टेक योर टाइम, थिंक इट थ्रू अच्छे से. नौकरी में सुख और शांति बनी रहेगी, जिससे कि आपका मन भी लगा रहेगा.
2: और उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, आज ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा और साथ ही में खाना बढ़िया एंजॉय करेंगे. दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे. अपनी आंखों का आपको बहुत ख्याल रखना होगा.
3: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, दूसरों के काम में हस्तक्षेप यानी कि इन्वॉल्वमेंट ना करेंगे इफ इट्स नॉट नीडेड. बुरी खबर मिल सकती है किसी तरह से, तो केयरफुल रहे आप और गेट योर वर्क डन एज क्विकली एज पॉसिबल. डोंट वेस्ट योर टाइम. भागदौड़ भी आज काफी ज्यादा लगी रहेगी, इसलिए थकावट भी आप महसूस करेंगे. सो ये थे आज के आपकी राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं कि यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड, आपका दिन अच्छा गुजरे, यू गेट सम नाइस टाइम विद योर लव्ड वंस. और साथ में आपको हम ये भी बता दें, राशि वाइब्स तो हो गए मॉर्निंग मैडनेस में, लेकिन थोड़ी देर बाद आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। कल जबकि हमने सेलिब्रिटी अलार्म किया था तो जब मैंने आवाज सुनी आई कुड फिगर आउट कि ये कौन है, बट कई लोगों को कई तरह से प्रॉब्लम भी हुई इन आइडेंटिफाइंग, बिकॉज बहुत कम लोगों ने सही जवाब जो है ये दिया था।
2: तो देखेंगे आज सेलिब्रिटी अलार्म का क्या होता है थोड़ी ही देर में। फिलहाल अभी तो चाय के बारे में जो बातें हम कर रहे थे उसके कुछ मैसेजेस आए हैं, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे, जय श्री गणेश। विमलेश और प्रिया का मैसेज आए हैं, आपको भी ये सुबह मुबारक हो।
3: और इसके अलावा हमारे पास कुछ और मैसेजेस आए हैं, इन्होंने कहा है मिल्की जिंजर एंड इलायची टी विद जस्ट वन शुगर, क्रिश स्वानसन से इन्होंने मैसेज किया है।
2: ओके, ओम साईराम भाई, माय फेवरेट टी इज फिजी ग्रास एंड लेमन लीव्स।
3: नाइस, बहुत रिफ्रेशिंग होता है ये। अतीश राम फ्रॉम फिजी बट स्टेइंग इन तकनीनी नाउ, ये इन्होंने कहा है।
2: अच्छा,
3: इन्होंने मैसेज भेजा,
2: हां उन्होंने ये मैसेज भेजा था।
3: Hello, replying to the answer, cardamom tea name is Do Ghazal tea, sold any shop and online or two. Also, they make rose tea as well. I have just started drinking rose tea. It's good for indigestion. ये जो हम बोल रहे थे ना अरेबिक कार्डमम टी के बारे में जो एड्रियन ने कहा।
2: अच्छा, ओके। तो यहाँ कहाँ पर मिलेगी पीने को दो गजल चाय?
3: दो गजल चाय सुनने में क्या
2: romantic like.
3: ऐसे, हाँ यार सच में
2: बहुत romantic चाय। You know, when I was India, I also drink.
3: When I was in India,
2: in आपको आप तक पहुंचा नहीं होगा ना?
3: आपने बोला ही नहीं।
2: अरे सुनो स्टोरी सुनो।
3: हाँ सुनो।
2: I also tried the सुलेमानी चाय ना।
3: सुलेमानी चाय।
2: हाँ सुलेमानी चाय फिल्मों में आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि I've seen it in movies. तो जब मैंने कहीं पर ये देखा बहुत लेविश रेस्टोरेंट में, वहाँ पर
3: एकदम क्रेजी हो गए।
2: एक ठेला लगा हुआ था, क्योंकि I was already in love with the tea जो मैं पी रहा था। तो मैंने सोचा अच्छा सुलेमानी चाय भी ट्राई करते हैं। माय गॉड, I don't know how people drink it. वो वाली चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो भी मैंने ट्राई की, बहुत कड़वी थी यार। एंड गुड मॉर्निंग, आई लव ईरानी चाय, यूज टू ड्रिंक एवरी वन आवर हाफ कप, मिस हैदराबाद एंथनी। अच्छा
3: इंटरेस्टिंग, ईरानी चाय क्यों इतना अलग होता है वो पता करना पड़ेगा। Good morning, Vijay and Pooja. I used to drink tea more in India after starting work there, but now a coffee guy after moving to New Zealand. Not a fan of masala chai at all. Rather like English tea. I love Darjeeling tea. Went there to bring 1 kg. Really nice and smell. Also tried jasmine tea, green tea, ginger tea, fruit tea and Arabic tea in Dubai, but didn't like it much. I also like the tea that's made in the tea stalls in my village in West Bengal. Real nostalgic, regards Som. इनका तो हाल खराब कर रहे हैं पिछले दो दिनों से। कल ये बता रहे थे about you know आलू पोस्तो और वो क्या था?
2: Fish hish.
3: हिलसा मछली के बारे में कुछ तो एक डिश था जो इन्होंने कल जिसके बारे में मेंशन किया था। आज चाय का ही टॉपिक छेड़ दिया हमने, मतलब इनको तो बहुत बुरी तरह से हम होमसिक करने वाले हैं बहुत जल्द।
2: फिलहाल 22 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए।
0: बॉलीवुड

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja
6: brought to you by Fox.

0: तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए आज के सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आएंगे एंड फाइनली वी आर रेडी. सो कल बाय द वे हमने जब आपको आवाज सुनाई थी, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड. कुछ लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स जो है ये जो भेजे थे, दे सेड इट्स राज शिमानी जो कि बहुत ही जाने माने पॉडकास्टर हैं. और उसके अलावा कुछ लोगों ने हमारे पास अपने आंसर जो भेजे थे, इन्होंने खान सर ये लिखकर भेजा था. सो देवर डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, बट एटलीस्ट सम ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. दैट्स वाई हम आज उस आवाज़ के साथ तो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं. ऑफकोर्स इट वॉज सुनील छेत्री, लेकिन आज की जो आवाज़ है ये किन की आवाज़ है, पहले तो चलिए ये सुनते हैं और उसके बाद कुछ और बातें जरूर करेंगे.
1: बहुत छोटा सा पोर्शन होगा, इसीलिए बड़े ध्यान से आज आपको सुनना पड़ेगा. तो हियर इज द वॉइस.
2: मैडम, अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या किया जाए?
1: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी.
0: ये भी बहुत ही आसान है, बहुत बहुत इजी है. और आई थिंक डिस्पाइट नॉट बीइंग वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि लीड कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, ये फिर भी काफी पॉपुलर है. और अगर आपको इनके पास पता चल चुकी है तो अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम. तो जल्दी जल्दी हमारे पास अपने आंसर्स आप लिख भेजे. BF लिखे सबसे पहले, फिर आप अपना जवाब और अपना नाम लिखकर 5599 पर भेज दें. अगर आज कोई एक भी शख्स इनकी आवाज को नहीं पहचान पाया तो फिर यही आवाज कल एक बार फिर आपको हम सुनवाएंगे.
1: तो एक बार फिर अभी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आपने मिस आउट किया था पे अटेंशन, और उसके बाद अपना जवाब आप हमारे पास भेज सकते हैं.
2: मैडम, अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या किया जाए?
1: तो अब अपने जवाब जो हैं ये जल्दी जल्दी आप हमारे पास भेजें 5599 पर BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम.
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Go.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में सेंटियागो चिली से ऑकलैंड एयरपोर्ट पहुंचे दो विदेशी युवाओं को कस्टम्स ने सूटकेसेस के फॉल्स बॉटम में छुपी 6 किलो कोकेन के साथ अरेस्ट किया है। पासपोर्ट प्रोसेसिंग के दौरान उनके बैग्स का एक्सरे और चेकअप किया गया तो ऑफिसर्स को सूटकेस की लाइनिंग के अंदर गड़बड़ी नजर आई। गहराई से जांच करने पर लाइनिंग के नीचे वैक्यूम सील्ड बैग्स मिले जिसमें पाउडर जैसे सब्सटेंस थे और उनका टेस्ट करने पर कोकेन होने की पुष्टि हुई। ऑकलैंड के पोश आइलेक एप्सम के सेंट एंड्रयू रोड पर दो टाउन हाउसेस को उनके ऑनर्स ने हजारों डॉलर्स या लाखों डॉलर्स के भारी नुकसान पर रीसेल किया है। कोलॉजिक के डाटा के मुताबिक ये कोई अकेला मामला नहीं है बल्कि लगभग 20% टाउन हाउसेस अपनी खरीद कीमत से कम दाम पर बेचे जा रहे हैं। इस साल के पहले क्वार्टर में 41% अपार्टमेंट्स और 11% घर भी लॉस में बिके हैं और इस नुकसान में रियल एस्टेट कमीशन और मार्केटिंग फीस का खर्चा शामिल नहीं है। आईपीएल का जो मैच आज सुबह कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत 4 विकेट से हुई। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग की, 8 खिलाड़ी खोकर 147 रन बनाए। जवाब में 18.5 ओवर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 खिलाड़ी खोकर 148 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। ओएफसी प्रो लीग के सेमीफाइनल्स जो है ये कल खेले गए। पहले सेमीफाइनल में साउथ मेलबर्न की जीत वनवातु यूनाइटेड के खिलाफ 4-0 से हुई जबकि ऑकलैंड एफसी ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ आइलैंड यूनाइटेड को 1-0 से हराया। ऑकलैंड एफसी और साउथ मेलबर्न के बीच अब ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा। फिलहाल यूएफए यूरोपा लीग का फाइनल जो है ये फिलहाल खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में लगभग 38 मिनट्स के खेल को खेला जा चुका है और अभी भी एस्टन विला और फ्रेबेग 0-0 से बराबर हैं। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए बारी बारी से हम पर हम लेकर आते रहेंगे।
3: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
5: Mildale House and Land Packages.
6: Patchy cloud fine today with a high of 20. Southwestern heading northbound, a crash near the Hillsborough off-ramp, locking the left lane, slowing you down there. Southern, 46 minutes Manukau to the city. Heavy at Papakura, slow all the way to the city. Heavy patches again from Mount Wellington. Northwestern, 40 minutes in from Massey, slow from Upper Harbour with lots of heavier spots. And Northern, 37 from Constellation, slow at Silverdale, heavy gravel to the bridge.
5: Award-winning builders, wide range of homes. Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
7: Prezi Card's just levelled up. You can now add every card design to your digital wallet, making it easy to recognise each card, stay organised, and let your personality shine when you tap to pay. Shop now at prezicard.co.nz.
8: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
9: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy, like giving new customers $30 credit on all 4 weekly plans $27 and above. Visit skinny.co.nz/plans now. New customers only, ends 2 August, T's and C's apply.
10: Get the skinny.
11: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
12: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
11: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
12: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
14: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
13: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
14: Available at selected branches. T's and C's apply.
15: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
16: The beat of Bob.
3: Bollywood.
0: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
3: Birthday greetings.
1: Iska birthday bhai?
10: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aajao.
1: Happy birthday to you.
2: Many many happy returns of the day. Aaj 21st of May ko agar apna janmdin ya shaadi ki salgirah aap mana rahe hain. Sonal Sharma, happy secret birthday aapko hum kehna chahenge. Aaj aapki patni hai Risha, unki or se bahut hi pyara sa message aaya hai. Wishing you all the best. Aapki maa hai, aapke bacche hain aur tamam jitne bhi parivar wale hain, sabhi shubhkamnaen aur badhaiyan de rahe hain. Sabhi ki or se bhi ye special day aapko anekobar shubh aur mubarak ho.

0: RNZ.
1: 17 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में और आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में आप में से कई लोगों ने अपने आंसर्स भेजे थे, थैंक यू सो मच। और सभी के जवाब इनफैक्ट जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं करेक्ट हैं। आज जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो थे वरुण शर्मा।

0: तो चलिए आज का हमारा जो थ्रोबैक है ये आपको सुनाने का समय हो चुका है इस घंटे के लिए. बट बिफोर वी डू दैट लेट अस आल्सो रिमाइंड यू कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसी वीक संडे तक. इनफैक्ट आप ये इस मौके से फायदा उठा सकते हैं जहां पर अगर आप जीतना चाहते हैं एक डबल पास टू गो एंड विटनेस नन अदर देन राहत फतेह अली खान लाइव इन ऑकलैंड, क्योंकि इनका बहुत ही अमेजिंग अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस जो है ये होने वाला है एट द ट्रस्ट अरेना ऑन द 25th of July. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे पहले ये जरूर सुन ले कि आप अगर टिकट्स लेने वाले हैं या अभी तक नहीं लिए हैं, यू नीड टू ग्रैब सम टिकट्स. dryticketscom, यहाँ आपको विजिट करना है टू ग्रैब योर टिकट्स.
1: जल्द से जल्द टिकट्स ले ले टू अवॉइड एनी डिसअपॉइंटमेंट एंड एंश्योर करें कि जो सीट आपको चाहिए वो आप ले रहे हैं एट द ट्रस्ट अरिना. और अगर डबल पास जीतना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है. हमारे फेसबुक पेज पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने अभी तक जाकर जो हमारा कॉम्पिटिशन है बड़ा आसान वाला और फन कॉम्पिटिशन है इसमें पार्टिसिपेट किया है. यू ऑल्सो नीड टू डू दैट.
0: Absolutely. What आप कीजिए आप विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM. दैट्स अ ब्लू पेज, दैट्स अ पेज विद ब्लू टिक, वेरीफाइड पेज है ये हमारा. जब आप इसे विजिट करोगे तो आपको फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्टर दिखेगा और इट्स अ पोस्टर अबाउट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन डबल पासेस टू राहत फतेह अली खान लाइव कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन द 25th of July. और उसी पोस्टर में आपको कुछ इमोजीज दिखेंगे. जस्ट वो इमोजीज देखते ही उनका जो गाना है राहत फतेह अली खान का जो गाना आपके जहन में सबसे पहले आ रहा है वही जवाब आप लिख दीजिए. इफ यू थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज द सॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट विद दोज इमोजीज, तो आप कमेंट सेक्शन में बस उस गाने का टाइटल लिख दीजिए एंड दैट्स इट. यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, जहां पर जब ड्रॉ होगा तो अगर आपका जवाब सही होगा आप उस ड्रॉ का हिस्सा होंगे एंड यू विल गेट अ चांस टू विन डबल पासेस.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.5 degrees temperature आप फील कर रहे हैं आज का है 19, overnight कम से कम 11 degrees. Generally ठीक ठाक मौसम ही रहेगा ऑकलैंड में. Sunset 5:19 PM पर होगा.
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वेलकम टू द रश आवर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. इस घंटे थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक में आज का हमारा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे. आज वक्त बहुत कम होगा, थर्सडे हैं, तो हमारी बातें आज एक बार फिर होगी लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोलो से, तो आपको समय पर कॉल करना पड़ेगा. लेकिन शुरू कर रहे हैं घंटा, तो आज की ट्रेंडिंग खबर क्या है?
3: तो आज की ट्रेंडिंग खबर एक रिसर्च है, एक स्टडी है जो सामने आई है, जिसके बारे में भी काफी बातें हो रही है. आई डोंट नो इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस और नॉट, बट इफ यू हैवन तो आपको बता दें. साइंटिस्ट दे एक्चुअली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा है कि ज्यादातर ह्यूमंस जो है वो राइट हैंडेड होते हैं, अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं. और रिसर्च जो है ये की गई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग द्वारा, जिसके बाद चलकर आई थिंक मोर देन 2000 से भी ज्यादा मंकीज एंड एप्स फ्रॉम डिफरेंट एटलीस्ट 41 डिफरेंट स्पीसीज जो है इनके ऊपर ये रिसर्च जो है ये किया गया. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आई नो सवाल मन में आ रहा है कि इंसानों के बारे में जानना था तो मंकीज पर रिसर्च क्यों किया. But the interesting thing is कि they found out that most primates जो होते हैं they do not strongly prefer one hand, यानी कि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं कई बार कई तरह की चीज़ों में, और या फिर कुछ चीज़ों में left hand, कुछ चीज़ों में right hand, ऐसा. लेकिन humans are very different, क्योंकि most humans or most people strongly prefer कि अपना right hand ही वो इस्तेमाल करें. एट फर्स्ट जो इंसान है थोड़ा अनयूजुअल लगते हैं कम्पेयर टू बाकी जो प्रिमेट्स होते हैं, लेकिन इस रिसर्च में ये बात पता चली है जो दो बहुत जरूरी रीजंस है, जैसे कि ह्यूमंस वॉक अपराइट ऑन टू लेग्स और ह्यूमंस हैव लार्जर ब्रेन्स, दैट्स व्हाई वो ये चॉइसेस कर सकते हैं. बिकॉज ह्यूमंस यूज देयर लेग्स फॉर वॉकिंग, देयर हैंड्स बिकम फ्री फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क्स, जैसे कि किसी तरह के ऑब्जेक्ट को कैरी करना, लिखना, कुछ चीजें क्रिएट करना. एंड ओवर टाइम एक हाथ जो होता है मोस्टली मोस्ट केसेस में जो राइट हैंड होता है इट बिकम्स द डोमिनेंट हैंड. और स्टडी में ये बात भी पता चली है कि बीइंग राइट हैंडेड मे बी कनेक्टेड टू ह्यूमन एवोल्यूशन, स्पेशली वॉकिंग अपराइट, ब्रेन डेवलपमेंट और टूल्स का इस्तेमाल जब किया जाता था तो उस वजह से. साइंटिस्ट को ये बात भी पता चली है कि एंशंट एविडेंस ये दिखाता है ह्यूमंस हैव प्रेफर्ड द राइट हैंड फॉर हंड्रेड्स of thousands of years.
1: Wow. तो चलो भाई आज पता चल गया कि हम राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं.

0: Music Month.
1: Back your backyard beats.
2: बैक यू बैकयार्ड बीट्स और न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के दौरान अपने कलाकारों को हम पेश कर रहे हैं। आज के हमारे आर्टिस्ट हैं अक्षत महाजन, जो अपने स्टोरीज जो है म्यूजिक के थ्रू सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये गाना आप एंजॉय करें आज सुबह।

0: अक्षत महाजन को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज बैकयार्ड पीट्स में और अपने वोट्स वगैरह जो है डबल एम के साथ 5599 पर आप हमें जरूर भेज सकते हैं. थोड़ी देर बाद आज व्हाट्स योर टेक में हिस्सा लेने का मौका आपको हम देने वाले हैं. तो चलिए आज किस चीज़ के बारे में बातें होंगी ये आपको बता दें. उससे पहले सुख और खुश, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेज. यू ऑल्सो हैव अ लवली डे. आज हम बातें करने जा रहे हैं अबाउट द श्रिंकिंग ड्रीम. एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कई लोगों के लिए ख़त्म होता जा रहा है. एक सपना होता है सभी का कि अपना खुद का घर हो, और कई लोगों का सपना ये भी होता है कि घर के पास एक छोटा सा आंगन हो घर के साथ, जहां बच्चे खेल सके. यू नो, यू कुड पुट अप योर ट्रैम्पोलिन या फिर और चीज़ें, अपना छोटा सा गार्डन जो है ये आप बना सकें. लेकिन जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ, ये सपना और मुश्किल लग रहा है. वन ऑफ द रीजंस, यू नो, फाइनेंस जो एक चीज़ है उसको हम अलग छोड़ देते हैं. किसी के पास शायद इनफ डिपॉजिट नहीं है, किसी के पास कई अन्य सुविधाएं नहीं हैं, व्हाटएवर द रीज़न में भी. आज एक दूसरे पहलू पर हम नज़र डालेंगे. कई लोगों का इस तरह का सपना, हालांकि दे माइट गेट देयर ओन होम, वो अपना खुद का घर जो है ये ले लेंगे, लेकिन शायद वो सपना उनका पूरा ना हो कि घर के साथ एक आंगन हो, घर के पीछे थोड़ी जगह हो जहां पर वो कुछ फूल पौधे या कुछ वेजिस जो है ये उगा लें. क्योंकि अभी आपने नोटिस किया होगा, खासतौर पर ऑकलैंड में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि यू नो, घर जो बन रहे हैं, इवन फ्री स्टैंडिंग घर जो बन रहे हैं ऑन इट्स ऑन, उन घरों के आसपास बेली कोई स्पेस होता है, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत जगह जो है ये बाकी होती है. और घर के पीछे अगर देख लिया जाए तो जगह के नाम पर एक डेक डाल दिया जाता है दैट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट टू द फेंस, लगभग उतने पीछे तक चले जाता है. सिंगल लेवल घर नहीं, डबल स्टोरी या फिर थ्री लेवल होम्स जो है ये आपको मिलेंगे. ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं या गड़बड़ हैं, लेकिन उस सपने के बारे में हम बातें करना चाहते हैं आज आपसे, जहां पर ये सपना जो है कई लोगों का सपना ही रह जाएगा. क्योंकि वी विल हैव टू गो इन टू और बाय अ हाउस जिसके आसपास शायद कोई जगह नहीं हो, पार्किंग के नाम पर एक गाड़ी खड़ी करने की जगह, जबकि घर में शायद तीन लोग रहते हों, चार लोग रहते हों, वो सारी चीज़ें. तो ये जो श्रिंकिंग ड्रीम है, इसके बारे में आज आपकी राय जो है ये हम जानना चाहेंगे. क्या आपको आपके सपनों का घर मिला, जहां पर घर के आसपास थोड़ा सा कंपाउंड जगह हो, सिंगल लेवल घर हो, कई लोगों को अगर मल्टी लेवल हाउसेस पसंद है आपको तो वो भी सही है, वो भी आप बता सकते हैं. यू नो, इज़ द स्टैंड अलोन होम विद बैकयार्ड ऑफिशियली अ मिथ? यू नो, आने वाले जनरेशन के लिए विल इट बी अ मिथ? एंड क्या आप हैप्पी हैं टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द आउटडोर स्पेस जस्ट टू गेट ऑन द प्रॉपर्टी लेटर? अब पता तो चल चुका है आपको किस चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे. थोड़ी ही देर में हम लाइन्स खोलेंगे और आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा.
1: Mornings made better.
2: Do frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: safe and all that better.
1: Bunnings lowest prices? Nailed.
2: Surf 5kg Rose Fresh Professional Laundry Powder Pouch, just $22.49. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Save up to 20% on fuel with the self-charging Hino Hybrid Electric. The Hino 300 Series Hybrid Electric Light Duty Truck is the perfect solution for your business, reducing your fuel and emissions by up to 20% with no recharging or range limitations. New Zealand's only hybrid electric truck that reduces your operational costs to give you a genuine competitive advantage. Harness the Hino Hybrid Electric. Head to hino.co.nz/hybrid.
5: Danny didn't think he needed a DVS system.
6: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
5: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
6: Nah, only one room. It was just too noisy.
5: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
8: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
7: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
8: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tāmaki showroom. It's worth the visit.
7: Elite Bathroomware.
8: A reflection of you.
9: Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: 20 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक और टॉपिक तो हम आपको बता चुके हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि आज थर्सडे है तो बहुत कम टाइम हमारे पास होगा आज इसीलिए जल्दी से अब लाइन्स हम खोल रहे हैं 0800 004866 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सबसे पहले अफाज अ वेरी गुड मॉर्निंग
13: हेलो
12: गुड मॉर्निंग कैसे हो अफाज
13: गुड मॉर्निंग मैं अच्छा आप कैसे
12: मैं भी अच्छा हूँ बढ़िया हूँ
13: आप मुझे सुन पा रहे
12: हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहे
13: अच्छा सॉरी मेरा शायद ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम हो गया मैं तो अच्छा हूँ आप कैसे
12: हाँ ठीक हूँ भाई
13: हाँ सॉरी मुझे लगता है देखो थोड़ा वो तो ये है कि एकदम जो आपका ड्रीम हाउस है वो तो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही जैसे अभी जैसे मैं अगर सोचूं मेरा पर्सनल तो हाँ यानी मेरा घर ऐसा है कि मैं वहाँ पे अगर चाहूँ तो मेरे पास स्पेस है जो मैं कर सकता हूँ गार्डनिंग बट मुझे एक्चुअली मैं उसका थोड़ा सा मैं लेजी हूँ वो चीज़ों में बट मेरे पास ऑप्शन है बट कार पार्क को लेके हाँ कि जैसे अगर आपके घर में अगर आप बड़ा घर लेते हैं और दो तीन लोग जैसे रहते तो कार पार्क की प्रॉब्लम है और जैसे मेरा घर है जैसे वन स्टोरी एंड टू स्टोरी है सॉरी तो उसमें एक है कि आज आप इतना पैसा लगा रहे हैं और वो कंपैरिजन में आपको वैसा हाउस नहीं मिलता अभी हम यंग है तो चलो हम फर्स्ट फ्लोर जा सकते हैं या आ सकते हैं बट अगर जब आपके घर पे आपके माता पिता आते हैं तो वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है तो फिर एक सवाल आ जाता है कि हम इतना जब पैसा डालते हैं तो वो क्या उतना वर्थ इट है
12: okay.
13: तो मैं मेरा पर्सनल वो है और अगर आप लेना भी चाहो तो फिर आपको बहुत ज्यादा दूर जाना होता है तो बस वही एक है मेरे नजर में तो पॉइंट फिलहाल
12: थैंक यू एफआस थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए 0800 004866 गुड मॉर्निंग हेलो
14: गुड मॉर्निंग सर रणेश
12: जी भाई
14: मेरा मानना है इट्स पॉसिबल मेरे वाइफ ने दो लोग मिलकर टू इयर्स होला इस साल की थी तो वी हैव अ हाउस थ्री बेडरूम हाउस बट हमारा कंपाउंड काफी बिग है
12: ओके
14: बट सेक्रीफाइसेस काफी करना पड़ेगा.
12: Yeah, exactly. But जो the other side of the coin जब हम उछालते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जिन जिन घरों जिन जगहों पर शायद पहले एक घर होता था और बड़ा सा कंपाउंड होता था वन का या कुछ भी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपर्स आ रहे हैं उन जगहों को लेकर एक घर की जगह पर चार चार घर बना रहे हैं. एंड
14: Definitely. मेरे जहाँ मैं रहता हूँ कजन पार्क ऑकलैंड में, रिसेंटली जस्ट वन ईयर में दो लाइक देवर 600 to 700 स्क्वायर मीटर दो प्लॉट्स थे नेबरहुड में, अभी वहाँ पे चार टाउन हाउसेस खड़े ईच.
12: Yeah, there you go. I mean, it's not wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, but it's just about the dream जो कई लोगों के पास होता है. Some young families aspire कि you know when we have our family या जब छोटे बच्चे होंगे then they could play outside our compound. Otherwise, you have to pack up everything and take them to the park.
14: That's true. I think Auckland का यही future is Auckland will go that way because of the population. हमारे पास land कम है यहाँ पे, सब तो within that bridge से लेकर डुई के बीच में आना चाहते हैं. डुई भी नहीं, पपकुरा कहते हैं.
12: Yeah.
14: However, if you go further, let's say Pocono and outwards, then maybe you will have that dream. A lot of my cousins did that now. So log udhar gaye and unko big compounds mila. Like where you're looking at 800 square meter, 900 square meter. Yeah, it's like you have to at that trade off hota hai na ki kaam ke nazdeek aana hai ki traveling karna hai.
12: Exactly. Thank you so much, bhai. Aapke bhi a call ke liye and आपके टाइम के लिए. गुड मॉर्निंग. हेलो परविंदर.
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
12: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ. ये जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो ना, मुझे कभी कभी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे वो लोग जैसे वहाँ कहते हैं हम तो बड़े एरिया में रहेंगे, अच्छे एरिया में रहेंगे, तो जैसे फ्लैट बुश ऑमेस्टन में रहते हैं, पार्किंग नहीं है, कभी बुलाएंगे घर पे आ जाओ, पार्क कहाँ करें?
12: अच्छा,
0: इतना महंगा महंगा घर ले रखा है 1 million, ना आगे कंपाउंड ना पीछे कंपाउंड ना पार्किंग, तो हम लोग क्या पार्किंग अपने साथ लेकर आए?
12: ओके.
0: जैसे मैंने लिया था, ऑब्वियसली घर इतने महंगे हैं और मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हम इतना महंगा नहीं लेंगे ताकि आगे जाकर कुछ इश्यूज हो तो स्टिल मैनेजेबल हो. तो हमारा घर जैसे छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, पर उसमें आगे आगे कंपाउंड ऐसा है कि आप अगर थोड़ी सी गार्डनिंग भी करो तो स्टिल वहाँ पे प्लेइंग एरिया का जगह है.
12: That's nice. Thank you, sir.
0: गैराज है और ड्राइवर में भी पार्क कर सकते हो और बाहर घर के बाहर भी जगह है, तो मतलब इतना एरिया है और पीछे भी वॉकिंग एरिया इनफ है, आराम से वॉक वगैरह कर सकते हैं और अच्छे पेड़ लगे हैं, मेरे यहाँ नींबू का पेड़ लगा हुआ है, मतलब अच्छी खासी जगह है.
12: That's really
0: और फिर
12: good.
0: उसके बाद हमें किसी ने बुलाया था टाकानीनी में कि आज वो फैमिली विजिट कर लो, तो वो ऐसे दिखा रहा था ये देखो ये कमरा कितना बड़ा है, ये कमरा कितना बड़ा है, ऐसे वो सारा एक्सप्लोर कर रहा था, दिखा रहा था. मैंने कहा बेड़ा, पंजाबी में बेड़ा बोलते है, मैंने कहा बेड़ा दिखाना, अरे बेड़ा है ही नहीं. मैंने कहा कल को बच्चे बड़े होंगे क्या करोगे, मतलब आई डोंट नो, ये मेरा थॉट है कि थोड़ी जगह होनी चाहिए बाहर.
12: थैंक यू परविंदर, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए और टाइम के लिए. तो अभी तो टाइम लगभग हो रहा है, अब आप चाहे तो 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एंड एक मैसेज जो है ये हमारे पास आया था, वो पढ़ देते हैं. आई बॉट अ ब्रैंड न्यू टाउन हाउस इन फ्लैटबुश 2 years ago. They advertised it as low maintenance luxury. What that actually means is I have zero privacy. My backyard is a 2-meter patch of artificial grass. If I sit outside, I am looking directly at 4 different neighbors' bedrooms windows. If my kids want to play cricket, I have to pack them into the car and drive to a local park. It's crazy. I paid over $1 million for this property and honestly, it feels more claustrophobic than the apartment I lived apartment I lived in back in India. Back in Delhi. ये आपने लिखा है. थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. तो 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं.
9: Hollywood's most wanted.
11: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
15: Main laun apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 29 मिनट रहे हैं फिलहाल अब 9 बजने में, और हमने कहा था कि एवरी थर्सडे को हमारी बातें जो है ये लॉजिक फाइनेंस के गुरु से होती है, तो गुरु आज एक बार फिर आ गए हैं लाइंस पर हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग गुरु।
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, आप कैसे हो?
0: मैं ठीक ठाक हूँ, ठंडी कुछ ज़्यादा है बट या ऑल गुड। अभी आज बताइए क्या अच्छी खबर, क्या फायदे की खबर जो है ये हमारे लोगों के लिए आप लेकर आए हैं?
1: विजय भाई, सबसे बढ़िया जो गुड न्यूज तो है कि जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं प्रीटी मच वेरी अफोर्डेबल प्राइजेज पे अभी प्रॉपर्टीज जो है वो निकल रही हैं, गुड नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो फर्स्ट होम बायर्स ले रहे हैं प्रॉपर्टीज को, दे गेटिंग वेरी गुड डील्स, स्पेशली इन्वेस्टर्स एज वेल। काफी मम एंड डैड इन्वेस्टर्स आए हैं। मम एंड डैड इन्वेस्टर्स मीन जो जिनके पास पहले एक प्रॉपर्टी थी, यू नो, बट दे वांटेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस दिस मार्केट जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस प्रीटी लो हैं एंड दे कैन अफोर्ड इट एंड दे वर्क द नंबर्स और बात करके हमारे साथ की Is it doable और उसका कितनी उसकी रीपेमेंट बनेगी, कितनी उसकी वहां से उनको कितना रेंट आएगा एक्सपेक्टेड, जेब से उनको कुछ डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, बिकॉज वन थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि होल्डिंग कॉस्ट वर्सेज इक्विटी। तो होल्डिंग कॉस्ट मीन्स कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो एक साल दो साल के लिए, लेट्स से कि वन ईयर के लिए होल्ड कर रहे हो, और उसमें आपकी जेब से हर वीक लेट्स से कि $100 आपकी तरफ से जाता है ऑन टॉप ऑफ द रेंट, तो अगर हर वीक जाता तो दैट मीन्स 5,200 एक्स्ट्रा आपका साल का गया आपकी जेब से। अब वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एक साल में कितनी बढ़ी, मोस्ट प्रॉब्ली 10% बढ़ती है, लेकिन लेट्स से कि 10% नहीं भी बढ़ती है, 5% बढ़ती है, 7% बढ़ती है, तो अगर आपकी वो लेट्स से 600,000 या 700,000 की प्रॉपर्टी है, अगर वो एक साल में 10% बढ़ती है तो 700 का 10% गॉट 70,000, राइट? तो 70,000 से उसकी वो वैल्यू बढ़ गई। अगर 70 से नहीं भी बढ़ी, 5 से भी बढ़ी एटलीस्ट, तो 35% बढ़ गई। बट लेकिन आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट थी उसको, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, आपकी जेब से जो गया वो 5,000 ही गया। सो अगेन दोस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस व्हेन यू लुक इनटू इट, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। और अगर इसको आपको लंबा होल्ड करते हो दो साल तीन साल, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्राइसेस, यू नो, एवरी ईयर इट हैज टू गो अप बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ द मार्केट।
0: या
1: सो अब आई एम कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हैविंग दीज डिस्कशंस ऑन टेबल एंड देन दे गेटिंग इनटू दीज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और दे मेकिंग द प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। तो मेरे को वो बहुत चीज बढ़िया लग रही है बिकॉज दे टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ दिस, व्हिच इज एग्जैक्टली गुड न्यूज I would say out there for the buyers and investors. Or interest rates are still, under 5, which is again very good interest rates. That's what I would say ki aaj ki date mein agar aap usko capitalize kar sakte ho, then definitely should take the advantage of it.
0: Aur agar koi isse fayda uthana chahta hai, to kaise contact kar sakta hai aapko?
1: विजय भाई सिंपल लॉजिक लगाना है आपको गूगल पे, लॉजिक फाइनेंस जब आप गूगल पे सर्च करते हो यू विल गेट माय डिटेल्स, मेरी डिटेल्स आएंगी या फिर कमल की डिटेल्स आएंगी हु इज माय बिजनेस पार्टनर। बट आपको अगर डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन 0800 लॉजिक जी। जब आप लॉजिक जी टाइप करते हो अपने की पैड पे, दैट कम्स टू मी विच इज 0800-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी। जब तक बात नहीं होगी तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा एंड वी आर हेयर टू फाइंड द फंडिंग सोल्यूशन फॉर यू।
0: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और अब नेक्स्ट वीक आपसे और बातें हम जरूर करेंगे।
1: थैंक यू विजय भाई, अप्रिशिएट है।
0: थैंक यू, थैंक यू। तो याद रहे लॉजिक फाइनेंस के गुरु से हमारी बातें जो है एवरी थर्सडेज को होती है। वैसे टॉपिक के बारे में बातें कर रहे थे हम, एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है, आई हेट टाउन हाउसेस, माई फर्स्ट होम वॉज अ फ्री होल्ड कंजेस्टेड एंड नो आउटडोर एरिया, ओह माई गॉड, 4 years वॉज अ स्ट्रेसफुल विद रेजिंग 2 kids एंड फेल्ट लाइक इट वॉजेंट आवर होम एनीमोर। Now I have my dream house, but it came with the loss of selling and buying again cost. Okay, so thank you so much. आपके message के लिए And I think if you're spending millions buying a property, one should think ahead before buying. No use complaining after, because you do see the property before buying. Yes, there is no space in some of the houses, but people still prefer to buy. Obviously, कभी-कभार ये भी होता है ना कि चलो भाई अब ले ही लेते हैं, क्या करें कि जिस एरिया में हमको चाहिए वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरह की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या फिर जिस प्राइस रेंज में चाहिए वो नहीं मिल रहा है. रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. आपकी भी कोई राय है तो वो 5599 पर हमें ज़रूर भेजें.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Accurate traffic.
3: Earn airpoint dollars on DoorDash.
4: A high of 20, lots of sunshine today, final day. Easing on motorways, southern 45 minutes, Manukau to the city. Slow at Manurewa, fine to Otahuhu, then heavy from there to Remuera. Breakdown at Green Lane has been sorted quickly. Southwestern, heavy northbound up to Puanui, easing the other way. Northwestern, 35 in from Massey, we're heavy on and off from there. And northern, 28 from Constellation, just heavy patches from Greville.
3: Add your airpoints number on DoorDash today and start earning airpoints dollars on eligible orders.
5: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Eurotech front loader washing machine and 9kg heat pump dryer set, just $11.99. Eurotech bottom mount fridge freezer, $6.99. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz.
7: The Beds R Us King's birthday sale is on now, with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, queen size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
8: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
9: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
10: Do they have parking?
9: There is some.
11: Are there biscuits?
9: Of course.
12: Can I do it during work hours?
9: Don't know. Talk to your manager. Probably.
13: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
14: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
16: बस थोड़ी देर बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे और उसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन में देखेंगे हमारे आसपास कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है. लेकिन ना भूले आज थर्सडे आ चुका, आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस इतने दिन हमारे पास बाकी रह गए हैं जब ईच डे $100 कैश जीतने का मौका है हमारे पास बाय प्लेइंग चैडल ऑन रोवा.
17: तो याद रहे कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाइए और जल्दी जल्दी रोवा ऐप जो है ये विजिट कीजिए. इट्स कमिंग टू एन एंड दिस वीक और इसके बाद नो मोर रोवा पर चैनल खेलना, जिसका मतलब है नो मोर इनाम जीतने का मौका. सो फटाफट आप अभी रोवा विजिट कीजिए hum.rova.nz, या फिर अगर आपके पास रोवा ऐप है तो आप ऐप का इस्तेमाल कीजिए और वहां पर जाकर आप चैनल खेलिए. ये एक कीवी विजिट वर्ड गेम है जहाँ पर बेसिकली कुछ कीवी सेइंग्स फ्रेजेस या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स या स्लैंग्स आपसे पूछे जाएंगे या फिर आपके लिए पोस्ट किए जाएंगे जिनका आपको मतलब बताना है. एंड इफ यू क्रैक दैट वर्ड एंड गिव द करेक्ट आंसर स्ट्रेट आफ्टर सीइंग द वर्ड और द फ्रेज ओवर द सेइंग और बिना किसी हिंट का इस्तेमाल किए अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और बोनस पॉइंट्स का मतलब ज्यादा जीतने के चांसेस.
16: तो बस चार ही दिन और रोवर पर चैनल खेलने का मौका. ये बहुत ही फन कंपटीशन है, साथ में हमें सीखने को भी मिलता है और एट द सेम टाइम पैसे भी जीत सकते हैं. तो चैनल खेलना मत भूलेगा आज, क्योंकि चार ही दिन बाकी रह गए हैं. कुछ देर बाद आज जो खबर है, क्या बकते हो जब आप सुनेंगे आप सोचेंगे भाई वाकई ऐसा होता है या ऐसा है, तो इसके बारे में हम बातें करेंगे थोड़ी देर बाद.

0: क्योंकि कल हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का ग्रैंड ड्रो ये होगा और पता चलेगा कि आप में से वो कौन है जिनको मिलेगा ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी। तो इसका इंतजार आपको करना है। फिलहाल आज क्या बकते है क्या बकते हो में फील्ड म्यूजियम की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था आई थिंक यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे, जहां पर सेन टाइगर शार्क्स इनके बारे में कुछ जानकारियां जो है ये दी गई हैं। एंड एज यू नो आपको तो पता है कि आई लव वाचिंग यू नो
1: डॉक्यूमेंट्री सीरीज एनिमल रिलेटेड
0: एनिमल और नेचर से रिलेटेड चीजें जो है आई लव रीडिंग एंड वाचिंग। तो ये जब थोड़ा सा आई डोंट नो इसका जो हेडलाइन था ये कैची था तो मैंने सोचा ये पढ़ूं मैं कि क्या है, और पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि जो सेन टाइगर शार्क्स हैं उनके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है।
1: वो कैसे?
0: इवन बिफोर दे आर बोर्न, जब वो वूम में रहते हैं गर्भ में रहते हैं जो सिबलिंग्स है दे बैटल इट आउट काटते हैं एक दूसरे को अंटिल ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव।
1: That is kind of sad actually.
0: हाँ, और फील्ड म्यूजियम के साइंटिस्ट डॉक्टर केविन फेल्डहम उन्होंने एक रिसर्च को लीड किया था और उनके कोलेबरेटर्स ने रिवील किया एक बहुत ही अलग सी कहानी सेन टाइगर रिप्रोडक्शन की। द एम्ब्रियोज ऑफ सेन टाइगर्स फीड नॉट ओनली ऑन वन अनादर बट ऑल्सो ऑन एनी अनफर्टिलाइज एग्स इन साइड द मदर। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है इट एंश्योर्स दैट द विनिंग जो कॉम्बेटेंट जो विनिंग क्या बोलते हैं टाइगर शार्क है सेन टाइगर शार्क है इस बोन टिपिकली मेजरिंग अराउंड 3 feet लॉन्ग विद वेल डेवलप्ड आईज एंड टीथ।
1: ओके,
0: जब इनका जन्म होता है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो
1: आप थोड़ा शॉक्ड हो गए।
0: हाँ,
1: सुनने में है ही कितना शॉकिंग। इमेजिन कि जन्म से पहले ही कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड उससे पहले से ही आपको फाइट करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। इट इज समथिंग दैट इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग जानवर जो है उनके लाइफ की शुरुआत जो है किस बुनियाद पे होती है। एंड इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट एन ईजी सेव, या फिर हर किसी के लिए उतना आसान नहीं होता है कि यू नो कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड इज एज ईजी एज जस्ट द मम्स गिविंग बर्थ। आई मीन दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी हार्ड थिंग टू डू, बट ऑन द अदर हैंड कई बार अपने सर्वाइवल के लिए खुद फाइट भी करना पड़ता है ना।
0: एग्जैक्टली। तो फील्ड म्यूजियम की ये रिपोर्ट आज क्या बकते हो।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो आज चलिए जानते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है. बट बिफोर वी इवन स्टार्ट लेटिंग यू ऑल नाउ, अगर आपके पास कुछ ऐसी खबर है दैट इज हैपनिंग फॉर अवर कम्युनिटी, इन अवर कम्युनिटी, जहां पर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों तक इसकी खबर पहुंचे, तो आप जरूर हमारे पास अपने इवेंट रिलेटेड डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं ऑन 5599 और हम इसे आपके लिए हमारे कम्युनिटी न्यूज में जरूर लेकर आएंगे. सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. सबसे पहले तो वाइव मिक्स इवेंट्स आपके लिए द ग्रैंड मस्ती नाइट लेकर आ रहे हैं, विच इज हैपनिंग दिस सैटरडे ऑन द 23rd ऑफ मे, नेटबॉल हॉल मनुरेवा. आप यहां पहुंच सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए. और यहां पर फिजी से जाने माने जो रेडियो पर्सनैलिटीज है, सत्यानंद यानी SN एंड जय भैया जी, ये तो आ ही रहे हैं, बट ऑन स्टेज इनके साथ राउडी नमन ये भी परफॉर्म करने वाले हैं. द डेंसिंग लेजेंड चर्फर पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड, आफ्टर 17 ईयर्स स्टेज पर इनका परफॉर्मेंस रहेगा. एंड अगर आप यू नो वेल अवेयर हैं ऑफ दिस डोर, ढेर सारी जो मस्ती मजा जो है ये होता है व्हेन SN एंड जय भैया जी जो है एक साथ जुड़ते हैं, तो ये सब कुछ आपको स्टेज पर देखने को मिलेगा. देयर विल बी लॉट्स ऑफ कॉमेडी, देयर विल बी लॉट्स ऑफ डांस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैडनेस जो आप इंजॉय कर सकेंगे. बाय द वे, ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा जो मेल एंड फीमेल दोनों आवाजों में गा सकते हैं, ये भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं अलोंग विद अमेजिंग डांसर मोंटो मोनिका. युवा डांस ग्रुप का भी परफॉर्मेंस रहेगा. टॉप डीजेस आर डेफिनेटली डूइंग सम लाइव डीजे सेशंस एज वेल. बट हमारे अपने केतन ये भी यहाँ पर आपके लिए कुछ खूबसूरत गाने लेकर आने वाले हैं अपने अंदाज में. सो अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेज, अ लॉट ऑफ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट आपके लिए तो रहने ही वाला है ग्रैंड मस्ती नाइट में. बट उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज भी भर भर के हैं इनाम जीतने के लिए. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ओर से वाउचर्स आप जीत सकते हैं, रॉयल गोल्ड की ओर से हैम्पर पैक्स और ग्रीन हॉर्न की ओर से गिफ्ट हैम्पर्स, साथ में विकेट चिकन बोटनी डांस ब्रांच की ओर से आप फूड वाउचर्स जो है ड्यूरिंग द शो ये भी जीत सकते हैं. पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री एट नेटबॉल हॉल मनुरेवा, जहां पर आप जाकर इसका हिस्सा बन सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड टिकट्स जो है ये अब लिमिटेड टिकट्स ही बाकी हैं जो आप ग्रैब कर सकते हैं फ्रॉम हंटर्स फूड टाउन इन पापाटोयटोय एंड ग्रेश गेट फ्रेश सुपरमार्केट इन मैंगरी.
3: और आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है उसे आप हमारे पास भेज सकते हैं buzz@humfm.com पर.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: ये एक बहुत ही कमाल की चीज मैंने पढ़ी, तो सोचा आज क्यों ना इसके बारे में आपसे हम बातें जो है ये करें, और लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद अस ऑन दिस. एक नई स्टडी में ये बात पता चली है कि जो वर्कर्स हैं, दे शुड एक्चुअली टेक अ वेकेशन एवरी 2 months टू प्रॉपरली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस एंड अवॉइड बर्नआउट. नई फाइंडिंग्स में ये बात पता चली जिसे पब्लिश किया गया है इन द 2025 रिसर्च पेपर मैक्सिमाइजिंग रिकवरी और द सुपीरियरिटी ऑफ फ्रीक्वेंट वेकेशन. इसमें ये बात सामने आई है, जो रिसर्चर है सेल्वराज गिरिधरन, इन्होंने कहा है कि दैट शॉर्ट फ्रीक्वेंट गेटअवेज मे एक्चुअली बी मोर इफेक्टिव देन सेविंग ऑल योर टाइम फॉर द लॉन्ग फॉर दैट वन लॉन्ग एनुअल ट्रिप. क्योंकि स्टडी में ये बात सामने आई है दैट रेगुलर ब्रेक्स हेल्प पीपल मेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, रिचार्ज फास्टर एंड मेंटेन बेटर इमोशनल वेलबींग ओवर टाइम. ये बात भी पता चली है कि जो बेनिफिट्स है इसके ऑफ अ वेकेशन, ये फेड अवे हो सकते हैं विद इन वीक्स ऑफ रिटर्निंग टू वर्क. इसलिए शायद कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार अभी छुट्टी पर गए थे लेकिन फिर जाने का दिल कर रहा है, बिकॉज बहुत जल्दी इसके बेनिफिट्स जो है ये फेड अवे हो जाते हैं. मीनिंग रेगुलर ब्रेक्स जो होते हैं could be key to protecting both productivity and mental health. Now, कल ही इसके बारे में आई थिंक मैं और सैंडी बैठ कर बातें कर रहे थे कि सैंडी ने बोला मुझे छुट्टी पे जाना है, मैंने बोला मुझे भी जाना है, बहुत दिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़े दिन हुए छुट्टी पे जाए. सो इफ यू आर इन द सेम बोट फीलिंग द सेम वे ना यू अंडरस्टैंड वाई.
3: हाँ, बट आई फुली अग्री विद जो भी रिसर्च सेल्वराजन जी ने किया है. द ओनली थिंग इज आई विल सपोर्ट हिज रिसर्च इफ ही इज रेडी टू फंड द वेकेशन.
2: वो बात अलग है, शॉर्ट ब्रेक्स लेने को तो कोई भी कितने भी ले ले, बट बट पैसे कहाँ से आएंगे इन शॉर्ट ब्रेक्स को, यू नो, फंड
3: कैसे करेंगे भाई. अभी तो लोग जहां तक हो सके अपना व्हीकल कम से कम ऑफिस तक ले करते हैं.
2: अरे बट ये एक चीज है, ये फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं ये बोला जा रहा है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज वो दिख रहा है, उसका असर पड़ रहा है लोगों पर. बट स्टिल यार, देयर सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड इन ऑकलैंड, इतने सारे लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं,
3: अरे भाई जाना तो पड़ेगा. दैनिक जिंदगी, डेली लाइफ जो है सभी की चल रही है, चलानी पड़ेगी. वी डोंट हैव अ चॉइस
2: जब तक वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी ना हो जाए.
3: वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर पाएंगे ना, अब कुरियर वाले कैसे घर से काम करेंगे,
2: वही तो
3: ट्रक ड्राइवर्स कैसे घर से काम करेंगे.
2: जब एक सिचुएशन था जहां पर कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था, तो सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स को अलाउ किया गया था कम्यूट करने के लिए, काम पर जाने के लिए, बाकी सभी को बताया गया था वर्क फ्रॉम होम. सो आई डोंट नो इफ दैट इज समथिंग जो शायद फ्यूचर में हो सकता है या नहीं, डिपेंडिंग कि क्या करंट सिचुएशन क्या है. लास्ट आई रिमेम्बर हमें पता चला था हम अराउंड 40 डेज और समथिंग के फ्यूल हमारे पास था, अभी क्या सिचुएशन है, नहीं आइडिया.
3: अभी तो पता नहीं क्योंकि यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है.
2: यार, that's not what I meant.
3: I don't Anyways, know. पता लगा कर रहा है, बताएंगे. और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके बारे में बातें थोड़ी देर में होंगी.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: पूजा। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
6: In this final hour, when lives hang in the balance, will you answer NZ Blood's call?
7: Are there biscuits?
6: Of course.
8: Join forces and save lives. Plasma donations help create up to 11 life-saving products. nzblood.co.nz.
9: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
10: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: What's going on?
13: सबसे पहले तो आपको बताएं कि अगर आपने मिस आउट कर दिया यू कुडंट प्ले पावर बॉल यस्टरडे, तो आज आपके लिए अच्छी खबर है कि कोई और जीता नहीं है।
14: अच्छा, मतलब 18 मिलियन के 20 मिलियन हो चुके अभी?
13: अभी 18 मिलियन के हो चुके हैं, हाँ 20 मिलियन आई थिंक हो जाएंगे ना। 13 प्लेयर्स जो है इन्होंने लोटो सेकंड डिवीजन जीता विद ईच टेकिंग $21,730, और उसके बाद वन लकी प्लेयर आल्सो वन पावरबॉल सेकंड डिवीजन, और उनका जो टोटल टेकिंग्स है वेंट टू $41,115। तो जो पावरबॉल है वाज नॉट स्ट्रक यस्टरडे।
14: Okay, there you go. तो आप भी अपना लक आजमा सकते हैं for this Saturday. On the other hand, कल ये खबर आई जहां पर ऑकलैंड के एक शख्स जो है या काफी शॉक हो गए जब ऑकलैंड एयरपोर्ट पर मौजूद एक पार्किंग मशीन ने उनको for 15 minutes of parking $4,000 से भी ज्यादा चार्ज किया। इनका नाम कुशमा नायर बताया गया है, एंड ही हैड पार्क्ड इन द इंटरनेशनल टर्मिनल शॉर्ट टर्म कार पार्क ऑन मंडे, और जब वो पे करने गए टू द मशीन इट शोड अप $4,059 for 15 minutes instead of the normal fee. उन्होंने बटन प्रेस किया हेल्प के लिए एंड कॉन्टेक्टेड द कस्टमर सर्विस। एयरपोर्ट जो स्टाफ है लेटर, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि देयर वाज अ सिस्टम एरर जो हुआ था लिंक टू एन अर्लियर पार्किंग विजिट फ्रॉम मार्च, जिसकी वजह से सिस्टम ने गलती से ये सोचा कि उनका ओल्ड विजिट है, हैड नेवर एंडेड एंड कम्बाइंड बोथ विजिट्स इनटू वन वेरी लॉन्ग पार्किंग स्टे, जिसके बाद चलकर उनका जो पार्किंग फी है $4,059 का हुआ। After fixing the issue, staff ने उनको charge किया the correct amount, which was $12.50. कुशमा नायर ने ये कहा कि इनका ये experience was strange and made him wonder कि क्या बाकी लोग भी ऐसा कुछ कभी फेस करते हैं या कभी उनको ओवरचार्ज किया गया हो, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया हो। ऑकलैंड एयरपोर्ट ने इस मामले में अपोलोजाइज तो किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्यों अर्लियर पार्किंग रिकॉर्ड को प्रॉपरली क्लियर नहीं किया गया था फ्रॉम द सिस्टम। और इन द एंड कुशमा नायर ने ये कहा, ही वॉज रिलीव्ड ही डिड नॉट actually have to pay $4,000 से भी ज्यादा।
13: और चीज़ बाय द वे, फंगनुई के एक प्लेयर ने कल जो स्ट्राइक मस्ट विन $1.5 million जो है ये जीते हैं, एंड क्राइस्टचर्च इज नाउ अलॉट मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि एयर न्यूजीलैंड ने अपने कुछ इंटरनेशनल

0: एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 10:04 होने वाले हैं और आपका साथ निभाने के लिए मैं कशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज में। 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। अब एक थैंक यू टू नन अदर देन कशिश फूड्स, जिनकी ओर से ये आपके लिए जो प्रयत्न होता है अपना और मेरा आपका टाइम मिलाकर, माय टाइम बनाकर, थैंक यू सो मच कशिश फूड्स, जो आपके लिए ग्रोसरी का सेकंड नेम बन चुके हैं। वैसे कहते हैं ना, सर्द रातें बढ़ा देती हैं, सूखे पत्तों की भी कीमत बढ़ा देती हैं, और वक्त वक्त की बात है, समय सबका आता है। तो देखिए, वो जो पत्ते जो सूखे होते हैं, वैसे तो हम इनकी इनके बारे में बॉदर नहीं करते, लेकिन ये जो सर्दी की जो रातें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। उसी तरह से सूखे पत्ते जब गिरते हैं, और जब वो गिर के ज़मीन पर यहाँ गिरते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। तो हर किसी का समय आता है, हर किसी का वक्त आता है, और अगर आपका वक्त अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये वक्त बहुत जल्द आपका आएगा। बस आप डटे रहिए, बने रहिए, अपना काम सीधे सीधे करते चले जाइए, ना लेफ्ट देखें ना राइट देखें, बस अपना फोकस सही सही रखें बस। और आप देखेंगे कि अपने फोकस में आपने अपने टाइम निकाला कि नहीं निकाला, आपने हर एक चीज़ को किस तरह से इवैल्यूएट करके यू नो सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, दैट इज़ अ बिग थिंग। सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियोज में 12 बजे तक होने वाली हूँ। चलिए, ये तो मेरी बातचीत आपके साथ होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफिस शाउट आउट देने वाली हूँ, आपको याद दिलाने वाली हूँ चर्डल के बारे में। बस कुछ ही दिन बचे हैं और कम्युनिटी में क्या हो रहा है, 6-word story है, कोई ड्रीम आपको लगता है कि अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई, बजाओ क्या,
1: बजाओ क्या,
2: अला रे अला सिंबा अला।

0: excuse me to please.
1: Experts Adda.
2: You know, हमारी नानी दादी कहती थी कि आप केसर वाला दूध पिया करो. And you know, used to think, अरे क्या बोलती रहती है हमेशा यार, ये क्या है. बट एक बात बोलूं, ये एक सेलिब्रिटी का वेलनेस रूटीन बन जाता है और अभी के लिए इट बिकम सो वायरल कि लोग कहते हैं इनसाइड आउट ग्लो अगर आपको करना है और ये इसका नेचुरल कंजम्पशन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है. अब दिस हैज़ डीप रूट्स ऑफ आयुर्वेदा इट्सेल्फ और कॉमनली हम इसे पिक भी कर लेते हैं. मतलब साल दर साल हम लोग ये नोट करते हैं कि हमें हमारी स्किन का नरिशमेंट, हमारे रेडियंस, हमारा ग्लो जो है वो किस तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा. और केसर ऑफकोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कैसे काम करता है. अब जब केसर जो है इट कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और जब दूध के साथ इसको लेते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, हेल्थी सपोर्ट आपको दे देते हैं. एक मिरेकल सॉल्यूशन बन जाता है फॉर अ वेरी क्लियर स्किन. इसी के साथ साथ ये अकेला आपके लिए आपकी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स रातों रात ठीक करने में हेल्प कर सकता है. आपकी डाइट, आपका स्लीप, आपका डिहाइड्रेशन जो है उसको भी कंट्रोल कर सकता है. चलो ये जो दूध है आपको मैं बता सकती हूँ इसका रिचुअल कैसे आपके लिए अच्छा रहता है. हमेशा 2 या 3 स्ट्रैंड्स आपने केसर के लेनी है, इनको गर्म पानी में सोक करना है फॉर अ फ्यू मिनट्स जस्ट बिफोर कंज्यूमिंग इट. और उसके बाद कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा उबालिए मत, जैसे हम खीर में भी डालते हैं एंड में डालते हैं, उसको साथ साथ उबालते नहीं हैं क्योंकि हीट जो है इसके एक्टिव कंपाउंड्स को कम करना शुरू कर देती है. टुडे वी अंडरस्टैंड वॉट आर मदर यूज टू से कि भाई बाद में डालना केसर. क्यों बोलती है बाद में डालना केसर, कितने सारे लॉजिक्स इन चीज़ों के पीछे हमें मिल रहे हैं. एंड ख़ासतौर पर अब जब हमें ये स्टडीज़ के जरिए पता चलता है तो इट बिकम्स समथिंग. लेट्स सी यू नो इसका किस तरह से आप कंज्यूम करते हैं. अगर आपको कोई लैक्टोस की इंटॉलरेंट है या कुछ है तो डेफिनेटली यू टू गिव दिस अ वेरी बिग थाट. लेकिन एक कप जो है आप पी ही सकते हैं मुझे लगता है. आपकी स्किन के लिए सैफ्रन कितना इंपॉर्टेंट है. मे बेसिकली इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेट स्ट्रेस आपकी बॉडी के ये अच्छी तरह से रिड्यूस करता है और साथ साथ आपका कम्प्लेक्शन जो है हेल्थी लगने लगता है. आपके स्किन के बैरियर्स को रिमूव करता है और साथ साथ अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन है उसको भी आपको ग्रेजुअली चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है. डोंट थिंक इट कैन हैपन मैजिकली ओवरनाइट बट इट विल टेक डेफिनेटली सम टाइम. लेकिन एक ये मॉडर्न ब्यूटी का ऑब्सेशन बन चुका है अब और वायरल भी हो चुका है ये ट्रेडिशनल देसी ड्रिंक जो है एक आज की इस ऑडियंस में, आज की सेंचुरी में, मिलेनियल टू जेंजी मैं कह सकती हूँ इसे अगर कंज्यूम करना शुरू कर दें तो देखिए भाई आपकी भी स्किन और आपके जो हमारी दादी नानी कहा करती थी वैसी ही रहेगी. तो भाई ऑफिस शाउट आउट आ रहा है 0800 00, हम सॉरी आई मिस्ड कॉल, आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ 5599 पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं.
1: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं.
4: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
6: Atakia, turn clutter. Into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
7: IKEA.
8: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
9: It's the end of the day after walking a track.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.

0: सो मैंने कहा उसे आरजे आप रियलिटी आप सुन रहे हैं समय मुझे, एंड अ वेरी वेरी बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि आप जब ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि अरे वाह आज आपकी तरफ से ऑफिस शाउट आउट आ चुका है मेरे पास, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा यहाँ शाउट ऑफिस शाउट आउट की तो मैंने बात कर दी है, लेकिन मुझे आपको एक शाउट आउट देना है जितने लोगों ने अभी तक कीवी वर्ड विजर्ड में खेले हैं और इनाम जीते हैं, $100 कैश जीते हैं, तो भाई बिग थैंक यू टू यू। अब आप सबके लिए एक और चीज़ जो होने वाली है, एवरी डे यू प्ले आपका नाम ड्रॉ में चला जाता है $100 जीतने के लिए, ठीक है। आप आंसर जल्दी कीजिए टू गेट अ बोनस एंट्री। अब $7,000 में से हमने काफ़ी हद तक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन अगर आपको कोई कीवी का वर्ड सेइंग या फ्रेज लगता है पता है तो हमारे आप विन कैश विद चोडल में ज़रूर जाएं। अब यहाँ कैसे पहुँचेंगे, रोवा ऐप के ज़रिए आपको पहुँचना है। सो रोवा ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका खोइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी बहुत मुश्किल से आती हैं जहाँ आपको लगता है $100, अरे खाली एक चीज़ बोलने के लिए हमें $100 मतलब अपने क्रैक कर लिए सपोज करो ये पजल, तो आप समझ लो आप $100 जीत गए। गो गो गो क्विकली एंड लेट्स सी इफ यू डू इट।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ईट बेटर लिव बेटर. और एक चीज़ तो खास तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टाउन हाउसेज ये अपने प्राइस से 20% कम में बिक रहे हैं. इससे एक्चुअली और भी प्राइस तो अभी पिछले महीने हफ्ते की बात है कि लगभग 11 हाउसेज जो थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में इन्होंने चेंज किया, जहाँ पे यू नो लगभग उन अपार्टमेंट्स उन घरों की जो मैं बात कर रही हूँ उनमें आते अपार्टमेंट्स टाउन हाउसेज वो 18% अपने मार्केट प्राइस से कम में बिके हैं. सेंट एंड्रयूज रोड की मैं बात करती हूँ ऑकलैंड में, जहाँ पे लोगों ने घर खरीदा 2.5 मिलियन में 1.99 मिलियन में 2022 में और फिर उसको रीसेल किया इन मार्च फॉर 1.55 और 1.65. इस तरह से क्या हुआ कि लगभग 50,000 के आसपास का एक डिफरेंस आ गया. बट ये एक ट्रेंड ऐसा है जहाँ पे टाउन हाउसेस स्टॉक में हैं और लगभग 12% लिस्टिंग जो है ये इन घरों की है. घर जो है नॉर्मली जिनका स्टॉक है 74% बताया जा रहा है और लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज 9% पर हैं. ऑकलैंड के रियल इस्टेट की जब मैं बात करती हूँ तो टाउन हाउस का जो मार्केट है इट्स अ वेरी सॉफ्ट पार्ट इन ऑकलैंड रियल इस्टेट सेक्टर और अभी के लिए अच्छा मूव नहीं कर रहा. अपार्टमेंट्स प्रॉबेबली वुड डू लिटिल बेटर बट तेरा बायर्स जो अभी भी इंटरेस्टेड हैं और वो कॉन्शियस हैं अबाउट द चॉइस अबाउट द प्रेजेंटेशन अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू डू. ठीक है चलो ये यहाँ तक मैंने आपको अपडेट तो दे ही दिया है लेकिन अब सपनों की बात करते हैं, सपनों की दुनिया में चलते हैं. बताइए ऐसा कोई सपना जो आपको लगता है आपको परेशान कर चुका है और आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं. ड्रीम डायरी में थोड़ी देर में खोलने वाली हूँ.
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या
4: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
1: वीकडेज 6 to 10 AM.
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
7: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
8: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
9: The long weekend is almost here and you may plan to go on a road trip. Make sure your car is geared up for it. Get it checked at Midas. We've been keeping cars road safe since 1988. For peace of mind motoring, midasnz.co.nz.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: So, Dream Diary में I was just laughing away of your fair and उन्होंने कहा मुझे खानों के सपने आते हैं. आप खाना खाने के सपने आते हैं कि क्या खाने के, कौन सा फूड है जो उसको आपको सपने आते हैं? अब बेसिकली what happens, I'll be honest, इट डिडन्ट गिव मी सो मच टाइम टू प्रेप फॉर इट. बट आपने जैसे ही बोला मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपका खाने का एक्सपीरियंस होता है आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस या एनर्जी जो आपकी लाइफ में चल रहा है. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको इफेक्ट करने लग जाती हैं. हर फूड का अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ एक यूनिक एनर्जी होती है, एक यूनिक फीलिंग होती है. आपका ओपिनियन क्या होता है? कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आपको सिम्बलाइज करते हैं, जैसे कि यू नो हेल्थी खाना, एप्पल खा लिया, ओटमील ले लिया, या फिर जंक फूड. अब ये आपने मुझे क्लियर नहीं बताया कि आपको क्या सपने में आया था. अगर आप मुझे टेक्स्ट कर सकें इट विल बी रियली नाइस. आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन पुल इट आउट, क्योंकि मेरे पास कुछ और चीज़ें आ चुकी हैं जो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँ. बट आई पर्सनली फील कि अगर आपने मुझे कॉल किया है, आपने मुझे बताया है, तो ये ज़रूर बताइए कि आपको सपने में क्या आया है. अगर आप ये मुझे बता देंगे तो आई प्रोबेबली बी एबल टू हेल्प यू आउट विद दिस एंड डेफिनेटली आई can come up with something interesting. Okay, so I will wait for your reply to come in. कि क्या है आपके लिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है. तो आपका टेक्स्ट आ गया मेरे पास, आपने कहा ब्रेड. अच्छा, अब ब्रेड अगर आपके सपने में आई है तो ओके, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन बी ब्रेड. सो बेसिकली इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे आप यू नो अपने बारे में सोचिए. आप एक बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल पर्सन है और आपकी लाइफ में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं. आपका इमोशनल वेलबींग या फिर एक सिंपल इनकम जो है वो आपको लगता है अभी काफ़ी नहीं पड़ रही. लेट्स सी हाउ इट रिलेट्स टू यू. बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना आपकी नीड्स के लिए, तो प्रॉबेबली जो वो ब्रेड है बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एक ऐसी चीज़ है जो आप सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली उस किसी सिचुएशन में एक नेसेसिटी बना लेते हैं. तो ये एक नेसेसिटी जो है आपके लिए ब्रेड है. अब ये ब्रेड आपका बेसिक प्रोविजन हो गया घर के अंदर. हो सकता है कि आपकी कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक हैं और दिस इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज देम आउट. भाई कुछ भी हो सकता है इन सब चीज़ों में से. बट अगर वी टॉक अबाउट के दैट इज़ पॉजिटिव साइड, अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ दे समथिंग विच इज़ लैकिंग इन योर थिंग इन योर डे टू डे लाइफ. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतमंद की पूरी नहीं हुई हैं, थोड़ी शायद हार्डशिप आपकी चल रही है. तो इट्स टाइम टू एड्रेस, गेट ऑन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम और समझने के लिए कि क्या है. ओके, हो सकता है आपको पैसों की भी ज़रूरत हो और आप बेसिक्स पर हैं जैसे कि ब्रेड, तो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट. डेफिनेटली कोशिश कीजिए. यू नो इट्स समथिंग लाइक एक किसी ने ड्रीम किया कि ब्रेड, आपने ब्रेड का लोफ ब्रेड आपने सोचा और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी में आप जाते हैं कहीं पे जाके किसी साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं मुझे इस तरह की ड्रीम्स आ रही हैं. बेसिकली यू आर रिफ्लेक्टिंग योर ड्रीम्स और आपके कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह पे भी असर कर सकता है. बट इट्स जस्ट अ ब्रेड, कम ऑन, लेट्स नॉट गेट टू डीप इन टू इट. क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ इंटरनल स्टडी. वो इंटरनल स्टडी में ये सब चीज़ें तो नहीं, बट हाँ अगर पर्सनली बैठेंगे तो बातचीत जरूर हो सकती है.
1: दिल

मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो फिल्म का इनिशियल नाम था एक अनाड़ी एक खिलाड़ी, और ये फिल्म एक्चुअली देखा जाए तो मैसिव हिट रही थी ये फिल्म, और 1994 की कि ऐसी फिल्म कहा जाता था कि अरे भाई इसके गाने, इसकी कॉमेडी, एवरीथिंग अबाउट द मूवी वॉज रियली रियली गुड। एंड ख़ास तौर पे मैं इस गाने से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि ये जो गाना मैंने एक्चुअली जब मैं आइफा के लिए न्यूयॉर्क गई थी जब हमको कवर करने के लिए हमके साथ, तो वहाँ पर शिल्पा शेट्टी और उनकी उनके हस्बैंड यहाँ पर आए, तो मैंने उनके हस्बैंड, मैं उनका नाम ही भूल रही हूँ उस टाइम पे, उनके हस्बैंड को मैंने पूछा, मैंने कहा एक ऐसा गाना जो आप शिल्पा जी के लिए गाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ, और ये वो गाना था जो पर्टिकुलरली उन्होंने गाया। और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ एक्शन किया तो शिल्पा शेट्टी ने उनको ज्वाइन किया और दोनों ने मिलकर इस गाने पे हल्का सा ग्रीन कारपेट, ग्रेट कारपेट जो होता है उस पर उन्होंने एक हल्का सा मूवमेंट कर दिया, एंड आई वॉज लाइक वाओ समथिंग सो गुड। उस समय उनके दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि हाँ पहले शिल्पा शेट्टी जी अक्षय कुमार के साथ हैं या कुछ, नहीं नहीं, दिस इज फिल्म इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज़ quite, you know, in media they say you have to be very thick-skinned, and that's so true. तो भाई गाना कौन सा था अल्टीमेटली मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस गाने के ऊपर, जिस गाने के लिए उनके हस्बैंड ने, शिल्पा शेट्टी के ने, उन्होंने गाया और वो भी उन्होंने हम सब मीडिया वालों के सामने गाया, कौन सा गाना है?

मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Google PFSL today and

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 19 overnight, temperature of 11. आज का forecast बताया जा रहा है mainly a fine day. फांगापुरा की तरफ शायद बारिश पड़ सकती है. नॉर्थ ईस्ट की हवाओं के साथ साथ इस समय आप 18 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. सनसेट 5:19 पर.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है.
2: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:03 हो रहे हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका अभी भी स्टूडियोज में जमी हुई हूँ. और बारिश तो नहीं है खैर, मगर ठंड में जमी हुई हूँ ये कह सकती हूँ. है ना, ठंड कैसे वियर्ड सी ठंड हो गई है, पता नहीं, आई डोंट नो. लेकिन कहते हैं ना कि ये जो ठंड की रातें होती है ना, जब वो बढ़ने लग जाती हैं तो हमारे जो घरों में पेड़ वेड़ लगे हैं, पत्ते वत्ते होते हैं, वो सब सूखने लग जाते हैं. लेकिन उन सूखे पत्तों की कीमत हमें सिर्फ तभी पता चलती है जब ठंड पड़ने लग जाती है और ये पत्ते सूख के गिरने लग जाते हैं. और उसकी खूबसूरती है, उन रंग जो बदलते हैं उनकी खूबसूरती कितनी प्यारी. और न्यूजीलैंड, वी आर सो लकी टू हैव सच अ ब्यूटीफुल थिंग. लेकिन वक्त वक्त की बात है, वो पत्ते जिनको हम कभी शायद पूछे नहीं हैं, उन पत्तों को हम कितने प्यार से एक तरफ लगा देते हैं, साइड में डाल देते हैं, कभी कहीं ना कहीं उसको रिसाइकल कर देते हैं. तो रिसाइकल में, रीयूज में आज पत्तों के बारे में बातें करते हैं, ठीक है. और ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सिक्स वर्ड स्टोरी. अगर आपके पास कोई सिक्स वर्ड स्टोरी है 5599 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं. भाई मुझे एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है. गुड न्यूज़ ये है कि आप रोवा ऐप के जरिए मुझे सुन रहे हैं. चोडल आप विन कैश विद चोडल आप खेल रहे हैं, बस लास्ट फ्यू डेज है तो आप पूरा लक ट्राई कर सकते हैं. तो रुआ पर आप हैं तो आपको पता है, आप हमारे हमको जब सुनते हैं तो नीचे म्यूजिक स्टेशंस आते हैं. तो हम रिवाइंड इज नंबर 1 रोवाज म्यूजिक स्टेशन, जहां पे आपको 60s और 70s के वो ब्यूटीफुल ट्रैक्स सुनने को मिलते हैं. 80s का जूक बॉक्स जहाँ नॉन स्टॉप 80s के ट्रैक्स भी आप सुनते हैं. इसके अलावा फिजी भजन, चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह, राहत फतेह अली खान जी के अमेजिंग ट्रैक्स, उनकी सूफी, उनकी कवालियाँ, उन म्यूजिक स्टेशन उनका बना हुआ है. इससे याद आया कि इनसे रिलेटेड एक कॉन्टेस्ट जो है, इसके बारे में भी मैं बातचीत करने वाली हूँ. स्टे ट्यून, कीप हमिंग विद मी काशिका. माय टाइम कशिश फूड की ओर से आपके लेकर आ जाती हूँ. बजाओ क्या, चलो सुनते हैं.
0: बजाओ क्या,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग एनजेड म्यूजिक मंथ
3: बैक योर बैकयार्ड बीट्स.
4: तो जब मैं पैक योर बैक यार्ड बीट्स की बात करती हूँ तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं. बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. एक इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपका हमें मिल जाता है. और जब हम बात करते हैं आज के कलाकार की, इनका नाम है अक्षत महाजन. और अक्षत महाजन, आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं. आप स्टोरी टेलिंग करते हैं थ्रू योर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. तो एक प्यारा सा गाना आपका हम सुनने जा रहे हैं. लेकिन बता सकती हूँ, अगर अक्षत को आप चाहते हैं टॉप थ्री में तो MM लिखे 5599 पे और अपना वोट दें. और साथ साथ अक्षत, अगर हम आपके रेडियो वोट से आपका सोशल लव अगर हम देखते हैं कि लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं आपकी पोस्ट को, आपको सपोर्ट दे रहे हैं ऑल दीज थिंग्स आपकी वीडियो को, तो बहुत चीज़ें ऐसी होगी कि ये आपको उस टॉप थ्री में ले जाएगा. चलिए सुनते हैं अक्षत महाजन, ऑल द बेस्ट हमारे न्यूज़ के टैलेंट.

0: Nutritious foods. Eat better, live better.
1: एक चीज तो है, अगर हम अपने गार्डन की तरफ देखें तो हमारे घर के अंदर भी जो हम लोग इंडोर प्लांट्स रखते हैं उनके बारे में आपने कभी ध्यान से विमर्श किया है कि भाई एक हाउस प्लांट क्या वो एक एयर प्योरीफायर बन सकता है? एक स्टडी के जरिए पता चला कि यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली आर वेरी वेरी गुड. लेकिन एक चीज़ जो है कि इनके अंदर केमिकल जो हैं वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वो फिर इवेपोरेट करने लग जाते हैं आपके रूम टेम्परेचर में आके. तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक बन जाती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट. और ये प्रॉब्लम जो है दरअसल हमारे हाउस प्लांट्स जो होते हैं उनकी प्योरीफाइंग एबिलिटीज़ को लेके होता है, क्योंकि ये डेफिनेटली यू नो प्योरीफाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन आप भूलिए मत कि ये ब्रीद करते हैं. बिकॉज दे ब्रीद तो दे ब्रीद इन एंड दे ब्रीद आउट, राइट? तो जब वो ब्रीद इन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या अंदर जा रहा है, उनके आपके किचन के पास के जो प्लांट्स हैं उनका क्या हाल है. ऐसे कभी कभी होता है ना कि आपके जो पोल्यूशन आपके घर के अंदर जो होता है वो एक छोटा सा चेंबर होता है प्लांट्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता है, और फिर वो प्लांट के जो चेंबर्स होते हैं वहाँ पर वो ओवर टाइम काम करने लग जाते हैं, और फिर वो उसको क्या रिमूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, जो एक्सेस उनके पास आ जाता है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये एक्सचेंज जो एयर का होता है सॉरी ये जो गैप्स जो बढ़ने लग जाते हैं ये आपके वेंटिलेशन सिस्टम्स में आपकी वॉल्स के थ्रू जाने लग जाते हैं. वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल. तो लोगों ने क्या किया, इन्होंने कुछ प्लांट्स को जो घर में रखा है उनको एक पर्टिकुलर एरिया में रखा है जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ कुछ भी उनको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता. थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, थोड़ा सा यू नो वो चीज़ें हो रही, लेकिन गार्डन के पास किचन की खिड़कियों के पास हम लोग मोस्टली प्लांट्स लगा देते हैं. तो ऐसी चीज़ें वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि कभी कभी ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो लोगों के घर के वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू ये अपना एक पोल्यूशन लेवल जो है वो निकालने लग जाते हैं जो इनडोर्स वो डिपॉजिट कर लेते हैं. तो कुकिंग, क्लीनिंग, फर्निशिंग्स, कुछ भी हीटिंग, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना काफ़ी हद तक ये इन्हें अफेक्ट कर सकती हैं. फिर क्या होता है कि इससे एक घर के अंदर मोल्ड या जो लीक्स होती हैं उनके थ्रू मोल्ड वगैरह आना शुरू हो जाता है, और हम लोग कभी कभी कोई एरोसॉल स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, क्लीनर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट वी रियली डोंट नो कि ये कहाँ से आ रहे हैं. तो अपने घर का वेंटिलेशन डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना चाहिए. विंडोज़ को खोलिए ज़रूर, और किचन की खिड़की, बाथरूम का एग्जॉस्ट इन्हें डेफिनेटली ऑन कीजिए. किचन में जब आप खाना बना रहे हैं एग्जॉस्ट को ऑन करके ही बनाइए, क्योंकि गैस भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो एमिट करती हैं. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. हमारी हर रोज़ की जो कुकिंग होती है, हर रोज़ हम लोग जो क्लीनिंग कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ के थ्रू भी ये आ सकता है. सो इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग कि आपने जो प्लांट्स होता है उनको भी केयर बहुत ज़्यादा चाहिए. ओवर वाटर मत कीजिएगा. आपके जो पुअरली मेंटेन पॉट्स होते हैं जिसमें कभी कभी मॉइस्चर की प्रॉब्लम आ जाती है वो भी आपके लिए हैजर्ड बन सकती है. वो जो ग्रीनरी होती है इंडोर की, हैट्स ऑफ टू दोज प्लांट्स जो वो इस तरह से फिर भी उन सब चीज़ों के बावजूद भी वो मैनेज करते हैं. सो इसका मतलब क्या ये है कि हम इंडोर प्लांट्स नहीं रख सकते? ऑफ कोर्स रख सकते हैं. हमें अपनी घर की एयर जो है, इंटरनल एयर, उसको ज़रूर क्लियर रखना है. और साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि इट्स वेरी गुड फॉर द वेल बींग. अपने हाउस प्लांट्स आप रखते हैं, इनको इन्जॉय करते हैं, इंडोर की स्पेस जो होती है आप जब देखते हैं कितना काम सा एक इफ़ेक्ट आपका आने लग जाता है. घर में एक प्लेजेंटनेस आनी शुरू हो जाती है, एक वैल्यू जो है घर में, रौनक जो है वो बढ़ जाती है. You get money, get cash.
2: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हों या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हों, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ओकलैंड।
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
3: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरेट रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
6: When it comes to rewarding your team, Prezi makes it easy. Bulk orders, exclusive corporate discounts, and a gift everyone actually wants. Perfect for staff rewards, incentives, and saying thanks. Shop now at prezicard.co.nz.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
1: So, मेरी आज की six word story काफी अच्छी है. And जब मैं इन सब चीजों पे research करती हूँ, तो लगता है कि आज जो मेरे पास टकरा, वो मैंने अपना ही सोचा. ठीक है. मैंने सोचा इन टाइम माय टाइम विल कम. अब बताओ इसमें कितनी बड़ी गहरी बात है, इन टाइम माय टाइम विल कम. भाई आप लोगों ने अपने टाइम निकाले ही नहीं है, लेकिन मुझे एक सिक्स वर्ड स्टोरी मिल गई है कि समय तो आएगा ही ना जब अपने लिए अपना टाइम तो निकालोगे ही निकालोगे. सो इन टाइम माय टाइम विल कम. अभी मेरा टाइम तो आया है, अभी तो मेरा टाइम आप सुन ही रहे हैं 12 बजे तक. वैसे अपना मी टाइम जो है, हमारे मी टाइम को बहुत बहुत आप महत्व दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप अपना टाइम जब तक अपने लिए लेकर एक उसको रिचार्ज नहीं करेंगे ना, जैसे आप घर की फ़ोन की बैटरी रिचार्ज करते, ठीक उसी तरह अपने आप को भी रिचार्ज करना होता है. तो डेफिनेटली दैट इन टाइम माय टाइम विल कम. अब आप सोच लीजिए आपके लिए आने वाला सैटरडे संडे कैसा निकलने वाला है. आई एम श्योर आप अपना ज़रूर माय टाइम निकालेंगे. मेरा काम ही है कि मैं आपको मोटिवेट करूं. अच्छा, अब मैं मोटिवेट करूँ एक और चीज़ के लिए. ओके, तो 25th ऑफ जुलाई को लाइव होने वाला है ट्रस्ट अरेना पे कुछ ऐसा सोल स्टरिंग, ज़बरदस्त म्यूज़िक का एक ऐसी शाम जहां पर लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान आने वाले हैं आपके सामने परफॉर्म करने के लिए. वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस, आई कैन से एक रेयर एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है, जहां आप इनको रूबरू देखेंगे. इनके कमाल की परफॉर्मेंसेज, इनके कमाल की कॉन्सर्ट्स हमने देखी है, और कैसे ये बैठ कर नॉन स्टॉप गाया था लास्ट टाइम वॉज वाओ. तो वंस अगेन JK स्टार प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अलॉन्ग विद गोल्ड लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. इसकी टिकट्स आप dryticketsdotcom से खरीद सकते हैं. लेकिन अगर एक डबल पास जीतना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट में भाग ले लीजिए. एक हमने पोस्टर लगाया है अपने फेसबुक के पेज पर, जहां राहत फतेह अली खान जी का एक गाना रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू सम एमओजीज. क्या आप उसे गेस कर पा रहे हैं? अगर तो गेस कर पा रहे हैं, जल्दी जाइए अपना आंसर हमारे बिल्कुल उस पोस्ट के नीचे लिख डालिए।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सो मिड मॉर्निंग मजा में आपको मैं बताना चाहती हूँ हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। अब कम्युनिटी में जो होने वाला है परसों बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अभी ग्रैंड मस्ती नाइट वाइव मिक्स इवेंट्स आपके लिए लेकर आने वाली है। अब ये नेटबॉल मानो रीवा में होगा परसों, ओके, जिसमें आपके लिए रिनाउंड आरजेस फ्रॉम फीजी पहुंचने वाले हैं, जैसे कि एसएन, जय भैया जी, राउडी नमन और डांसिंग लेजेंड 17 सालों के बाद चारफार आ रहे हैं। 5 से 6 आपके लिए मसाला स्किट्स होने वाली है स्टेज पे, कॉमेडी डांस मस्ती मैडनेस बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, एक ऐसा बंदा है जो 2 तरह की आवाज़ें निकाल लेता है एंड वो मेल फीमेल वॉइस, मनी डिसूजा ये भी आ रहे हैं और मोंटो मोनिका को तो आप जानते ही जानते हैं। युवा डांस ग्रुप परफॉर्म भी करेंगे, टॉप डीजेस भी वहाँ पर होंगे। नाउ यू कैन इमेजिन ये वाकई क्यों इसका नाम ग्रैंड मस्ती नाइट रखा है, क्योंकि इतना कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है। और इसके साथ टू चेरी ऑन द टॉप कह सकते हैं वो है केतन हमारे जो वहाँ वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो साथ साथ आप परफॉर्मेंस देखिएगा, एंटरटेनमेंट, खाना पीना वहाँ पर आपको स्टॉल्स वॉल्स भी मिलेंगे और प्राइजेस जो हैं, अगर आप गिवअवेज जो हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के वाउचर्स, रॉयल गोल्ड के हैम्पर पैक्स, ग्रीन हॉर्न गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, विकेट चाइनी बॉटनी डाउन जो है आपको फूड वाउचर्स भी देने वाला है, फ्री पार्किंग सिक्योरिटी भी मिलने वाली है, डोंट वरी। और टिकट्स बहुत कम बची हैं, तो अगर आप टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो हंटर्स फूड टाउन पापा टोए आप पहुँच सकते हैं, नहीं तो गेट फ्रेश सुपर मार्केट मैंगरी भी आप जा सकते हैं।

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: You know, there's something jo main yahan aayi aur aake maine ek something which I really loved was the night market. Auckland ke night market jo hai kafi popular rahe hain and ek particular social media pe jo post aayi uske zariye pata chala ki night markets ke jo founder the inka naam tha Victoria and saath mein Paul, ye operators the of this market. Ye 16 saal se isko operate kar rahe the. Now this is being handed over to an experienced event management team. अब कहा यह जाता है कि पता नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है कि ये बिका या फिर एक अनदर एंटिटी जो है ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से मैनेज करने वाली है. सो शी सेड शी सोल्ड द बिजनेस टू समबडी कॉल्ड ओलिवर क्रोशे और इन्होंने पहले नाइट मार्केट में सप्लायर के तौर पे पावर इक्विपमेंट का काम किया था. तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए ये फेज़ जो है नया जो है इसमें लगता है ही कैन कैरी इट फॉरवर्ड. एंड शी सेड दैट दे आर ओवर 60 एंड दे फेल दैट नाउ somebody who they can trust, they should pass this on to. तो भाई definitely उनका experience ज़रूर काम आएगा, लेकिन ये night market हमारे लिए कमाल का रहा है. और सबसे पहला night market 2010 में पाकुरंगा में खुला था. It used to operate seven nights a week actually. और उसके बाद फिर different locations में Auckland और Hamilton में ये जाता गया. अब ये एक ऐसा market था जहाँ पर लोगों ने पिकअप करना शुरू किया चीज़ों को कि कहाँ से हम ये स्टॉल ये ऐड करें, ये करें, ये करें. और स्टॉल होल्डर्स ने फिर इन्हें बहुत बहुत प्यार दिया, ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा. लोगों को खाने पीने के स्टॉल्स अलग अलग मिलने लगे और फिर एक अच्छा रिलेशनशिप्स लोगों में डेवलप होने लगा कि यहाँ नाइट मार्केट है, चलो यहाँ चलते हैं. वहाँ आप क्या नाइट मार्केट में जाते हैं. ये कॉम्पिटिटिव होता चला जा रहा था क्योंकि फूड ट्रक बिजनेस बढ़ता चला जा रहा था, जहाँ कस्टमर्स जो थे कॉस्ट ऑफ लिविंग के प्रेशर्स की वजह से शायद थोड़ा कम खरीद रहे थे. बट कुछ लोकेशंस पर ये बिज़नेस डाउन हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ इट फूड ट्रैफिक तो रहा, भले ही लोगों ने शायद कुछ खरीदा या ना खरीदा हो. लेकिन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, हो सकता है जो नए ओनर्स जब आए हैं वो इसे और भी खूबसूरती के साथ कुछ और उसमें बदलाव लेकर आए और इसे आगे चलाएं.

क्यूमी रिसाइकिल में देखिए आज पेड़ पौधों की पत्तियों की बातें कर रहे हैं। तो मैंने प्रोग्राम की जब शुरुआत की थी इंडिकेट तो यही हुआ था कि ड्राई पत्तियां हमारे लिए किस तरह से काम आती हैं, किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। इन्हें गैदर कीजिए जब ये क्रिस्प है, ड्राई पत्तियों को अपने लॉन से या अपने वॉकवेज से, और उसके बाद इनको आपने लेके एक जगह कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इनको डेफिनेटली इनके साथ आप एक लॉन मोअर का मेथड है कि वो ड्राई लीव्स को लेते हैं फ्रॉम योर लॉन और फिर उनके ऊपर से एक मल्चिंग मोअर जो लेते हैं वो निकाल देते हैं, फिर इनको छोटे छोटे टाइनी पीसेस में डाल देते हैं, फिर इजी कलेक्शन रह जाता है। एक्चुअली इन्हें अगर आप किसी लार्ज प्लास्टिक बैग में रखते हैं रबिश बिन विद ड्राई लीव्स, तो फिर कभी कभी ये आपके लिए एक हेल्प ही कर देते हैं। कैसे कि आगे कवर आपने इलेक्ट्रिक लीफ ब्लोअर है आपके पास तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन श्रेडेड लीव्स को किस तरह से आप अपने सॉइल के साथ रिसाइकिल करें तो कुछ सॉइल सरफेस पे आप इसको छोटा छोटा काटने के बाद जब आपने काट दिया फिर आप वहाँ पर इसकी एक लेयर लगा सकते हैं, और फिर ट्रीज या श्रब्स अगर आपके वहाँ पर हैं उसमें भी ये आप उसके आसपास बिल्कुल लगा सकते हैं क्यारी में। और एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो आप लीफ का मल्च होता है इसको प्लांट की स्टेम से करीब 2 से 3 इंच दूर रखें, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि ना वो मॉइस्चर जो है वो वहाँ ट्रैप हो जाता है ड्राई उसमें पत्तियों में, तो उससे क्या होता है कि वो जो वुड होती है वो रॉट होने लग जाती है, पेस्ट और फिर फंगल डिजीज़ आपके जो प्लांट्स हैं उनको लग सकती है। बस ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिनकी वजह से मैं कहती हूँ कि हो सकता है आपके लिए ये प्लांट्स जो हैं रिसाइकिल करने के बाद और भी अच्छे निकल आए।

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, जो भी इसे आप कहना चाहें। और मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary.